सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। सभा की शुरुआत इस प्यारे से विचार के साथ। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है।

और आइए श्रोता हूँ, अब आपको जानकारी दे दिए आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ, आज सुनेगा भगवान बुद्ध के सुविचार, साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिए का भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे सुनेगा वतन का राग, 8:30 बजे कार्यक्रम होगा आमने सामने। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर आप सुनेंगे विषय विशेषज्ञ आशा पाठक से मोहम्मद दानिश खान की खास बातचीत। सुबह 9 बजे कार्यक्रम होगा वागर्द, जो केंद्रित है कविता किरण के ऊपर। 9:30 बजे सुनेगा हमारा विशेष कार्यक्रम, विषय होगा नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। सुबह 10 बजे सुनेगा परिक्रमा, 10:30 बजे याद करो कुर्बानी, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है मास्टर अमीर चंद पर। 11 बजे कला कल्लोलिनी, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है उस्ताद अली अकबर खान पर। 11:30 बजे युग प्रवर्तक विवेकानंद, और दिन में आप सुनेंगे 12 बजे तराने आजादी। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। श्रोताओं, आज मास्टर अमित चंद का शहादत दिवस है। रेडियो आजाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान बुद्ध के सुविचार। आइए सुनते हैं।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। पहुंचने से कहीं अधिक आवश्यक ठीक से यात्रा करना है। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 105 से वाचन। ऋषि हैं त्रित, आप्त्य अथवा कुत्स आंगिरस। देवता हैं विश्वे देवा और छंद है त्रिष्टुप।
3: चंद्रमा अप्सवंतरा सुपर्णो धावते दिवि, न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी। अंतरिक्ष में चंद्रमा और द्युलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। हे विज्ञ पुरुषो, तुम्हारा स्तर सुनहरी धार वाली विद्युत को जानने योग्य नहीं है। हे द्युलोक एवं भूलोक, आप हमारे भावों को समझें, हमें उनका बोध करने की सामर्थ्य प्रदान करें। अर्थमिद्वा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिम, तुंजाते वृष्णयम पयः परिदाय रसम दुहे वित्तम मे अस्य रोदसी। उद्देश्य पूर्ण कार्य करने वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। पत्नी उपयुक्त पति को पा लेती है। दोनों मिलकर उद्देश्य पूर्वक संतान प्राप्त कर लेते हैं। हे द्युलोक एवं पृथ्वी देवी, आप हमारी भावना समझें, हमारे लिए उत्कृष्ट उत्पादन बढ़ाएं। मोशु देवा अदह स्वरव पादि दिवस परि, मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम कदाचन वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवगण, हमारी तेजस्विता कभी भी स्वर्गलोक से निम्नगामी न हो, अर्थात हमारा लक्ष्य सदा ऊंचा हो। आनंद प्रदायक सोम से रहित स्थान पर कभी भी हमारा निवास न रहे। हे द्युलोक और भूलोक, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। यज्ञम पृच्छाम्यवम स तद्दूतो विवोचति, क्व ऋतम पूर्व्यम गतम कस्तद्विर्विभर्ति नूतनो वित्तम मे अस्य रोदसी। हम समुपस्थित यज्ञाग्नि से प्रश्न करते हैं। वे देवदूत अग्निदेव उत्तर दे कि प्राचीन सरल भाव रूपी शाश्वत नियमों का कहां लोप हो गया। नवीन पुरुष कौन उन प्राचीन नियमों का निर्वाह करते हैं। हे पृथ्वी और द्युलोक, हमारी इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को जाने और शांत करें। अमी ये देवाः स्थन त्रिश्वा रोचने दिवः, कद्व ऋतम कदन ऋतम क्व प्रत्नाव आहुतिर वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, तीनों पृथ्वी अंतरिक्ष एवं द्युलोक में से आपका वास द्युलोक में है, आपका ऋत वास्तविक रूप क्या है, अनृत मायायुक्त रूप कहाँ है। आपने प्रारंभ में सृजन यज्ञ में जो आहुति डाली वह कहाँ है। द्युलोक एवं पृथ्वी, हमारे भावों को समझें और पूर्ति करें। कद्वरितस्य धरणसि कद्वरुणस्य चक्षणम् कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूड्यो वित्तम् मे अस्य रोदसि। आपके श्रेष्ठ सत्य का निर्वाह करने वाले नियम कहाँ हैं? वरुण की व्यवस्था दृष्टि कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ अर्यमा के मार्ग कौन कौन से हैं जिससे हम दुष्ट जनों से राहत पा सकें? हे द्युलोक और पृथ्वी, हमारी इस जिज्ञासा के अभिप्राय को समझें। अहम सो अस्मि यह पुरा सुते वदामि कानिचित् तं मा व्यन्त्याद्यो वृको न तृष्णजम् मृगम् वित्तम् मे अस्य रोदसी। पिछले यज्ञ में सोम निष्पादन काल में स्तोत्रों का पाठ हमने किया था, लेकिन अब मानसिक व्यथाएं भेड़िये द्वारा प्यासे हिरण को खाए जाने के समान ही हमें व्यथित किए हुए हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। सम्मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव परशवः मूषो न शिष्णा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी। दो सौतों पत्नियों की तरह हमारे पार्श्व बाजू में रहने वाली कामनाएं हमें सता रही हैं। हे शतक्रतो, जिस प्रकार चूहे माड़ी लगे धागों को खा जाते हैं, वैसे ही आपकी स्तुति करने वालों को भी मन की पीड़ाएं सता रही हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता त्रितस्तद्वे दाप्यत्यः स जामित्वाय रेभति वित्तम् मे अस्य रोदसी। ये सात रंगों वाली सूर्य की किरणें जहां तक हैं वहां तक हमारा नाभि क्षेत्र पैतृक प्रभाव फैला है, जिसका ज्ञान जल के पुत्र त्रित को है। अतएव प्रीति युक्त मैत्री भाव हेतु हम प्रार्थना करते हैं। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारी इन प्रार्थनाओं के अभिप्राय को समझें। अमी ये पंचो क्षणों मध्ये तस्थुर महो दिवः देवत्रा नु प्रवाच्यम सद्री चीना नि वावृतुर वित्तम मे अस्य रोदसी। कामनाओं की वर्षा करने वाले ये पांच शक्तिशाली देव अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा और विद्युत विस्तृत द्युलोक में स्थित हैं। देवों में प्रशंसनीय ये देवगण आवाहन करते ही पूजा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसके बाद तृप्त होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं, अर्थात मन के साथ ये इंद्रियां भी उपासना में तल्लीन हो जाती हैं। हे द्युलोक और पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को जाने। सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवह ते सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यद् वती रपो वित्तं मे अस्य रोदसी। यह जो उत्तम पंखों वाला पक्षी सूर्य दिव्य लोक के मध्य भाग में स्थित है, व्यापक जल रूपी रात्रि में तैरने वाले मनुष्य को प्रकाश का मार्ग प्रशस्त कर भेड़ियों अर्थात काम क्रोध लोभ आदि से बचाए। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भवसागर में तैर रहा है, अज्ञान रूपी क्रूर भेड़िया उसे खा जाना चाहता है, ज्ञान राशियां क्रूर अज्ञान का निवारण करके मनुष्य को भय मुक्त करती हैं। नव्यम तदुक्थ्यम हितम देवासह सुप्रवाचनम ऋतमर्षन्ति सिंधवः सत्यम तातान सूर्यो वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, ये नवीन स्तोत्र प्रशंसनीय गाने योग्य और कल्याणकारक हैं। नदियां ऋतु दिव्य अनुशासन के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती हैं और सूर्य देव सत्य के उद्घोषक हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। अग्ने तव त्यदुक्थ्यम देवेश्वस्त्याप्यम सनह सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षी विदुष्टरो वित्तम मे अस्य रोदसी। हे अग्निदेव, देवताओं के साथ आपका बंधुत्व भाव प्रशंसनीय है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान संपन्न आप मनुष्यों के समान हमारे यज्ञ में पधारकर देवताओं को हमारे यज्ञ में आवाहित करें। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। सत्तो होता मनुष्वदा देवाम अच्छा विदुष्टरह अग्निर्हव्या सुशूदति देवो देवेशु मेधिरो वित्तम मे अस्य रोदसी। मनुष्यों के समान यज्ञ में विराजमान ज्ञानवान होता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान संपन्न वे अग्निदेव देवों के लिए हविष्यान्न पहुंचाते हैं। हे द्युलोक व पृथ्वी देवी, हमारे इस जिज्ञासा भाव को समझें। ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातु विदम तमी महे व्यूर्णोति हृदा मतिम नव्यो जायतामृतम वित्तम मे अस्य रोदसी। मंत्र रूपी स्तोत्रों की रचना वरुण देव करते हैं। हम स्तुति मंत्रों के मार्गदर्शक प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वे हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट कर देते हैं, जिससे नवीन सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। असौ यह पंथा आदित्यो दिवि प्रवाच्यम कृतः न स देवा अतिक्रमे तम मर्तासो न पश्यथ वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, यह जो सूर्य देव का प्रकाश रूपी मार्ग दिव्य लोक में स्तुतियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके लिए उपयुक्त नहीं। हे मनुष्यों, वह मार्ग सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर है। हे पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें, उस दिव्य मार्ग का बोध कराएं। त्रितः कूपे वहितो देवान हवत ऊतये तत्शुश्राव बृहस्पतिः कृणवन नहूरणा दूरु वित्तम मे अस्य रोदसी। पाप रूपी कुएं में गिरे हुए त्रित ने अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं का आवाहन किया। ज्ञान रूपी बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को सुनकर त्रित को पाप रूपी कुएं से निकालकर कष्टों से मुक्ति पाने का व्यापक मार्ग खोल दिया। हे द्युलोक और पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। अरुणो मां सकृद्वृकः पथायन्तं ददर्श हि उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्या मयि वित्तं मे अस्य रोदसी। पीठ के रोगी बढ़ई की तरह टेढ़ा चंद्रमा अपने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है। वह नीचे की ओर जाकर अस्त होकर पुनः उदित होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस स्थिति पर ध्यान दें। एनांगूषेण वयमिंद्र वंतो भी श्याम व्रजने सर्ववीराः तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इंद्रदेव तथा सभी वीर पुरुषों से युक्त होकर हम इस स्तोत्र से संग्राम में शत्रुओं को पराजित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक सभी देव हमारे इस स्तोत्र का अनुमोदन करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 105 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। श्रोताओं, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता।

श्रोताओं, घर से जब भी बाहर जाएं, तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में ये नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास दो घड़ी खड़े रहकर प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है ऐसा बोल कर ही निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है।

प्रार्थना कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए उसका आभार व्यक्त करने के लिए होना चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व पर जो कूटनीति की तीक्ष्णता, विचारों की निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति की अटल ज्योति का पर्याय थे। वो लंदन की गलियों में भारत की आजादी की मशाल लिए खड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की आवाज बनकर वो गूंजे। उनकी बातों में अद्भुत तेज, तर्क और आत्मविश्वास था जो हर चुनौती को चुनौती दे सकता था। भारत की गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले वो महानायक थे वीके कृष्ण मेनन। वो एक राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा सन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। वीके कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई सन 1896 को केरल के मालाबार तट पर स्थित पनियंकरा कालीकट में हुआ था, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम वेंगालिल कृष्णन कृष्ण मेनन था। उनके पिता का नाम कोमाथु कृष्ण कुरुप था, जो कदाथनाडु के राजा के पुत्र थे। इस तरह वो एक राज परिवार से संबद्ध थे। उनकी माताजी भी त्रावणकोर के पूर्व दीवान रमन मेनन की पौत्री थीं। वीके कृष्ण मेनन के पिता ने वकालत का पेशा अपनाया था। वो एक अत्यंत संपन्न तथा प्रभावशाली वकील थे। इस तरह ये एक राजसी वंश परंपरा से संबद्ध एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार था। वीके कृष्ण मेनन की आरंभिक शिक्षा थालासेरी में हुई तथा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। बचपन से वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और उनका विद्रोही स्वभाव किशोरावस्था से ही मुखर होने लगा था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। वो डॉक्टर एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सानिध्य में आए। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया। एनी बेसेंट ने उनकी वाक्पटुता और तीक्ष्ण बुद्धि को पहचाना और उन्हें ब्रदर ऑफ सर्विस समूह से जोड़ लिया। यहीं ब्रिटिश राज के प्रति उनके मन में एक आक्रोश ने जन्म लिया। कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी पोशाक के स्थान पर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अस्वीकार्यता और भारत माता के प्रति गहरे प्रेम का स्वर बुलंद किया।

बेसेंट वी के कृष्ण मेनन की प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थीं। यही कारण है कि उन्होंने सन 1924 में वी के कृष्ण मेनन को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजने का प्रबंध किया। वी के कृष्ण मेनन सन 1924 में इंग्लैंड पहुंचे और लगभग 27 वर्षों तक वो वहीं रहे। लंदन में उनके प्रवास ने उन्हें एक छात्र से एक वैश्विक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था। वहां वो हेराल्ड लास्की के प्रिय शिष्य बन गए। लास्की ने उन्हें अपना अब तक का सबसे मेधावी छात्र कहा था। लास्की के विचारों ने वी के कृष्ण मेनन के दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में उनके भीतर स्थायी रूप से रहा। यहां उन्होंने एमएससी और एमए के साथ ही कानून की शिक्षा भी पूर्ण की तथा एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की। वहां रहते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंडिया लीग की स्थापना की। उन्होंने मूल रूप से डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग को ही पुनर्गठित किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में रहते हुए भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए अभियान चलाना था। ये संगठन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीयों को एक मंच पर लाता था। इस तरह ये लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की मांग का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया। इंडिया लीग के माध्यम से वी के कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश जनता को भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, जैसे लाठीचार्ज, बिना मुकदमा चलाए कारावास और संपत्ति की जब्ती के बारे में जागरूक किया। इस तरह इंडिया लीग ने ब्रिटिश लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियनों और बुद्धिजीवियों के बीच भारत की पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। सन 1938 में उन्होंने लंदन में एक विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें अफ्रीका और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने प्रकाशन की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एलन लेन के साथ मिलकर पेंगुइन बुक्स और फिर बाद में पेलिकन बुक्स की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकाशन गृह के माध्यम से उन्होंने आम जनता के लिए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक सामग्री को सस्ते दामों में सुलभ कराया। सन 1934 में लेबर पार्टी के टिकट पर वो सेंट पैनक्रास से बरो काउंसलर नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने पुस्तकालयों के विस्तार और गरीबों के लिए कानूनी सहायता की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। उनके योगदान के लिए सेंट पैनक्रॉस ने उन्हें फ्रीडम ऑफ द बरो से सम्मानित किया। स्थानीय परिषद द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वी के कृष्ण मेनन से पहले ये सम्मान केवल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। सन 1935 में वी के कृष्ण मेनन की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी और भारत की आजादी के बाद भी ये संबंध अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बना रहा, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण जुगलबंदियों में से एक माना जाता है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को पश्चिम में प्रकाशित और लोकप्रिय करने में भी वी के कृष्ण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लेबर पार्टी ने भारत की भागीदारी पर अपना रुख बदला, तब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। भारत उनकी आत्मा में बसता था और राष्ट्र सेवा को वो सर्वोच्च मानते थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी के बाद वी के कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के पहले उच्चायुक्त नियुक्त हुए और भारत माता की सेवा को वो समर्पित हुए।

वी के कृष्ण मेनन एक स्वतंत्र सोच और अपनी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जब वो पदस्थ थे, तब वो उच्चायुक्त निवास में न रहकर उच्चायोग के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। सन 1952 में उच्चायुक्त का पद छोड़ने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभाला। यहां उन्होंने अपनी कूटनीतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता से विश्व को चकित कर दिया। इस समय तक दुनिया उन्हें फॉर्मूला मेनन कहने लगी थी। विश्व समुदाय का मानना था कि किसी भी देश में अगर कोई समस्या है तो मेनन कोई न कोई सार्थक समाधान निकाल सकने में अवश्य सक्षम होंगे। सन 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। ये एक ऐतिहासिक भाषण था। पाकिस्तान के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने लगभग 8 घंटे तक भाषण दिया, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। इस तरह उन्होंने कश्मीर मुद्दे की एक सही तस्वीर दुनिया के समक्ष रखी। इसके बाद उन्हें भारत में कश्मीर का नायक कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने केवल भारतीय हितों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कोरियाई युद्ध हो, जिनेवा सम्मेलन हो, स्वेज संकट हो या हंगरी संकट, सभी जगह उन्होंने समाधान के सार्थक रास्ते सुझाए। सन 1957 में उत्तरी मुंबई से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वी के कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री नियुक्त हुए। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। यही कारण है कि उन्होंने भारत में रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए। उन्होंने DRDO को पुनर्गठित और मजबूत किया ताकि स्वदेशी तकनीक विकसित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण भी किया। सेना के लिए वाहनों और टैंक के स्वदेशी उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैन्य जीवन के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की तथा NCC को पेशेवर रूप दिया। सन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। ये सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। ये वी के कृष्ण मेनन की बड़ी सामरिक और राजनीतिक जीत थी। उन्होंने सेना में पदोन्नति की वरिष्ठता आधारित प्रणाली को बदलकर योग्यता आधारित प्रणाली करने की भी वकालत की थी, जिसका अधिक स्वागत नहीं हुआ था। सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय का सारा दोष वी के कृष्ण मेनन पर मढ़ा गया और उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की पैरवी की। सन 1969 में उन्होंने राजनीति में वापसी की, संसद पहुंचे और सन 1971 में फिर से जीत दर्ज की। संसद में अंतिम वर्षों के दौरान वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, विशेष रूप से 1966 की वियतनाम शांति योजना और 1971 के बांग्लादेश संकट के समय। 6 अक्टूबर सन 1974 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत ने एक ऐसे मौलिक विचारक को खो दिया जिन्होंने भारत को एक दृष्टि दी कि वो स्वयं अपनी नजर से विश्व को देख सके। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। ये गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
5: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
5: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि एलपीजी हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से एलपीजी जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो एलपीजी का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और एलपीजी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
4: तो क्या एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
5: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि एलपीजी आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें से फ्रैक्शन है। दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के, उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है। तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती। तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब वॉल्यूम्स होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो एलपीजी जो है इसकी अपने कोई गंध या कोई मतलब कलरलेस है, ये कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो अगर ये लीक होगा तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसके अंदर एक मतलब इसे तरल किया जाता है और इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन भी बोलते हैं, ये इसी की गंध होती है। होती है जो आपको जब एलपीजी लीक होती है तो आपको समझ में आता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप इसको अटेंड करिए। तो हाँ, गंध जो है वो ये हमें बताती है। तो ये इस तरीके से एलपीजी जो है इसका संरक्षण हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेट्रोलियम से बना है। तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन, प्राकृतिक रिसोर्स है और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं। तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो। हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया पिछले 50 साल से ही, समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशंस का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा? खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ
4: छोड़ के जा रहे हैं।
5: तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है, किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते। तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
4: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
5: बहुत ही आसान से तरीके हैं और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गाँव में तो वो इस्तेमाल करती थी कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको। तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका, तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का। उतना भी अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें, 100 सिलेंडर देखें तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर ले तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा। मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया।
4: बिल्कुल,
5: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे। 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार चार बर्नर भी होते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर, या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक बाकी सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है। अगर आप अटेंड करें, रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें, और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है, मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है वो बर्तन के ऊपर चढ़ रही है, तले के अलावा ऊपर भी चढ़ रही है, तो वो बर्बादी है,
4: छोटे बर्तन
5: तो वो बर्बादी है, तो उसको या तो धीमा कर दीजिए आप, और थोड़े चौड़े तले के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ही सिर्फ उसकी लॉ लगेगी,
4: तली को जो है कवर,
5: तली को कवर करेगा,
4: लॉ जो है कवर करेगा।
5: जी हाँ, तो ये बर्तनों का है। बर्तन पे ही अगर हम बात करें तो आजकल कॉपर प्लेटेड बर्तन आते हैं जो नीचे तली पे रहता है, तो आप पता है कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है सुचालक है, हाँ, हीट का मतलब, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको। आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद तीन तीन चार चार प्रेशर कुकर है, वो क्यों है? एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है कुछ है तो मांझना ना पड़े, और तीसरे में कर लिया हमने। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना? आपने देखा होगा डिब्बे, आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल, एक में चावल, ऐसे करके सब्जी बघार के तीसरे में मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था। तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी, तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें, वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन जाता है कई बार, तो आप अच्छे वाले जो प्रेशर कुकर है उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर हम ISI की बात कर रहे हैं तो आपके जो गैस के चूल्हे हैं वो भी जो है आजकल जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो स्टार रेटिंग जो देते हैं, तो उसमें जैसे फ्रिज पे आपने देखा है 5 स्टार है, 4 स्टार ऐसे आप लेते हैं, उसी तरह से गैस के चूल्हे भी आते हैं, उनको हम ग्रीन स्टोव्स भी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्टार अगर आप लेते हैं तो आप एक लोकल वो बिना स्टार वाला लोगे तो उससे तो आप समझ सकते हो कि ज्यादा ही गैस बचत हो, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है उसका, उसका बर्नर का डिजाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो लेके आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया। जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक कुछ बचा ही नहीं। लॉ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
6: खराब हो गया,
5: दाल गिर जाती है कई बार, दूध गिर जाता है तो उसमें चिपक जाता है। तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें। और सफाई में ये भी ध्यान रखें, बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गरम गरम बर्नर में पानी तो नहीं डाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं ठंडा गरम तो वो टूटने का भी डर रहता है, ब्रेक हो जाता है, तो आप उसकी जगह क्या ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए। खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कपड़े धोने वाला सा पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए, मतलब भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए। आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए, तो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पर गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पाउडर अंदर घुस जाएगा
6: बर्नर के जो सुराख होते
5: हैं, सुराख में अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा, तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये, उनसे मत कराइए आप।
6: अच्छा,
5: आप जो एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे, लेकिन वो साफ
6: घर पे आके करके जाते
5: हैं। हाँ, तो वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी जरूरत है ना। आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो, तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी जरूरत है। और मैं ये कहूंगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
6: बिल्कुल सही,
5: भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है। तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम करेंगे कि भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं।
6: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले।
5: जी जी, प्रायोरिटी हमारा भोजन है। आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं ना।
6: सेहत उसी से।
5: मैं तो आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
6: अरे वाह,
5: है ना, आप देखिए क्या असर होता है। क्योंकि वो विचार जाता है, वो लिखा इज ओके, लेकिन आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप,
6: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
5: सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
6: बार बार चाय गर्म करते,
5: बिल्कुल बिल्कुल। हम
6: बहुत सारी चीजें हम बार बार करते हैं।
5: अगर हम एक नियम बना दे घर में कि चाय सब साथ में पियेंगे, है ना, या तो एक ही बार बनेगी चाय, जी जी, खाना साथ में खाएंगे। अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो,
6: बिल्कुल,
5: रात का खाना तो कर लो साथ में, तो उससे क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता है, है ना, तो वो जो एक लिंक्स है वो फिर से बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे। आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है, भोजन वो जगह है, वो चीज है, तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं, तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर, हमारा एलपीजी बचेगा। और दूसरी चीज, भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे,
6: बिल्कुल,
5: है ना, तो हम जो है हम वहां पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला और ये ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जो एलपीजी जैसा तो आपको कोई भी ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ती है आपको एलपीजी से, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो।
6: रेगुलेटर जो होता है और पाइप, ये कितने समय पर चेंज करना चाहिए ताकि गैस का रिसाव भी इनमें से ही होने लगता है और हमें पता नहीं चलता है कि बाज़ वक़्त।
5: इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ संरक्षण को लेके, पहले कि जो भी आप दाल चावल वगैरह बना रहे हैं उसको थोड़ा भिगो दें पहले, भिगोने के बाद आप इस्तेमाल करें, नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
6: जल्दी,
5: है ना, तो आप इस चीज को कर सकते हैं आप। और जहां तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें, तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की जरूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पे जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें, ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है, तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है, और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे वो, तो वो काफी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहां पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे,
6: तो ये रबर के रहते थे,
5: रबर के रहते थे
6: वो,
5: अभी वो वायर के साथ है, तो बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है ये, है ना, तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी, नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है, लेकिन वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा, और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं, लेकिन बस इसे काट काट के मत यूज करें,
6: कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया, तो
5: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल, और लेकिन लेना एजेंसी से ही है,
6: बिल्कुल
5: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है
6: बिल्कुल,
5: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है।
6: बिल्कुल आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि पीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क।
5: जी दानिश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो पाइपलाइंस पाइप दे रहे हैं, वो घरों में मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो, तो पीएनजी का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है तो ये एलपीजी नहीं है, एलपीजी का मुकाबले सुरक्षित है ये। एलपीजी की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि एलपीजी जमीन पे चिपकता है क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अंटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगाओ अब, है ना, तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी जिस भी मोहल्ले में पीएनजी की सप्लाई के लिए अभी आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे पीएनजी की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है एलपीजी की कम हो जाए,
6: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या
5: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
6: ये तो सुविधाजनक हो,
5: बिल्कुल बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
6: भारी
5: है
6: भारी आप... सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
5: जी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
6: अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म,
5: बिल्कुल
6: ये सारी दिक्कतों से
5: वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम

0: कंप्रेस नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं, तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी है इसकी वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर, कई लोगों ने घर में चार, मतलब कुछ ज़्यादा लोग हैं, उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर, वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स, उसमें आप करते हैं, चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज़्यादा जोखिम भरी चीज़ है। और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है, तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें। तो कंप्रेस नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आप समझ सकते हैं। तो आपको वो ज़्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज़ यह है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है।
1: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
0: पीजी अगर हो
1: हाँ
0: जाती
1: जी
0: है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए, क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा, वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए। पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा, और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी, क्योंकि आप वहां ज्यादा समय हैं, तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा, तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही हैं तभी हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कारण हो। तो हम मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं। और दूसरी चीज, जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए। उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए। कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है, तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है, तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसका हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, महिलाएं जो है वो कागज जो रहता, पेपर जो रहता है, उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना रखें। दूसरी चीज ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हीट वगैरह से,
1: हाँ,
0: तो
1: उसके अंदर भी
0: वो भी पेट्रोलियम ही है,
1: फ्लेमेबल, हाँ।
0: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और खाना बनाती हैं, तो ये बहुत रिस्की है।
1: वीडियोस देख रहे हैं,
0: वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाई चांस आपने ध्यान नहीं दिया, कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही नहीं है, हाँ, तो आप जो है इस तरह के जो रिस्क है वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो। क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी, और हर दीवार पे विद इन सेकेंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी। तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर सकते हो, अभी ज्यादा नहीं फैला हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत कोई मोटा कपड़ा गीला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंबल है या कोई ऐसी मोटी दरी है तो उसके ऊपर लगा के, आपने निकाल लिया रेगुलेटर, उसके ऊपर डाला आपने, और उसको जो है अच्छे से कवर कर दें, या फिर कोई भगोना है जैसे प्लास्टिक का, नहीं बोल रही हूँ, वो उसके ऊपर रख दें, ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई जो है कट कर दें। तो आग बुझ जाएगी। सप्लाई तो वहीं से ही है ना, सिलेंडर से ही है, तो इस

0: उसका तरीका भी होता है, वो हम अभी आपको रेडियो पे तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके कुछ मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते हैं जिससे कि महिला को ये चीज़ पता चल जाती है कि इसको हमें कैसे बचत करना, सुरक्षित रखना है।
1: आशा जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश LPG संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
0: जी देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज्यादा हम, तो आज ये वो मौका है हमारे पास में LPG के रूप में कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा। तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम LPG की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी, इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
1: दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: आमने सामने।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
4: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
0: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वागर्द।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। कार्यक्रम वागर्द में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र कंचन। श्रोताओं, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि राजस्थान से हमारे बीच आई हैं। आप एक कवित्री हैं, गीतकार हैं और गायिका भी हैं। ज्यादा देर न करते हुए आइए हम उनसे मुखातिब होते हैं। हमारे साथ हैं कविता किरण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी, आपको भी। आपने मुझे रेडियो FM के माध्यम से भोपाल के श्रोताओं से, आज़ाद हिंद के श्रोताओं से मुखातिब होने का मौका दिया। आपने आज मुझे यहाँ साक्षात्कार के लिए बुलाया है। हम लोग के बीच बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन पहले तो सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाहूँगी। और जैसा कि कविता मेरा नाम है और किरण मेरा तखल्लुस है, कविता क्या है, शायरी क्या है, मैं चार पंक्तियों से इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहूँगी कि शायरी का अपना वजूद क्या है, उसकी अपनी क्या उसका स्वभाव है। चार पंक्तियों में देना चाहूँगी, सुनिएगा। कि हिंदी का बोल हूँ मैं उर्दू जबान हूँ, शायरी क्या है,
2: क्या बात।
3: कि हिंदी का बोल हूँ मैं उर्दू जबान हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं, आयते कुरान हूँ मैं, हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ।
2: बहुत खूब कविता जी। और कार्यक्रम का जब आगाज आपने इतना बेहतर किया है अपनी इन शायरी की चार पंक्तियों के साथ, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे जितना भी वक्त आप हमारे साथ रहेंगी वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा। कविता जी, हम शुरुआत करें तो यही सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि राजस्थान से आप ताल्लुक रखती हैं, शायरी की शुरुआत क्या घर में ही थी या फिर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और किस उम्र से आपने कविताएं लिखना शुरू की?
3: देखिए कंचन जी, ऐसा है कि जहाँ तक शायरी की बात है, ये माँ सरस्वती की कृपा होती है।
2: बिल्कुल।
3: तो कहीं ना कहीं से अपने आप आपके भीतर से शब्द फूटते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 13 साल की उम्र से मैंने कविता लिखना शुरू किया है, और आपको बताऊं कि पहली बार मैंने एक प्रतियोगिता के लिए कविता लिखी थी, और ये संयोगी था कि उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला।
2: अच्छा।
3: और उसी के चलते आकाशवाणी उदयपुर से के जो अधिकारी थे उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी किया था, जो भी विजेता लोग रहे थे उसमें
2: जी।
3: और तभी मुझे कहा गया था कि अब तुम चाहे चार पंक्तियां ही लिखो, लेकिन लिखना बंद मत करना। तो बस ये बात कुछ इस तरह से मन में घर कर गई कि बस वो लेखन तभी से शुरू हो गया। ये अलग बात है कि उस समय हम जो लिखते थे वो बचकाना हुआ करता था, काल्पनिक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे लेखन में परिपक्वता आती गई।
2: तो आपने बताया 13 साल की छोटी उम्र में, जबकि जो बच्चे रहते हैं वो सिर्फ अपना परीक्षा की या तो तैयारी करते हैं, जो स्कूल की उनकी कॉपी किताब है वो उन्हीं को ही उनका कोर्स रटते रहते हैं, उस उम्र में आपने कविता लिखी, तो वो किस तरह की कविता थी, क्या उस वक्त आपके मन में विचार आए थे जो कविता के रूप में बाहर आए?
3: नहीं, उस समय देखिए अनुभव की तो कमी होती है
2: जी,
3: और शब्दों की भी आपके पास कमी होती है, क्योंकि उस उम्र में इतना जितना आपकी सोच होती है वो इतनी विस्तृत नहीं होती है
2: जी।
3: तो कविता के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है, इसमें कुछ तुकबंदियां होती है, लास्ट में तुक मिलाई जाती है और इसी तरह से कविताएं बनती है। तो उस समय जब हम लिखते थे तो वो विशुद्ध काल्पनिक हुआ करता था, जिसमें सोच कर लिखा जाना किसे कहते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि असली कविता वो होती है जो आपके भीतर से आती है
2: जी।
3: सोच कर लिखी गई कविता कविता नहीं होती और न वो उतना असर पैदा करती है। तो उस समय हम सोच कर लिखा करते थे। फिर जब कुछ लोगों को पढ़ा, मैं अमृता प्रीतम की बहुत प्रशंसक रही हूँ उनकी लेखनी की, और मैंने, आप विश्वास करेंगी शायद नहीं, कि मैं जब 8वीं क्लास में थी तभी मैंने उनकी एक जो उनका किताब है रसीदी टिकट पढ़ी थी
2: जी,
3: और रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि मैंने उस समय पढ़ी थी। तो कुछ एक ऐसी किताबें मेरे पढ़ने में आई थी जिनका असर मुझ पर काफ़ी पड़ा और मुझे लगा कि ये चीज़ें दिल को छू जाने वाली है। तो क्या होती है शायरी, क्या होती है कविता, क्या होती है, क्या उसमें होना चाहिए, ये उन कुछ किताबों को पढ़कर मेरी सोच की दिशा, मेरी सोच को एक दिशा मिली
2: जी।
3: और फिर धीरे धीरे जिंदगी के अनुभव उसमें ढलते चले गए और कविता किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती गई और आज परवान पर है।
2: क्या बात। तो परिवार वालों ने कुछ कहा था उस वक्त कि इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई पर ध्यान दो, कविताएं मत लिखो?
3: नहीं, उसमें क्या दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि समय नहीं निकालना पड़ता था कविता लिखने के लिए, क्योंकि ये तो अब ठीक है, आप आधी रात को भी कोई थॉट आपके दिमाग में आ गया तो आप उठकर लिख लेते हो, आपको अलग से उसके लिए समय नहीं निकालना पड़ता है कि आपको कॉपी किताब लेकर के आप किसी टेबल पर बैठे हो और अपना दूसरा काम छोड़ करके, तो मेरे लिए वो चीज़ कभी नहीं रही। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जैसे कहा जाता है कि कवि लोग बहुत कागज़ काले करते हैं तब जाकर एक कविता बनती है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे अंदर जब तक कोई थॉट आता है वो पूरा कविता का रूप जब तक अपने भीतर नहीं ले लेता तब तक वो कागज़ों पर नहीं आती, तो वो पूरी मेरे अंदर बन चुकी होती है, जन्म ले चुकी होती है, अपना पूरा शरीर उसका ढांचा तैयार हो चुका होता है, उसके बाद में फिर मैं उसे कागज़ों पर उतारती हूँ।
2: क्या बात।
3: तो किसी को पता ही नहीं लगता था कि मैं कब लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ और कैसे लिखती हूँ, बस लिख देती थी।
2: क्या बात।
3: और हो जाती थी कविता।
2: तो ये कविता के साथ किरण का तखल्लुस कब से जुड़ गया?
3: हाँ, ये भी बड़ा अच्छी सी बात है कि वो बचपन में जब हम कोर्स में भी कवियों की किताबें पढ़ते थे तो उसमें देखा करते थे कि कवियों के नाम के साथ में एक उपनाम जरूर हुआ करता है, जैसे रामधारी सिंह जी, दिनकर, गोपाल दास जी, नीरज, तो इस तरह से जब उनके उपनाम, उनके तखल्लुस देखे तो मुझे, क्योंकि अब मेरी अपनी जो सखियां थी वो भी, क्योंकि मेरा नाम कविता था तो वो मुझे मजाक में बोला करती थी कि अब तो तुम कवित्री हो गई हो, तो बस वो मन में ख्याल सा है कि जब मैं कविता हूँ, कवित्री हूँ तो मेरा भी एक उपनाम होना चाहिए, तो सहज ही अपने आप से एक भाव आ गया, एक नाम आ गया मन मस्तिष्क में और किरण मुझे अच्छा लगा और मैंने स्वयं ही उसका रख लिया।
2: अच्छा।
3: और वो मेरे नाम के साथ कुछ ऐसी उसकी केमिस्ट्री हुई कविता और किरण की, इतना सूट कर गए एक दूसरे को कि आज वाकई एक कविता के किरण की तरह मैं भी इस साहित्याकाश में अपनी किरणें फैलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ।
2: क्या बात है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आप रेडियो आज़ाद हिंद के स्टूडियो में हैं, तो आगे की बातें भी हम आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके पहले चाहेंगे कि आपकी कविता की कुछ पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं के लिए भी आप सुना दें।
3: ज़रूर मैं सुनाऊंगी। और जैसा मैंने बताया कि मैं राजस्थान से आई हूँ और हमारा राजस्थान आप जानती हैं रेगिस्तान के लिए भी जाना जाता
2: जी,
3: है
2: जी, जी।
3: तो जब मैं राजस्थान के रेगिस्तान से चलकर पूरे देश और दुनिया की दूरियां नापती हूँ तब मैं चार मिसरे हर जगह पढ़ा करती हूँ, मैं यहाँ भी सुनाना चाहती हूँ कि हर कदम पर आजमाती हैं मुझे, हर कदम पर आजमाती हैं मुझे, शोहरतें जमकर सताती हैं मुझे, और मैं गजल हूँ एक रेगिस्तान की और हवाएं गुनगुनाती हैं मुझे। मैं गजल हूँ एक रेगिस्तान की और हवाएं गुनगुनाती हैं मुझे। विधा जो है मेरी, मैं गीत और गजल मेरी मूल विधा है
2: जी।
3: लेकिन हर विधा में थोड़ा थोड़ा दखल मैं रखती हूँ, हर रस में, हर विधा में लिखती हूँ मैं। इन दिनों आप जानते हैं जो दिल्ली में पिछले साल दामिनी कांड जो हुआ था, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ करते हैं उस पर बहुत कवियों ने अपनी कलम चलाई, पूरा देश काफ़ी दुखी हुआ था, तो कहीं मेरे मन में भी कुछ पंक्तियां आई, मैं चाहती हूं वो आपके साथ शेयर करूं, आज़ाद हिंद के श्रोताओं के साथ मैं शेयर करूँ कि स्त्री को हमेशा आप जानती हैं दोयम दर्जा दिया गया, उसे हमेशा कमतर समझा जाता है जबकि ऐसा है नहीं। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि आज की नारी की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि नए सांचे में ढलना चाहती हूँ। क्या चाहती है आज की नारी? नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ, नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ, और इरादों की बुलंद चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। और आज की नारी कमजोर कतई नहीं, आप जानती हैं महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। तब चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ, लड़ सकती हूँ हर तूफान से, औरत हूँ कमजोर नहीं हूँ,
2: क्या बात,
3: औरत हूँ, कमजोर नहीं हूँ।
2: बहुत खूब। ये जो नारी शक्ति को आपने परिभाषित किया है अपनी इन कविता की पंक्तियों में, बहुत बेहतर। और जैसा कि हम जानते हैं, आपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कविता पाठ किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नेतृत्व किया है, तो वहाँ की यादें कैसी रही हैं अब तक, वो अनुभव कैसे रहे हैं?
3: जी, अभी रिसेंटली जो हालिया जो मेरा अनुभव है, मैं अभी अगस्त में गई थी, मुझे ब्रिटेन जाना पड़ा था, और मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ICCR की तरफ से हम लोग गए थे, भारतीय सांस्कृतिक साहित्य संबंध परिषद की तरफ से ब्रिटेन में एक हिंदी दिवस, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में कवि सम्मेलनों का एक पूरी श्रृंखला थी, उसका आयोजन किया गया था, और उसमें भारत से 6 कवि चुने गए थे, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि उनमें से एक मैं भी थी। और वहाँ हमने इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में लगभग 10 कवि सम्मेलन मुशायरे हमने पढ़े
2: जी,
3: और वहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में हमें अपनी बात रखने का मौका मिला, और ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरा प्रस्तुतिकरण भी लोगों को बहुत पसंद आया, और आज भी मुझे वहाँ के लोग याद करते हैं। और बेशक भारत तो भारत ही है, चाहे वहाँ बसा हो, वहाँ यहाँ के लोग चाहे वहाँ बसें चाहे यहाँ बसें, लेकिन हम लोगों की मानसिकता तो बिल्कुल एक सी होती है। तो बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से वहाँ हमको सुना गया, और वो 15 दिन किसी पिकनिक से कम नहीं थे हमारे लिए, और बहुत मोहब्बतें मिली वहाँ लोगों से हमें
2: जी। वहाँ भी आपने ज़रूर देशभक्ति की भी कोई कविता पढ़ी होगी, ताकि वहाँ के लोग भी, उनके अंदर भी एक वो जो जज्बा है देश प्रेम का, वो बना रहे।
3: कंचन जी, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ वो पढ़ूँ जो मैं मंच पर नहीं सुना सकती हूँ। इन दिनों आप देखते हैं कि भ्रूण हत्या पर काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या पर, ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है, और हर जगह इस तरह की कोई ना कोई खबर अखबार में पढ़ने को आती है, तो उससे भी बड़ा मन व्यथित होता है कि बेटियों को लेकर जब इतनी संकीर्ण मानसिकता लोग रखते हैं, तो कहीं मेरे मन में कुछ भाव उठे, तो मैंने उस बेटी की तरफ से जो कोख में है, अभी दुनिया में आई नहीं है
2: जी,
3: उसकी तरफ से मैंने 4 पंक्तियाँ कही हैं कि वो क्या कहना चाहती है इस जमाने से
2: जी।
3: कि फूल की अगवानी में मत नश्तरों को भेजिए, फूल की अगवानी में मत नश्तरों को भेजिए, जान कर बेकार कूड़ेदान में मत फेंकिए, भोर का सपना है बेटी, कांच की किरचे नहीं है, ये किरण है इसको आँखों में बसा कर देखिए, ये किरण है इसको आँखों में बसा कर देखिए। और आप इजाज़त दें तो एक गज़ल मैं पढ़ दूँ, बेटियों के लिए ही मैंने लिखी है, कहीं लड़कियों की इस मजबूरी पर
2: बेतकल्लुफ आप अपनी गजल अपनी कविताएं आज हमें सुना सकती हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, मैं गजल चंद अशार पेश करती हूँ, देखिएगा। कि वो जफर मीर वो गालिब की गजल सी लड़की, वो जफर मीर

0: सी लड़की। और शेर देखें कि कोख को कब्र बना डाला किसी औरत ने। को मेरा ये मानना है कि जो स्त्रियां इस तरह के कदम उठाती हैं वो औरत जरूर होंगी, लेकिन एक माँ तो नहीं हो सकती। तब ये कहती हूँ कि कोख को कब्र बना डाला किसी औरत ने, कट गई पकने से पहले ही फसल सी
1: क्या
0: लड़की,
1: बात।
0: कट गई पकने से पहले ही फसल सी लड़की। और

0: घिर गई सख्त सवालों में सरल सी लड़की,
1: क्या बात,
0: घिर गई सख्त सवालों में सरल सी लड़की। और शेर देखें,

0: कौन कहता है खुशी में है खलल सी लड़की,
1: क्या बात,
0: कौन कहता है खुशी में है खलल सी लड़की। और आखिरी पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा, कि अर्ज इतनी है किरण आज के माँ बापों से, अर्ज इतनी है किरण आज के माँ बापों से, बोझ मत समझो है अल्लाह के फजल सी लड़की, बोझ मत समझो है अल्लाह के फजल सी लड़की, चांदनी रात में एक ताज महल सी लड़की।
1: बहुत खूब कविता जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत अच्छी गजल। और इसमें जो आपने अपने विचार और आपकी जो कहना चाहिए फीलिंग्स जो आपने बयां की हैं, वो एक माँ एक बेटी ही कर सकती है
0: जी,
1: बहुत खूब। और एक संदेश है ये सभी उन माओं के लिए जो कि गर्भ में ही अपनी बेटी
0: बच्चियों
1: को ख़त्म कर देती हैं,
0: है।
1: तो ज़रूर एक उदाहरण भी है आप जैसी बेटियाँ जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी माता पिता का नाम रोशन करती हैं। आपके इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी गज़लें, इतनी अच्छी कविताएं हमें सुनने को मिल रही हैं और हमारे श्रोताओं को भी।
0: जी जी ये मेरा भी सौभाग्य कि मुझे उन्हें सुनाने को का मौका मिल रहा है।
1: कविता जी, ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही जानते होंगे, हमें पता चला कि जैसा कि अभी आपने तरन्नुम में गज़ल सुनाई, आप गायिका भी हैं, सुगम संगीत भी आप गाती हैं
0: जी जी,
1: और लेकिन इसकी आपने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया इसके लिए।
0: जी नहीं, वही मैं कहना चाह रही थी कि आपने मुझे कहा कि मैं गायिका भी हूँ। गायिका तो हम उसे कह सकते हैं जिसने बाकायदा तालीम ली हो, तो मैंने ऐसा, तो जैसा आपको बताया कि सब सरस्वती की देन है, चाहे ये शब्द हैं या स्वर है, जो कुछ भी है माँ सरस्वती की देन है। इसमें अपने प्रयास से मैंने कहीं कुछ इसमें नहीं किया है, तो कहीं मैंने बाकायदा इसकी तालीम नहीं ली है।
1: नहीं, लेकिन बिना तालीम के आपके जो सुर हैं वो बहुत ही सही लगते हैं, और जिस तरह से आपने तरन्नुम में अभी सुनाया, बहुत खूब।
0: नहीं, इसी को तो ईश्वर की देन कहते हैं।
1: बिल्कुल, माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही है।
0: ये मेरी खुशकिस्मती, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ।
1: आपने फिल्मों में भी गीत लिखे, तो वो किस तरह से वाकया हुआ था आपकी जिंदगी में, वो बताइए।
0: हाँ, ये 1994 की बात है
1: जी।
0: मैं, आप जैसा आपको बताया, मैं कवि सम्मेलन 1991 से के आसपास में लगभग एक, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल रूप से, मैं इस फील्ड में आई कवि सम्मेलन के
1: जी।
0: तो पूरे देशों में, देश के हर कोने में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति मैंने दर्ज कराई है। तो बॉम्बे में भी मैं कवि सम्मेलन के लिए ही गई थी, और वहाँ के जो आयोजक थे हमारे, एक मनहर साहब करके थे, अब इस दुनिया में अभी वो नहीं हैं
1: जी,
0: तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि फिल्मों के लिए लिखना चाहोगी कुछ, श्रृंगार के गीत भी मैं काफ़ी पढ़ा करती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ लिखती हैं तो कुछ मुखड़े वगैरह सुनाइएगा। तो मैंने उन्हें बताया और उन्होंने फिर केसी बोकाड़िया जी को सुनाए फ़ोन पर ही मेरे, और उनको बहुत ही पसंद आए। फिर उन्होंने, अगले दिन हमने मीटिंग रख ली, और उस समय उनकी एक फिल्म थी आओ प्यार करें, जिसमें सैफ अली खान और शिल्पा शेट्टी नायक नायिका थे, तो वो फिल्म उनकी फ्लोर पर थी, तो उनको मेरा ये गीत इतना पसंद आया, दरअसल गज़ल थी मेरी एक जिसको उन्होंने गीत में परिवर्तित करवाया
1: जी।
0: वो आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चित रहा वो गीत, कि हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका,
1: बेचैन
0: कर
1: कर गया
0: मैं
1: हमें
0: ख्याल
1: आपका, क्या बात।
0: तो ये गीत माँ सरस्वती ने मुझसे लिखवाया जो फलक तक गया
1: जी
0: बॉलीवुड की, और काफ़ी इस गीत को चर्चा मिली। इसके अलावा भी एक दो गीत और लिखे मैंने फिल्मों में, गुंडागर्दी फिल्म में भी लिखे, लेकिन बस ये कि ये कुछ आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि उस समय मेरी अपनी गृहस्थी की शुरुआत भी तभी हुई थी, और मेरे कवि सम्मेलन के करियर की शुरुआत भी तभी थी, और फिल्मों में भी जो गीत है वो उसी दौरान आए, तो सब कुछ ऐसा हो गया, तो उस समय मुझे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो मेरे सामने प्रश्न था। तो जाहिर है हम परिवार को पहले चुनते हैं,
1: वाह,
0: और इसी वजह से आगे कुछ बन नहीं पाया, लेकिन मैं मुतमईन हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि चलो, आदमी को भाग्य में जितना होता है उतना मिलता है, और मेरे को भगवान की दया से, वक्त से मुझे ज़्यादा ही कुछ मिला है, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ
1: बहुत खूब,
0: और पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैं जहाँ भी हूँ।
1: क्या बात है। तभी आपकी ये जो कलम है आपको कहाँ से कहाँ पहचान दिलाई है उसने? आपने जैसा कि बताया कुछ अभी देर पहले कि आप ब्रिटेन अभी गई थी, तो वहाँ पर भी लोग आपकी शायरी के कायल हो गए। तो हम भी चाहेंगे कि चलते चलते हमारे कार्यक्रम में आपकी एक नज्म या आपकी कोई एक और कविता अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
0: ज़रूर ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगी। महिलाओं के हवाले से ही कुछ बातें कहना चाहूँगी ताकि हमारी जो नारी है वो और सशक्त तो है ही, लेकिन और सशक्त बने
1: बिल्कुल,
0: और निराशा का भाव उसमें से कहीं चला जाए। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 मुक्तक ज़रूर पढ़ना चाहूँगी।
1: स्वागत
0: कि स्त्री के स्वाभिमान को कई बार अभिमान की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन 4 मिसरे मैं पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, आप जानती हैं अना स्वाभिमान को कहते हैं, कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं। और कोई तो बात है मुझ में कि मेरे बारे में मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं,
1: बहुत
0: मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं। और बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कुछ हौसलों की पंक्तियाँ भी उनके सामने मैं पढ़ूँ। और कहना चाहती हूँ कि धूप हो, जिंदगी में मुश्किलें सबके होती है, तब कहती हूँ कि धूप हो बरसात हो और हाथ में छाता नहीं, धूप है बरसात है और हाथ में छाता नहीं, दिल मेरा इस हाल में भी अब तो घबराता नहीं, और मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, राह हो आसान तो चलने का मजा आता नहीं,
1: क्या बात,
0: राह हो आसान तो चलने का मजा आता नहीं। और मैं एक, आप इजाजत दे तो एक गीत महिलाओं के हवाले से पढ़ दूं, उसके 2-3 छंद मैं पढ़ देती हूँ गीत के। नारी को आप जानते हैं वात्सल्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वो वज्र का रूप भी धारण कर लेती है। आप जानती हैं कोई स्त्री जब मीरा बनकर, मीरा की तरह प्रेम के गीत लिख सकती है, तो समय आने पर झांसी की रानी बनकर तलवार भी उठा लेती है। तो कुछ इसी तरह का भाव इस गीत में है, मैं रखती हूँ आपके सामने। कि वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो

जाऊंगी। और गीत का बंद देखिएगा कि पतझरों की पीर की पाती सही, वेदना के वंश की था तीस ही। एक वक्त था जब कवि को लिखना पड़ा था कि अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। लेकिन अब आज के दौर में जब कविता किरण लिखती है तो क्या लिखती है देखिएगा कि पतझरों

हमारे राजस्थान में तो ऐसी रानियां भी हुई हैं जिन्होंने अपना सर काट कर युद्ध के मैदान में अपने पतियों को भेज दिया था। वो हर जगह प्रेरणा का रूप, कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। बंद पढ़ती हूँ, देखिएगा कि

0: और आप जानती हैं महिला परिवार की धुरी होती है।
1: बिल्कुल।
0: तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि सभ्यता मुझसे है, मैं हूँ संस्कृति, आत्म गौरव की हूँ अनुपम आकृति।

ढल जाऊंगी। और गीत का आखिरी बन प्रस्तुत करती हूँ। महिला जब चारों तरफ से संतरासों से घिर जाती है, मानसिक सामाजिक पारिवारिक दबावों से घिर जाती है, तो क्या संकल्प लेती है देखिएगा।

0: बहुत खूब कविता जी, बहुत
1: धन्यवाद
0: खूब।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: कविता जी, आपकी अभी तक कई सारी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, वो पुस्तकें किन-किन नामों से हैं और इस वक्त क्या कुछ और तैयारी चल रही है आपकी अगली पुस्तक के लिए?
1: जी हाँ बिल्कुल, मेरी दरअसल 10 किताबें अभी तक शाया हो चुकी हैं।
0: जी
1: 5 हिंदी में हैं और 5 राजस्थानी में हैं।
0: जी
1: जैसा आप जानती हैं मैं राजस्थान से हूँ, मेरी मातृभाषा राजस्थानी है,
0: जी
1: तो 5 किताबें मेरी राजस्थानी में भी आई हैं और 5 हिंदी में हैं। नाम आपने पूछे तो मैं बता देती हूँ। मेरा पहला जो संग्रह आया था वो गज़ल संग्रह था, दर्द का सफ़र।
0: जी
1: वो 1991 में आ चुका था, तब बहुत ही कम उम्र में थी, लेकिन लिखा इतना कुछ ज़्यादा है कि
0: जी
1: बस माँ ने ही लिखवाया, सरस्वती ने, जो भी है। लेखन मेरा बहुत हमेशा मुखर रहा और प्रखर रहा और निरंतर रहा। तो पहला संग्रह था दर्द का सफ़र, उसके बाद एक कविताओं को आया था तुम कहते हो तो,
0: जी
1: और फिर कुछ क्षणिकाएं लिखी थी जिनका टाइटल था चुपके चुपके। जो मन के जो भाव होते हैं वो
0: जी
1: चुपके चुपके ही कहे जाते हैं, तो चुपके चुपके शीर्षक से था। और उसके बाद एक और गज़ल संग्रह आया था तुम ही कुछ कहो ना, जिसे अकेडमी अवार्ड भी मिला। और अकेडमी से ही मेरी हिंदी हिंदी साहित्य अकेडमी से ही मेरी एक और किताब आई, 5वीं, मेरा गीत संग्रह, जिसका नाम है ये तो केवल प्यार है। तो बहुत पसंद किया गया लोगों ने। और इसके अलावा 5 किताबें मेरी राजस्थानी में
0: राजस्थानी में
1: हैं। और आप शायद आश्चर्य करें, हालांकि आश्चर्य की बात नहीं, आजकल गज़लें हर भाषा में कही जा रही हैं, तो मेरी जो 3 किताबें हैं वो राजस्थानी गज़ल की हैं।
0: क्या बात है।
1: तो पहला जो संग्रह था वो बखतरी बातां उसका टाइटल था, और उसके बाद आया बोलीरा बाण, और फिर एक कविता संग्रह आया मुखर मून करके,
0: जी
1: और फिर एक मैंने आध्यात्मिक दोहे लिखे हैं इन दिनों, अभी रिसेंटली पिछले साल ही मेरी किताब प्रकाशित हुई है, वो है सूली ऊपर सीज, जिसमें
0: जी
1: आध्यात्मिक दोहे हैं।
0: जी
1: और इसके बाद एक गीत संग्रह पहली पहली प्रीत राजस्थानी गीतों का आ चुका है, और अभी 2-3 संग्रह और तैयार हैं। मैंने जैसा बताया लिखा
0: जी
1: मैंने बहुत है, कहानियाँ भी बहुत लिखी हैं, तो कहानियों का संग्रह मेरा तैयार है, गज़लों का तैयार है, और कतात का, मुक्तकों का भी। तो 3-4 संग्रह भी मेरे प्रकाशन के लिए तैयार हैं।
0: तो कविता जी, आज आपने हमें मुक्तक सुनाए, कविताएं सुनाई, गजल सुनाई, वो राजस्थान से आप ताल्लुक रखती हैं, तो हम उसी में ही कुछ सुनना चाहेंगे और इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे।
1: मैं राजस्थानी में, जैसा मैंने बताया गज़लें कही है, तो एक गज़ल के 2 शेर मैं आपको सुना देती हूँ,
0: सॉरी
1: और बड़े आसान से हैं, समझ में भी आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता इतने कठिन हैं।

0: तो कविता जी, यह अभी हमने राजस्थानी में भी सुन लिया, बहुत खूब। हमारा तो कुछ और प्रिय कविताएं, कुछ शायरी जो आपने लिखी है वो आप सुनाना चाहें तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को हमें सुना दीजिए प्लीज।
1: ज़रूर, मैं कुछ मुक्तक आपके सामने रखना चाहूँगी जो लोगों के भी बड़े काम आएंगे, श्रोताओं के भी बड़े काम आएंगे।
0: स्वागत है।
1: लेकिन एक मुझे गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, महिलाओं के हवाले से, औरत के हवाले से मैंने बहुत कुछ लिखा कहा
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो आज की औरत को हम आए दिन देखते हैं कि कुछ न कुछ घटनाएं उनके साथ घटी रही हैं। औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बहुत ही संकीर्ण हो चली है।
0: जी
1: तो मैं ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए गज़ल के कुछ शेर में पढ़ देना चाहती हूँ कि मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझे मुझ में।
0: क्या
1: हमें पुरुषों की सोच को बदलना होगा। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। और क्या क्या है कि हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। और क्या क्या है औरत में कि हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। और कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में, कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में। जब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में। कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में। जब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में। और मैं फकत जिस्म नहीं हूं कि फना हो जाऊं। शेर देखें। मैं फकत जिस्म नहीं हूं कि फना हो जाऊं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में।
0: बहुत
1: मैं फकत जिस्म नहीं हूं कि फना हो जाऊं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। और मुझको करता है खबरदार खता से पहले, मुझको करता है खबरदार खता से पहले। मुझको इतनी है तसल्ली के खुदा है मुझ में,
0: वाह
1: मुझको इतनी है तसल्ली के खुदा है मुझ में। और एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है, एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है। और एक वो शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। एक वो दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है, एक वो शख्स कि जो मुझसे ही खफा है मुझ में। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर, दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर। बात कोई तो जमाने से जुदा है मुझ में।
0: क्या बात है।
1: मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। और चंद कतात पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हम कितना ही अच्छा करने की कोशिश करें, हर आदमी अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे भीतर रह
0: जी
1: जाती है।
0: जी
1: तब मैं खुदा की इबादत के दो शेर पढ़ रही हूँ। तब मैं उनसे कहती हूँ, देखिएगा, कि हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तू खूबी में यूं तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक खारे समंदर सी, मेरे मौला तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना।
0: बहुत
1: तू
0: खूब।
1: अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। और कहती हूँ कि हम चाहे मोहब्बत करें, चाहे इबादत करें, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ हमें करना चाहिए। चार मिसरे पढ़ती हूँ। कि न मुझ में मैं रहूं बाकी, न तुझ में तू रहे बाकी। न मुझ में मैं रहूं बाकी, न तुझ में तू रहे बाकी। न मुझ में मैं रहूं बाकी, न तुझ में तू रहे बाकी। न हम में हम रहे बाकी। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, और छुपा हो लाख पर्दों में समंदर नूर का, लेकिन उसे होना पड़े जाहिर। इबादत हो तो ऐसी हो। और बहुत सारे युवा श्रोता भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उनके लिए चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा। कि दिल में उम्मीदें जगाओ तो सही, दिल में उम्मीदें जगाओ तो सही। ख्वाब पलकों पर सजाओ तो सही। और इतना भी ऊंचा नहीं है आसमां, तुम परों को आजमाओ तो सही,
0: क्या बात है।
1: तुम परों को आजमाओ तो सही।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कविता किरण जी। आप समय निकालकर रेडियो आज़ाद हिंद के स्टूडियो में आई, हमसे मुखातिब हुई, हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, इसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं।
1: मैं भी रेडियो आज़ाद हिंद के श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाहती हूं, और साथ ही आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, आपने मुझे यहां के श्रोताओं से रूबरू होने का मौका दिया। और बस अपनी दो पंक्तियां अंत में पढ़ना चाहूंगी कि किरण जहान से हटकर हमारी हस्ती हो। हर आदमी ये चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि किरण जहान से हटकर हमारी हस्ती हो, किसी हुजूम का हिस्सा हमें नहीं होना, किसी हुजूम का हिस्सा हमें नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो इसी के साथ श्रोताओं, हम कार्यक्रम वागर्थ से विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वागर्थ, ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 MHz पर। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। विषय है नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार। नर्मदे हर, मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के आप पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके, 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं, तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, या भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडी द्वीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यानी अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5000 साल पुराने हैं या 4000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर के घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई और जहां धरती ऊपर उठ गई वहां आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूंगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है। कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं। भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है। संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तब मुझे पता चला कि एक कल्चुरी राजवंश था। इस कल्चुरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चुरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चुरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अलहन देवी। वो लगभग कल्चुरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्य बच जाए। और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि ये विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के, उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो, इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय। ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कौल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कौल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर, अब

0: पहला दृश्य देखा, वहां हर खेत में से मूर्तियां निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है, हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रहा नहीं। तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एकार्णव शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे हाथ, वही दिन रात चलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल, सुप्त सुप्त जल, तृषा तृषित है शेष देन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल, सुप्त सुप्त जल, तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत है। काल प्रलय घनघोर गहन, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल, सुप्त सुप्त जल, तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत, गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत। तो एकार्णव, तो एकार्णव के निवृत्त मेर में निष्ठ चेतना चल स्थिर में, गंज लीन रस तेज लीन है, परसनाथ थिर चेर स्थिर में। जलत जलत जल, जलत जलत जल, जलत जलत जल, जल अनंत उलझ परत, जलत जलत जल, जल अनंत, जल जल अनंत। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल, सुप्त सुप्त जल, तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत, गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत। तो रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो नर्मदा, प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में। दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है, ये शुभांग देही शुभम करोति इदं वरेण्य पंथ धर्मदा, ये शुभांग देही शुभम करोति इदं वरेण्य पंथ धर्मदा, शुभम वरेण्य सदा सर्वदा, नर्मदाति पुण्य नर्मदा। हरिनिनाद शम शम निनाद, शंभू निनाद जलधार सर्वदा, शिव स्थापन हृदय हृदय। हर हर हर हर मर मातृ नर्मदा, कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो नर्मदा, काल नहीं बाधा प्रवाह में, मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, नर्मदा नर्मदा नर्मदा। बहुत
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य, विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम, विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज रात 7:30 पर आप सुन सकते हैं। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा कुछ पलों का इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। वीना सिन्हा के अग्नि गर्व में जलती पंखुड़ियों पर शोध आलेखों के संकलन शिनाख्त अग्नि गर्व में जलती पंखुड़ियों का विमोचन 12 मई को किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 5 बजे से दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में होगा। उद्घोष साहित्य सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा परिषद भोपाल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस वर्ष भी 25 मई को आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत गायन नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के लिए निःशुल्क ऑडिशन 11 मई को जवाहर बाल भवन में होंगे। प्रेम, प्रकृति, करुणा और विश्व मानवता के संदेशवाहक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र में प्रणति पर्व का भावपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. आर. पी. दुबे, डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स, डॉ. संगीता जौहरी के साथ विनय उपाध्याय तथा अभिजीत सोलंकी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के पूर्व रंग में छात्रों आशुतोष लवकुश कुमार, आर्यन विक्रम, दक्ष कौशिक, विजय सरदार, दुर्गेश कुमार और मेहर कसेरा ने गुरुदेव की कविताओं का प्रभावशाली पाठ किया। गर्मियों की छुट्टियों को यादगार और एक्टिव बनाने के लिए टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित समर कैंप बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हां, यहां खेल, फिटनेस और मनोरंजन का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जहां बच्चे पूरे उत्साह के साथ नई गतिविधियां सीखते नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में बच्चों की चहल पहल देखते ही बनती है। कोई फुटबॉल के मैदान में दौड़ लगाता दिखाई देता है तो कोई बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अपने हाथ आजमा रहा है। वहीं कराटे, जूडो और बॉक्सिंग जैसी गतिविधियों में बच्चे आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं। स्केटिंग ट्रैक पर बच्चों का संतुलन और आत्मविश्वास देखने लायक रहा। मंगल पांडे की बंदूक रानी लक्ष्मीबाई के घर से प्राप्त बंदूकों सहित छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए गए शस्त्रों को देखने का मौका भोपाल वासियों को मिलने जा रहा है। जी हाँ, ये खास प्रदर्शनी लगाई गई है भारत भवन में, तो इस प्रदर्शनी को देखने जरूर जाइएगा क्योंकि यहाँ प्रदर्शनी में आपको 700 साल पुराने अस्त्र शस्त्र भी देखने को मिलेंगे। और अब मौसम पर एक नज़र। गुरुवार को सुबह से रात तक मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। सुबह से दोपहर तक तेज़ धूप और गर्मी रही। इसके बाद धूप और बादलों की आँख मिचूली शुरू हुई। शाम ढलते वक्त बड़े तालाब, बोट क्लब, सैर सपाटा और नीलम पार्क समेत कई इलाकों में मौसम का नज़ारा देखने लायक था। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि दोपहर 3:30 पर तापमान 39.3 डिग्री तक पहुंच गया था। देर शाम नमी आने से गरज चमक वाले बादल बने। रात करीब 8:15 के बाद शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। रात 11:30 तापमान 13.5 डिग्री कम होकर 26 पर आ गया। शहर में आज भी हल्के बादल छाने, दिन के तापमान में इजाफा होने की आशंका है। तो ये थी मौसम की जानकारी और इस मौसम में रखना होगा आपको अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। तो रखिएगा सभी का ख्याल, हमें दे अनुमति कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ भावना सोमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा। दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा है।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आज़ाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश गान 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।
1: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण दीप्ति के साथ। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। याद करो कुर्बानी, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मास्टर अमीर चंद की।
0: याद करो कुर्बानी।
2: दिल्ली की पुलिस ने बहुत सारे आदमियों को एक स्थान पर बंद कर दिया और वो उनमें से एक एक को बुलाकर कुछ पूछताछ करने लगी। जो लोग बंद किए गए थे उन्हें ये पता नहीं था कि वे किस अपराध में पकड़े गए हैं। उनसे तो केवल उनका नाम ही पूछा गया था, नाम बताने पर उन्हें पकड़ लिया गया था। ये कितनी विचित्र बात है कि उन सबका एक ही नाम था। जी हाँ, वे सब दीनानाथ नाम के व्यक्ति थे। दिल्ली के सभी दीनानाथ उस समय पुलिस की गिरफ्त में पहुंचकर दीन और अनाथ हो गए थे। पुलिस को दीनानाथ नाम के एक अपराधी की तलाश थी, इस कारण पुलिस ने दिल्ली के सभी दीनानाथ पकड़ लिए थे। पुलिस ने अपने दीनानाथ भंडार में से एक को निकाला और पूछना प्रारंभ किया, क्या नाम है तुम्हारा? दीनानाथ। और पिता का नाम? जी, बैजनाथ। कहाँ के रहने वाले हो?
3: मैं दिल्ली का।
2: तुम धंधा क्या करते हो?
3: मैं तो बस दर्जीगिरी करता हूं।
2: तुम सरकार के खिलाफ पर्चे क्यों छापते हो?
3: साहब, मैं बगैर पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं पर्चे लिखना या छापना क्या जानू?
2: देखो, सीधे सीधे सब कुछ बता दो, वरना हम तुम्हें बुरी तरह से मारेंगे और भूखा प्यासा एक कोठरी में बंद कर देंगे।
3: आपको अख्तियार है, जो चाहे सो करें, मैं वो बात कैसे बता दूं जो मुझे पता ही नहीं।
2: ठीक है, जा सकते हो तुम। दर्जी दीनानाथ को सिपाही ने ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। उसे छोड़ा नहीं गया जब तक असली अपराधी दीनानाथ का पता नहीं चल जाता। कोई कैसे छोड़ा जा सकता था?
3: दीनानाथ भंडार से इसी प्रकार एक एक दीनानाथ को बुलाया जाता, उससे पूछताछ की जाती और डरा धमका कर दूसरे स्थान पर बंद कर दिया जाता।
2: पुलिस की योजना थी कि पहले पूछताछ भर की जाए और बाद में दीनानाथ पूजा प्रारंभ की जाए। पूजा से बड़े बड़े बिगड़ैल भी राह पर आ जाते हैं, ये उस वक्त पुलिस का अनुभव था।
0: श्रोताओं, आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति रचना के बाद।

0: श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस को तलाश थी दीनानाथ नामक व्यक्ति की, और उसने दिल्ली के सभी दीनानाथ नामक व्यक्तियों को पकड़ लिया था। अगली बार जो दीनानाथ पुलिस के सामने लाया गया, उसके व्यवहार से ही ये लग रहा था कि वो अपराधी हो सकता है। वो पुलिस वालों से आंखें मिलाने से कतरा रहा था, और उसकी आवाज में भी वो स्वाभाविक निर्भीकता नहीं थी जो निरपराध व्यक्ति की आवाज में होती है। उससे भी पूछा गया, सरकार के खिलाफ जो पर्चे छप रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हो तुम?
1: जी, मैं लिबर्टी या किसी भी पर्चे के बारे में कुछ नहीं जानता साहब।
0: पुलिस ने अभी तक किसी भी व्यक्ति के सामने लिबर्टी पर्चे का उल्लेख नहीं किया था। अपने आप ही वो नाम दीनानाथ नामधारी उस व्यक्ति के मुंह से निकल गया। असली अपराधी इस प्रकार पुलिस के हाथ लग गया। अंदर ले जाकर जब उसकी पूजा का उपक्रम किया गया तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उसने स्वयं को बचाने के लिए पुलिस का मुखबिर होना स्वीकार कर लिया और अपने उन साथियों के नाम भी बता दिए जो सरकार के खिलाफ पर्चे छपवा कर गोपनीय रूप से बांटा करते थे। जिन व्यक्तियों के नाम दीनानाथ ने बताए उनमें से एक प्रमुख नाम था अमीर चंद। श्रोताओं, जब लिबर्टी पर्चे के बारे में जानकारी मिल गई तो दीनानाथ नामधारी अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। असली अपराधी दीनानाथ द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर अमीर चंद और उसके दत्तक पुत्र सुल्तान चंद को दिल्ली ने 19 फरवरी सन 1914 को उसके मकान पर ही गिरफ्तार कर लिया। दीनानाथ और सुल्तान चंद दोनों ही सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने क्रांतिकारी संगठन की सारी बातें पुलिस को बता दीं। पेशे से अमीर चंद अध्यापक थे और इसीलिए वे मास्टर अमीर चंद के नाम से प्रसिद्ध थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के समाजसेवी व्यक्ति थे। स्वामी रामतीर्थ से उनका परिचय हो चुका था और बहुत समय तक उन्होंने रामतीर्थ विचारधारा का प्रचार भी किया था। वे सभी के प्रति दयालु थे और विशेष रूप से विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। एक अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल भी दिल्ली के ही रहने वाले थे और मास्टर अमीर चंद उनके संपर्क में आ चुके थे। लाला हरदयाल के कारण ही वे क्रांति के क्षेत्र में पहुंचे थे। जब लाला हरदयाल विदेश चले गए तो पंजाब में क्रांति संचालन का कार्य वे मास्टर अमीर चंद को ही सौंप गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस भी पंजाब में क्रांति संगठन और विप्लव आयोजन का कार्य कर रहे थे। उनसे भी मास्टर अमीर चंद का परिचय हो गया। इस परिचय का परिणाम ये निकला कि भारत के वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना बना ली गई। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली लाई जा रही थी। एक स्पेशल ट्रेन द्वारा वॉयसराय महोदय कलकत्ता से दिल्ली पहुंचे। उनके स्वागत की तैयारियां शासकीय स्तर पर भी हो रही थीं और क्रांतिकारियों की ओर से भी। एक क्रांतिकारी वसंत कुमार विश्वास को बम विस्फोट का प्रशिक्षण रास बिहारी बोस पहले ही दे चुके थे। उस समय वसंत कुमार विश्वास लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर का कार्य कर रहे थे। क्रांतिकारियों की ओर से वॉयसराय महोदय के स्वागत के लिए वे भी दिल्ली पहुंचे। रास बिहारी बोस भी वहां पहुंच गए। वसंत कुमार विश्वास को मास्टर अमीर चंद के घर ठहराया गया। घटना के दिन अर्थात 23 दिसंबर सन 1912 को मास्टर अमीर चंद स्वयं वसंत कुमार विश्वास को चांदनी चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के भवन तक ले गए और वहां उनके बैठने की व्यवस्था कर दी। वसंत कुमार विश्वास एक लड़की के लिबास में महिलाओं के बीच बैठ गए और ज्यों ही वायसराय महोदय की सवारी वहां पहुंची उन्होंने बम छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप वायसराय काफी घायल हो गए और उनका अंगरक्षक मारा गया। बहुत खोज करने पर भी घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। मास्टर अमीर चंद खामोश बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। लिबर्टी नाम के पर्चे छपवा कर वे सारे भारतवर्ष में उन्हें वितरित कराने लगे। इन पर्चों के द्वारा वे देश में अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा का प्रसार करना चाहते थे। कभी ये पर्चे पंजाब में छपवाए जाते तो कभी बंगाल में।
1: पर्चों में जो लिखा होता था वो कुछ इस तरह होता था, गीता, वेद और कुरान के मतानुसार यही उचित ठहरता है कि जाति, रंग और संप्रदाय का भेद न करके मातृभूमि के सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया जाए। दिल्ली में वायसराय पर किए गए प्रयत्न से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर की यही इच्छा है कि ये सब किया जाए। अंग्रेज हुकूमत को मात पर मात लग रही थी और वो किसी कांड का कोई सुराग नहीं पा रही थी। दिल्ली बम कांड और लाहौर बम कांड के अपराधियों की वो छाया भी नहीं छू सकी थी। अब उसने सारा ध्यान राजद्रोही पर्चों का प्रचार प्रसार करने वालों की ओर लगा दिया। किसी प्रकार उसे ये पता लग गया कि इन पर्चों से दिल्ली का कोई दीनानाथ नाम का व्यक्ति संबंधित है। दिल्ली के सभी दीनानाथ उसने पकड़ लिए और आखिरकार पकड़े जाने पर असली दीनानाथ ने भंडाफोड़ कर दिया। पर्चों के अपराधियों की खोज करने पर दिल्ली और लाहौर में बम फेंकने वाले पकड़ लिए गए। आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस राष्ट्र वंदना के बाद।

0: भतीजे और दत्तक पुत्र सुल्तान चंद ने जब अपने धर्म पिता मास्टर अमीर चंद के विरुद्ध बयान दिए तो इस विश्वासघात को सहन न करके मास्टर जी अदालत में ही रो पड़े। वे सोचने लगे कि जिस व्यक्ति का मैंने पालन पोषण किया, जिसको मैंने अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया और जिसको मैंने अपने हृदय का संचित स्नेह प्रदान किया, वही मेरे गले में फांसी का फंदा डलवाने के लिए मेरे विरुद्ध गवाही दे रहा है। उनका हृदय इस ठेस को सहन नहीं कर पाया और वो बहुत रोए। उस दिन से वे निरंतर उदास रहने लगे। उनकी उदासी तभी दूर हुई जब न्यायालय ने उनके विरुद्ध फैसला सुनाते हुए उन्हें फांसी का पुरस्कार दिया। फांसी का दंड सुनकर मास्टर अमीर चंद खिल गए। आंतरिक हर्ष ने उनके चेहरे को दैदीप्यमान कर दिया। अंबाला जेल में मास्टर अमीर चंद को 11 मई सन 1915 के दिन फांसी पर झुलाया गया। फांसी का फंदा उन्होंने उसी प्रकार की प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया जैसे कभी उन्होंने वरमाला ग्रहण की थी। अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करके मास्टर अमीर चंद इस दुनिया से उठ गए और अपनी मस्ती की एक प्रेरक याद अपने देशवासियों के लिए छोड़ गए। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इस कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की मास्टर अमीर चंद की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी। आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ही रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है उस्ताद अली अकबर खान पर। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओ, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खंबे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूं। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से दो सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नृत्य की पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधियां में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द ट्रैक।

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसी में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालिदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी साज पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और उनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा,
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था उस्ताद अली अकबर खान पर। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9 बजे से। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि धर्म महासभा के बाद स्वामी जी का तूफानी दौरा चल रहा था। कई शहरों में व्याख्यान देकर और लोगों पर अपना प्रभाव जमाकर वे अमेरिका के उत्तर की ओर डिट्रॉयट नगर में आए। इरी झील के तट पर शिकागो के उत्तर में स्थित डिट्रॉयट नगर अब अमेरिका तथा विश्व का एक बड़ा औद्योगिक महानगर बन चुका है। आजकल वह मोटर गाड़ी बनाने का प्रसिद्ध केंद्र है। स्वामी जी जब वहाँ गए थे तब मोटर नहीं बनते थे, पर अन्य अनेक उद्योग वहाँ स्थापित थे।
1: जैसा दूसरे नगरों का हाल था, वैसे ही वहाँ भी प्राचीन और नवीन विचारों का घात प्रतिघात चल रहा था। डिट्रॉयट में स्वामी जी के दिन विशेष रूप से स्मरणीय हैं, क्योंकि वहाँ भी उनके अनेकों मित्र तथा विरोधी पैदा हो गए थे, पर अंततः विजय टीका उन्हीं के माथे पर सुशोभित हुआ।
0: महासभा के दिनों में अनेक विरोधी उनके विरुद्ध ज्यादा खुल करके बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें महासभा की मर्यादा और औपचारिकता का ध्यान रखना पड़ता था। वे कहते थे,
2: जब तक स्वामी विवेकानंद महासभा में थे तब तक हमारे अतिथि थे, परंतु अब तो महासभा समाप्त हो गई है, अतः अब उनके तथा उनके मतों के विरुद्ध उत्साह पूर्वक आक्रमण चलाना हमारा कर्तव्य है।
0: डिट्रॉयट में विरोधियों का आक्रमण सुनियोजित ढंग से शुरू हुआ, पर स्वामी जी इन विरोधों के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो गए। उनका संकल्प और दृढ़ हो गया।
1: 13 फरवरी 1894 को जब स्वामी जी डिट्रॉयट स्टेशन पर उतरे, वहां बर्फानी तूफान चल रहा था। मित्रों ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। डिट्रॉयट के समाज में सुसम्मानित, सुशिक्षित, कुलीन तथा मिशिगन राज्य के भूतपूर्व गवर्नर की पत्नी श्रीमती जॉन जे वागले उन्हें अपने घर ले गई। धर्म महासभा के दौरान स्वामी जी इनसे परिचित हुए थे। दूसरे ही दिन श्रीमती वागले ने स्वामी जी के सम्मान में एक भव्य प्रीति भोज का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। उनमें शहर के मेयर, वकील, व्यापारी, प्राध्यापक, विभिन्न संप्रदायों के पादरी आदि समाज के शीर्ष स्थानीय लोग थे। परंतु उस भव्य सभा में एक बेसुरी आवाज सुनाई पड़ी। दूसरे दिन अखबार में छपा,
3: अत्यंत लड़चा के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के सम्मुख स्वामी जी ने एक शब्द भी उच्चारण करने के पूर्व ही जिस घर में स्वामी जी निमंत्रित होकर आए थे उसी में बैठकर एक निर्लज्ज महिला स्वामी जी के सम्मुख ही उन पर आक्रमण करते हुए निष्ठिरता पूर्वक उनकी निंदा करने लगी।
0: स्वामी जी ने साहस पूर्वक सभी प्रश्नों का जवाब देकर के इस आक्रमण का सामना किया और उन्हें आभास हो गया कि अब उन्हें इसी प्रकार के आक्रमणों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग पादरियों के डर से उनसे मिलते तक नहीं थे, पर वागले परिवार के रुतबे के कारण विरोधी बहुत ज्यादा हंगामा नहीं मचा सके। श्रीमती वागले ने उन्हें अपनी छत्र छाया में संभाल कर रखा था। स्वामी जी ने उनके बारे में कहा था,
4: श्रीमती वागले अनेक गुणों से संपन्न थी। वे विविध विद्वत सभाओं की सदस्य थी, अनेक धर्म शिक्षालयों की संचालिका थी, बहुत से सेवा संस्थान उनके दान से चलते थे, और जब उनके पति गवर्नर थे तब वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के लिए विख्यात हो गई थी। शिकागो विश्व मेले की महिला व्यवस्थिकाओं में से वे एक थी और इसी से उनके साथ मेरा परिचय हुआ था। उन्होंने बहुत भ्रमण किया था और फलस्वरूप उनकी मनोवृत्ति अत्यंत उदार हो गई थी। 1894 ईस्वी में संभवतः उनकी आयु 61 वर्ष की हो गई थी।
1: स्वामी जी के आगमन के पूर्व ही डिट्रॉयट फ्री प्रेस नामक समाचार पत्र में प्रकाशित घोषणा में लिखा था,
3: विश्व मेले में सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदू प्रतिनिधियों में एक थे स्वामी विवेकानंद। पहले वे एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण थे, परंतु सन्यासी संघ में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने अपना ये पद त्याग दिया, क्योंकि सन्यासियों के लिए ये पहला नियम है कि अहंकार से मुक्त होने के लिए उन्हें अपने ब्राह्मणोचित विशेष अधिकार आदि छोड़ने होंगे। महासभा में बिना किसी नोट की सहायता से विशुद्ध अंग्रेजी भाषा में बोलकर उन्होंने अपने श्रेष्ठतम वक्ताओं में से अन्यतम प्रमाणित किया। उनका उच्चारण इतना मधुर होता था कि अनेक श्रोताओं के मतानुसार यदि उनका अर्थ नहीं भी समझ में आए तो भी संगीत के रूप में उनका रस स्वादन किया जा सकता है। महासभा के पश्चात उन्होंने अनेक नगरों तथा महानगरों में विराट जनसभाओं को संबोधित किया है और उनकी आकर्षक शक्ति तथा किसी भी विषय को प्राणवत एवं आलोकित कर देने की पद्धति की सभी श्रोता एक मत से प्रशंसा करते हैं। महान समस्याओं पर उनके विचार उन्हीं के समान पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध से आने के कारण स्वाभाविक रूप से ही अमेरिका वासियों की प्रेरणा तथा नवलोक प्रदान करते हैं। जब शाम वर्ण के

0: निरीहता का सम्मिलन होगा और जो प्राच्य तथा पाश्चात्य के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। संभव है कि मेरा मार्ग मेरे पाश्चात्य पड़ोसी के लिए अनुकूल न हो। हमारे प्रयास के बिना ही हिंदू धर्म के अनेक तत्व दूर दूर तक फैल रहे हैं और इनकी अभिव्यक्ति क्रिश्चियन साइंस, थियोसॉफी तथा एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया में दिख पड़ती है। ईसाई धर्म सीधा हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। कैथोलिक मत भी अपने सभी कर्मकांड जैसे पाप स्वीकार का कक्ष, संतों में श्रद्धा आदि हमसे ही प्राप्त करता है।
1: धर्मांतरण का प्रसंग उठने पर स्वामी जी ने अशोक के शिलालेखों में से पढ़ करके सुनाया कि सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करनी चाहिए।
2: स्वामी जी डिट्रॉइट में 13 फरवरी से 23 फरवरी और दूसरी बार 9 से 30 मार्च तक रहे। उन दिनों उनके कुल 8 व्याख्यान हुए थे। इनके अतिरिक्त वे लगभग प्रतिदिन घरों में आयोजित गोष्ठियों में भी भाषण देते थे। डिट्रॉइट में उनके साथ एक भक्त महिला भगनी क्रिस्टीन से परिचय हुआ, जिन्होंने बाद में स्वामी जी से दीक्षा ली थी। वे उन दिनों प्रतिदिन स्वामी जी के व्याख्यान सुना करती थीं। उन्होंने लिखा था,
3: उनके रहस्यमय व्यक्तित्व से जो देवी शक्ति प्रवाहित होती, इतनी प्रबल थी कि उनके संपर्क में आने वाले संतुष्ट हो जाते थे। वो मानो बिल्कुल अभिभूत कर डालती थी।
1: डिट्रॉइट के एक विद्यालय में जर्मन भाषा की शिक्षिका मिस मार्ग राइट्स को कहती हैं कि स्वामी जी का एक ही व्याख्यान सुनने के बाद जीवन में पहली बार मिस कुक के मन में वक्ता को धन्यवाद देने की इच्छा हुई। स्वामी जी थोड़ी देर उनका हाथ पकड़े रहे। उस समय की अनुभूति के बारे में मिस कुक ने कहा,
4: उनकी महानता तथा पवित्रता के बारे में मेरे मन में ऐसी छाप पड़ी कि 3 दिनों तक मैं अपने वो हाथ धोने की कल्पना तक नहीं कर पाई थी। स्वामी जी की इस अदम्य शक्ति के प्रभाव से अगर महानगर के उनके शत्रु तथा मित्रों में भयानक तूफान उत्पन्न होता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इन व्याख्यानों को सुनकर अनुभव करना और फिर भी पहले के समान रह जाना क्या संभव था। श्रोताओं की समस्त धारणाएं बदल जाती थी। आध्यात्मिकता का बीज पौधा बनकर जीवन भर तब तक विकसित होता रहता जब तक कि फलदायी नहीं हो जाता।
2: डिट्रॉइट में स्वामी जी का पहला व्याख्यान हुआ 14 फरवरी को यूनिटेरियन चर्च में। श्रीमती फंकी ने लिखा है,
5: अब भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। एक राजा के समान उनकी भव्य प्राणवंत ओजस्वनी और शक्तिशाली आकृति किस प्रकार सभा मंच जाकर आरूढ़ हुई और जो ही उनका प्रथम शब्द उच्चरित हुआ वो संगीतमय स्वर जो कभी वीणा के समान मृदु तो कभी गंभीर झनकारमय और सुदूर प्रसारी था, त्यों ही सब कुछ निस्तब्ध हो गया। चारों ओर ऐसी शांति व्याप गई जिसका स्पष्ट अनुभव किया जा सकता था। सब सांस रोककर सुन रहे थे।
1: उसी व्याख्यान के दौरान वहाँ के बिशप निंडे ने कई विरूप मंतव्य किए थे जिसे स्वामी जी ने कहा,
0: नीति के मामले में भारतवासी अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अति उच्च हैं। ऐसे देश में मिशनरियों का जाकर कुछ नए विचार फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदू का धर्म मनुष्य को भद्र विनयी और भगवान के रचे अन्य सभी जीवों के प्रति सहानुभूतिशील तथा प्रीतिपूर्ण बनाता है। मिशनरियों को चाहिए कि वे उस देश में जाकर वहां के पवित्र जल का पान करें और देखें कि वहां सहस्त्रों महात्माओं का जीवन एक विराट समाज पर कितना मनोरम प्रभाव डालता है।
1: बिशप निंडे एक अत्यंत प्रतिभाशाली धर्म प्रचारक थे। वे कहा करते थे कि पूर्वी देशों में जो भी सुधार हुआ है वह ईसाइयों की वजह से हुआ है, उनकी अपनी चेतना से नहीं। स्वामी जी ने कहा,
0: बिशप ने यदि प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो वे जानते होंगे कि यह बात मिथ्या है। बुद्ध, कन्फ्यूशियस तथा अन्य नैतिक सुधारकों के मूलभूत आचार व मत ईसा के आगमन के काफी पूर्व से ही वहां सुविदित थे। युगों पूर्व वहां विश्व बंधुत्व तथा मानव का दिव्यत्व प्रचारित हुआ था। यदि बिशप निंडे एक सच्चे मिशनरी के रूप में प्राच्य देशों में जाना चाहते हैं, तो शांति और प्रेम के आनंदमय संदेश का ठीक ठाक प्रचार करने के लिए मानव का दिव्यत्व विषयक मुख्य पाठ उन्हें पहले सीख लेना होगा।
2: उन दिनों विदेशी समाज में और भी एक बड़ा भ्रम फैला हुआ था कि हिंदू योगीगण विविध प्रकार के अलौकिक और चमत्कारिक घटनाएं दिखा सकते हैं। हिंदू धर्म को उन दिनों एक वास्तविक जीवन दर्शन नहीं बल्कि चमत्कारों का एक भंडार माना जाता था और उनकी दृष्टि में सच्चा तो एकमात्र ईसाई धर्म ही था। स्वामी जी को बड़ी ही स्पष्ट भाषा में इस मनोभाव का खंडन करना पड़ा और बारंबार अनुरोध किए जाने पर भी उन्होंने अपने मत के प्रचार हेतु चमत्कार का सहारा नहीं लिया।
1: इस तरह वाद प्रतिवाद की सहायता से डिट्रॉयट का वातावरण काफी कुछ स्वच्छ और स्वामी जी के अनुकूल हुआ। इसके बाद 17 फरवरी को जब उन्होंने यूनिटेरियन चर्च में मनुष्य का दिव्यत्व विषय पर भाषण दिया तो अनेक समाचार पत्रों को उनके मतवाद को दबा रखने की अथवा उनके विरोध में कुछ लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इस व्याख्यान का विवरण देते हुए 18 तारीख को फ्री प्रेस में लिखा गया,
6: मौसम खराब होने के बावजूद हमारे पूर्वी बंधु यही संबोधन उन्हें पसंद है कि आगमन के आधा घंटा पूर्व ही दरवाजे तक लोगों से भर गया था। उत्सुक श्रोताओं में सभी पेशों तथा सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित थे। उनमें थे वकील, जज, धर्म प्रचारक, व्यवसायी और महिलाओं का तो कहना ही क्या, क्योंकि ये लोग बारंबार अपने व्याख्यानों में उपस्थित रहकर तथा अत्यंत मनोयोग पूर्ण उन्हें सुनकर ये जता रही थी कि अवशेष अतिथियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने को वे अति उत्सुक है। उनका घरेलू गोष्ठियों में ही उतना ही आकर्षण है जितना कि व्याख्यान के मंच पर। पिछली रात का भाषण पहले के भाषणों के समान उतना वर्णात्मक नहीं था। लगभग 2 घंटे तक विवेकानंद मानवीय तथा दैवी तत्वों का एक दार्शनिक ताना बाना बुनते रहे और वो इतना तर्कसंगत था कि उन्होंने विज्ञान को भी सामान्य ज्ञान जैसा सहज बोध और रंगीन कर डाला था, जितना कि उनके देशवासियों के हाथ का बना हुआ रंग बिरंगा वस्त्र होता है। वे प्राच्य की लुभावनी सुगंध से भी ओतप्रोत था। वो सावला व्यक्ति कविताओं का उदाहरणों का वैसा ही प्रयोग करते हैं जैसे कि एक चित्रकार रंगों का, और रंग वही भरे जाते हैं जहां वे उपयुक्त हो। इसका परिणाम विचित्र परंतु अति आकर्षण होता है। तीव्र गति से निस्तृत होने वाले तार्किक निष्कर्ष मनोरंजन से और उस कुशल वक्ता को अपने परिश्रम का फल बीच बीच में उत्साहपूर्वक करतल धमनी के रूप में प्राप्त हुआ।
1: शनिवार का अंतिम व्याख्यान मानव का दिव्यत्व के बारे में अगले रविवार को कुछ बोलने का मौका न पाकर के विपक्षी पादरी पहले के 2 व्याख्यानों का ब्यौरा देकर के काफी हंगामा खड़ा कर दिया था। इसके प्रतिवाद स्वरूप किसी ने जस्टिसिया के छद्म नाम से 13 फरवरी को फ्री प्रेस में समझाने का प्रयास करते हुए लिखा,
7: तथाकथित जिन सांप्रदायिकता, संकीर्णता, अंधविश्वास तथा कट्टरता के द्वारा हमारा धर्म अनवत होता है और जिस असत्यता, निष्ठुरता, परधर्म, असहिष्णुता तथा चरम स्वार्थपरता ने हमारे सामाजिक तथा व्यवसायिक जीवन को छा लिया है, केवल उन्हीं की उन्होंने निंदा की है। इस नगर के प्रायः हर डाक में उन्हें अनेक अपमानजनक पात्र मिला है। हमारे कानूनों तथा रीति नीतियों से अपरिचित होने के कारण उनके व्याख्यानों के आयोजन आदि के मामले में उन्हें ठगा गया है और जितना भी हो सका उनका व्यवसायिक लाभ उठाया गया है। हमारे अनेक कट्टर चर्चों की वेदी से उनके विरुद्ध अत्यंत असभ्य भाषा में प्रचार किया गया है और ये सब करने वाले वे पादरी लोग थे जिनके पास उनके बारे में जानने का समाचार पत्रों के अधूरे तथा भ्रामक विवरणों के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। ऐसे लोग उनके मुख की बातें सुने बिना उनकी आलोचना करने का साहस भी भला कैसे कर पाते हैं? यदि स्वयं आलोचना से बचना चाहते हो तो दूसरों की निंदा मत करो। मेरा मत है कि हमें और भी कारण चाहिए, कम नहीं, ताकि हम जान सके कि दूसरे लोग हमें किस दृष्टि से देखता है।
2: समाचार पत्रों के माध्यम से ये वाद विवाद पूरे फरवरी के महीने में चला था, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि एक ओर जैसे उन्होंने नीली नाक वाले कठोर खोल वाले तथा नरम खोल वाले कट्टर ईसाइयों को नाराज कर दिया था, दूसरी ओर उनके अनेक मित्र भी आकर उनसे जुड़ गए थे। बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे, चाय या भोज में आमंत्रित करते थे। डिट्रॉइट जर्नल में छपा था,
8: वे स्वीकार करते हैं कि भारत की जनता अत्यंत निर्धन, अति अशिक्षित और ऐसे अनेक संप्रदायों में विभक्त है जिसकी उपासना प्रणाली में निम्न स्तरीय मूर्ति पूजा से लेकर चरम उदार तथा व्यापक दिव्य धारणाओं पर आधारित विश्व बंधुत्व तथा एकेश्वरवाद की धारणा विद्यमान है। उनका उद्देश्य धर्मांतरित करना या अपना मतानुगामी बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसे महाविद्यालय के लिए अर्थ संग्रह करना है जिसमें शिक्षित होकर शिक्षक गण आम जनता के बीच जाकर उनसे प्रचलित अनेक दोषों का सुधार कर सके। वो कहते हैं कि भारत में पुरोहितों का चरम प्रावधान है और पुरोहित ही सत्य के विकृत कर अज्ञानता को बनाए रखते हैं। उन्हें मूर्ति पूजा में भी अच्छाई दिख पड़ती है। वे सरल भाव में स्वीकार करते हैं कि पादरियों के अधिकार से हम पाश्चात्य लोगों की प्रगति भी अवरुद्ध है। स्वामी जी का इस देश में दो उल्लेखनीय वस्तुओं पर ध्यान गया है। प्रथमतः सामाजिक मर्यादा तथा बौद्धिक उत्कर्ष के क्षेत्र में हमारी नारियों का प्रभाव और द्वितीय निर्धनों के लिए हमारी दान व्यवस्था तथा आचरण। केवल इतना ही नहीं, हमारी परिश्रम बचाने वाली मशीनों की ओर भी उनका ध्यान गया है, परंतु हमारी भौतिक प्रगति पर वे बिल्कुल भी मुग्ध नहीं है, क्योंकि ये मानव जीवन को बेहतर नहीं बना सकता है।
2: डिट्रॉइट में तीन व्याख्यान देकर ही स्वामी जी का वहाँ से विदा लेने का विचार था, परंतु मित्रों के अनुरोध पर 20 फरवरी को उन्हें ईश्वर प्रेम विषय पर व्याख्यान देना पड़ा। इस सभा में श्रोताओं की संख्या सर्वाधिक थी। यहाँ उन्होंने कहा था,
9: प्रेम केवल देता है, वो कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता। एक शासक अथवा पिता के रूप में ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है, परंतु उसमें भय का भाव भी रहता है। भारत में ईश्वर का स्नेहमयी माँ के रूप में चिंतन किया जाता है।
1: 21 फरवरी वे यात्रा के लिए प्रस्तुत रहने के बाद भी न जा सके। अंततः 23 फरवरी को वे शिकागो के लिए रवाना हुए।
2: स्वामी जी के डिट्रॉइट छोड़कर चले जाने पर भी डिट्रॉइट स्वामी जी को छोड़ नहीं पाया। उन्होंने अपने अल्प प्रवास के दिनों में ही वहाँ के कट्टरवादी समाज में तूफान ला दिया था। उनमें से किसी ने सीधे तो किसी ने घुमा फिरा कर आक्रमण किया था और कोई कोई तो गाली गलौज पर उतर आए थे। मिशनरियों के लिए स्वामी जी उस समय परम त्याज्य एक भयंकर प्राणी के समान हो गए थे। ये सब देखकर स्वामी जी ने लिखा था,
9: आजकल यहाँ के कट्टरपंथी आत्मरक्षा के उपाय खोज रहे हैं और वे मुझे यम जैसा समझते हैं और कहते हैं, बाप रे क्या भयंकर प्राणी है, हजारों हजार नर नारी से मानते हैं, ये कट्टरता को निर्मूल ही करके छोड़ेगा।
1: स्वामी जी के डिट्रॉइट से जाते ही 28 फरवरी से 4 मार्च तक उस नगर में छात्र स्वयंसेवक मिशनरी आंदोलन शुरू हुआ। शायद यह शिकागो धर्म महासभा के प्रतिवाद के रूप में बुलाया गया था, परंतु यह स्वामी विवेकानंद विरोधी था। यह बात क्रिश्चियन एडवोकेट में लिखित संपादकीय से स्पष्ट हो जाती है।
8: यह सम्मेलन विवेकानंद और उनके व्याख्यानों का ही प्रतिवाद था। विवेकानंद ने बड़े ही रोचक तर्क का जाल फैलाया था और जो वीर अधम के विरुद्ध खड़े होकर अब तक युद्ध करने वाले रहे हैं, उनमें सुदृढ़ विश्वास तथा सजीव अनुभवों के सम्मुख ये प्रतिवाद कोहरे के समान उड़ गए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

लोक संगीत यानी हमारी जमीन से जुड़ा हुआ संगीत, माटी की सोंधी महक लिए हुए कुछ गीत जो हमारी सांसों में बहते हैं, अनायास पीढ़ियों ने अगली पीढ़ी को इसे सौंप दिया। अनायास हमारी स्मृतियों में ये बस गए, हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे और एक लंबा सफर तय करते हुए ये संगीत आज भी जनमानस में रचा बसा है। लोकगीत कब लिखे गए, कब रचे गए, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं मिलता है। और मिले भी कैसे, सब प्रयास इन्हें रचा भी तो नहीं गया ना, वो तो एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जन की, जन के मन की। यूं जैसे कोई पहाड़ी नदी अपना रास्ता बनाती हुई बह चलती है पूरी स्वतंत्रता स्वच्छंदता के साथ, पूरी निर्मलता के साथ, ऐसा होता है लोक संगीत। तो आइए लोक संगीत की इसी रसधार में हम आपको भिगोएं। आज हमारे साथ चलिए बुंदेलखंड की माटी की ओर। गायक कलाकार हैं शिवरतन यादव और साथी बच्चे।

श्रोताओं, ये था बाल खेल गीत बच्चों के स्वरों में। बच्चे यूं ही खेल खेल में कोई गीत बना लेते हैं, कभी अपनी कल्पनाओं के आधार पर, या कभी खेल के नियमों को लेकर, या कभी अपने किसी साथी बच्चे को चिढ़ाते हुए एक गीत तैयार हो जाता है जो उन बच्चों के बीच लोकप्रिय होता है, सभी को याद होता है और सब साथ मिलकर उसे जब चाहें तब गाते हैं और बच्चों की कई पीढ़ियाँ उन गीतों को गाती हुई बड़ी होती हैं। तो बुंदेलखंड में ऐसे बाल खेल गीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। आइए एक और बाल खेल गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं बच्चों के स्वरों में।

ये वो समय है जब बच्चे खेल के मैदानों से दूर होते जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब बच्चे खेल के मैदानों से दूर हैं, खेल से दूर हैं, तो बाल खेल गीत भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन इन गीतों के संरक्षण का हमारा प्रयास है, आइए इसी प्रयास में आप भी भागीदार बनिए। सुनते हैं इन्हीं बच्चों के स्वरों में ये बाल खेल गीत।

श्रोताओं, लोक संगीत हमारे जीवन की हर अनुभूति से जुड़ा हुआ संगीत है। हमारे सुख दुख हों या मौसम के विविध रंग, लोक संगीत सभी से उसी मिठास के साथ जुगलबंदी करता है। तो आइए, वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली कजरी आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

श्रोताओं, शादी ब्याह के विभिन्न रीति रिवाज हों या मुंडन और उपनयन जैसे संस्कार, हर अवसर पर कोई न कोई लोकगीत अवश्य गाया जाता है। कर्ण छेदन भी एक ऐसा ही संस्कार है। एक समय था जब लड़का हो या लड़की, दोनों के ही कान छिदवाए जाते थे और इस अवसर पर भी लोकगीत गाया जाता था। तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये कर्ण छेदन गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

और श्रोताओं, अब आइए आपको सुनवाते हैं शिवरतन यादव के स्वर में ये पाई गीत। वर्षा ऋतु का ये गीत है। एक छोटा सा परिवार है, झोपड़ी में रहता है, बहुत ही अभावग्रस्त परिवार। मूसलाधार बारिश हो रही है। इस पानी के गिरने से जो दुर्दशा इस परिवार की होती है, उसका वर्णन इस लोकगीत में है।

श्रोताओं, लोक जीवन में वर्षा ऋतु का स्वागत जिस तरह से किया जाता है, शायद उस तरह से किसी भी दूसरी ऋतु का स्वागत नहीं होता। एक खुशी, एक उल्लास, एक उमंग का वातावरण रहता है, क्योंकि वर्षा के आने से समृद्धि की आशा जागती है, खेतों में बुवाई शुरू होती है। इसी ऋतु में कजलियां भी सराई जाती हैं और कजलियां सराते हुए गत्ते के एक टुकड़े को बजाते हुए गाया जाता है सहरा। तो आइए शिवरतन यादव के स्वर में यही सहरा गीत सुनते हैं।

भारत भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह के साथ। इस कार्यक्रम में आज है महक बुंदेलखंड की माटी की। श्रोताओं, बुंदेली लोकगीतों की पहचान है राई, तो बुंदेलखंड की यही पहचान कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है। सुनते हैं शिवरतन यादव के स्वर में राई में स्वांग।

बुंदेली जो हमारा लोक साहित्य है, एक छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ी बात है। अरे इंडिया

ये जो राई का नृत्य होता है उसमें बेड़ियां नाचती हैं और उनकी शादियां होती नहीं है सामान्यतः। तो जब वो शादीशुदा गृहिणी को देखती है घूंघट में, घूंघट की मर्यादा और उसका महत्व देखिए और उसकी पीड़ा देखिए। ललाय माने चाहे ना

श्रोताओं, ईसुरी बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध लोक कवि हैं। ईसुरी का साहित्य बहुत वृहद है। उन्होंने जीवन के किसी भी पक्ष को अपने साहित्य में छोड़ा नहीं है। आइए ईसुरी की चौकड़िया आपको सुनवाते हैं शिवरतन यादव के स्वर में, जिसमें नायक नायिका की बातचीत है। नायक नायिका से मिलने का आग्रह करता है। नायिका भी हामी भरती है, लेकिन कुछ विशेष सावधानी के साथ। दिन डूबे वो कहाँ और कैसे मिलेंगे, इसका इशारा है इस चौकड़िया में।

नमस्कार श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समापन करते हैं इस विदाई गीत से। स्वर शिवरतन यादव का है। बिटिया की विदाई हुई, कहार डोली लेकर चले। गांव की बेटी अपनी ही तो बेटी है। रास्ते में जो भी राहगीर मिलता है उसे यही लगता है। कैसे कैसे भाव उनके मन में आते हैं इसका वर्णन इस लोकगीत में है।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे शिवरतन यादव और साथी बच्चों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती भारत

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम आपको अपने कार्यक्रम में सुना रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी सुभागी।

अगर किसी को बेमौसम की बहुत सी चीजें देखना हो तो वो कुछ दिन आकर जबलपुर में रहे और फिर बेमौसम की बाहर देखे। बेमौसम का पानी तो जबलपुर में बहुत ही ज्यादा बरसता है। माघ महीने की एक रात की बात है, सर्दी बहुत जोर की थी और साथ ही साथ थी खूब तेज हवा जो तीर की तरह है हृदय को वेधती हुई जान पड़ती थी। बादल तो इधर कई दिनों से थे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाया करती थी, किंतु आज शाम को तेज तूफानी हवा के साथ जो पानी बरसा था वो बरसात के दिनों की याद दिला रहा था। इस समय पानी तो बंद था, परंतु बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना और हवा का तूफान उसी तेजी पर था जैसे शाम को था। इस समय वही मौसम था जिससे मैं बहुत घबराती हूँ। ऐसे आंधी पानी और तूफान में मुझे डर भी बहुत लगता है। कोई विश्वास ना करेगा, पर मैं सच कहती हूँ कि जब ऐसा अंधड़ उठता है और मेरे बच्चे घर से बाहर रहते हैं, तब मेरे मन में यही आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस आंधी में मेरा बच्चा उड़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु फिर भी मैं घबराती हूँ। कोई काम नहीं कर सकती, कुछ लिख पढ़ नहीं सकती, यहां तक कि एक जगह बैठी भी नहीं रह सकती। एक अजीब तरह की बेचैनी बनी रहती है और जब तक बच्चे लौट कर नहीं आते वो शांत नहीं होती। हाँ, तो मैं माघ महीने की एक तूफानी रात की बात कह रही थी। शाम से ही आंधी पानी का जोर था। मेरी आंखों की नींद और बच्चों की याद दोनों में होड़ तो रोज ही लगी रहती थी, पर प्रायः यही होता भी था कि नींद के सामने बच्चों की याद ही विजय हुआ करती थी। ऐसे मौसम में तो मुझे वैसे ही नींद कम आती है, फिर जब बच्चों की याद आ रही हो तो नींद भला कैसे आ सकती है। जब बादल बहुत जोर से गरजते और बिजली कड़कती तो मेरी आंखों के सामने महीनों पहले का एक दृश्य याद आ जाता। बरामदे में एक तरफ मेरा पलंग और उसी से सटी हुई मेरे नन्हे की खाट, जहां बादल गरजे, बिजली चमकी और मेरे नन्हे ने पुकारा, अम्मा बादल तो बहुत जोर से गरजते हैं, मुझे डर लगता है। माँ तुम अपना हाथ मेरी खाट पर रख दो तो मैं सो जाऊं।

0: मेरा नन्हा आज इस समय भी वहीं कहीं सोया होगा। बादलों की तड़प से उसकी नींद आज भी खुली होगी और वो डरा भी होगा। उसे रात में शायद याद न रही हो और उसने माँ कह के पुकारा भी होगा। परंतु एक ही शहर में रहकर उसमें और उसकी माँ में कितना अधिक अंतर है। मेरे हृदय में प्रबल वेग के साथ एक तूफान सा उठा। मैं फिर बैठ न सकी, उठकर टहलने लगी। इसी समय मुझे बाहर बरामदे में किसी मनुष्य की छाया से दिखी। मैं कुछ घबराई और डरी, फिर तुरंत ही ध्यान में आया कि यह तो जेल है, यहां चोर कहां से आ सकेगा। सीखचों के पास जाकर पूछा, कौन है बाहर?
1: मैं हूं बहन जी,
0: उत्तर मिला। मैंने देखा बाहर बरामदे की जाली से सटी हुई सुभागी खड़ी है। मैं उसके बहुत पास तक चली गई और मुझे ऐसा जान पड़ा कि सुभागी रो रही है। मैंने कहा, सुभागी, इतनी रात को तुम सर्दी में क्यों अकेली खड़ी हो? कोई तकलीफ तो नहीं है?
1: तकलीफ क्या होगी बहन जी? उसका स्वर कांप रहा था। ऐसा लगता था कि उसने अपने अंतर से उठते किसी प्रबल आवेग को दबा रही है।
2: नींद नहीं आती है, आप भी तो नहीं सो रही हैं, यही मैं देख रही थी, सुभागी ने अपने वाक्य को पूरा किया।
0: मैंने कहा, मेरे न सोने का कारण है सुभागी, मैं छोटे बच्चों को छोड़कर आई हूं, उनके पिता भी जेल में हैं और मैं भी हूं, मुझे उनकी याद में रात रात भर नींद नहीं आती।
2: पर तुम क्यों नहीं सोई सुभागी?
1: मेरा भी एक बच्चा है बहन जी, सुभागी ने कहा और एक गहरी सांस के साथ चुप हो गई।
2: तुम्हारा भी बच्चा है? पर कोई ना कोई तो होगा ना उसे देखने वाला।
1: मेरे बच्चे तो अकेले हैं, इसलिए मुझे इतनी फिक्र रहती है।
2: उसे देखने वाले भगवान को छोड़कर और कोई नहीं है बहन जी, कोई होता तो इतनी बेचैनी न रहती,
1: सुभागी ने कहा और उसकी आंखें सजल हो उठी। मैंने पूछा, बच्चे का पिता कहां है?
0: जेल में, सुभागी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और चुप हो गई।
1: मुझे सुभागी पर कुछ क्रोध सा चला था। सोच रही थी कि जब उसका पति जेल में था ही, तो आखिर ये क्यों बच्चे को बिल्कुल छोड़कर चली आई? बच्चे के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। माना कि इस प्रवाह में बह गई, पर तब क्या बच्चे को बिल्कुल भूल गई थी और अब रात खड़े खड़े बिताया करती है? मैंने रूखे स्वर में पूछा, जब तुम्हारा पति जेल में था और तुम्हारे बच्चे को देखने वाला कोई ना था, तब तुम्हें जेल आने की क्या पड़ी थी? तुम्हारे एक के आने ना आने से क्या फर्क पड़ जाता?
2: मैं अपने मन से नहीं आई, मुझे तो जबरन पकड़ लाए हैं, सुभागी ने बताया।
1: मैंने उसकी ओर ध्यान से देखकर पूछा, तुम्हें क्यों पकड़ लाए हैं?
2: सुभागी ने कहा,
1: क्या कहूं बहन जी, बात यह थी कि मेरे पति की थानेदार से एक बात पर कहा सुनी हो गई थी। तब से वो अदावत मानता था और इसी से आंदोलन के उठते ही उसने उन्हें पकड़वा दिया। अब घर में मैं अकेली थी और वही 9 साल का मेरा बच्चा। थानेदार आचरण का अच्छा नहीं है, उन्हें जेल भेजकर वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हारे आदमी को पकड़कर ले जाने का मुझे दुख है, पर हमको तो हुक्म की तामील ही करनी पड़ती है। जैसा ऊपर से हुक्म आया वैसा किया, पर सुभागी तुम किसी तरह की तकलीफ ना उठाना, रुपए पैसे से मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। तुम्हें जब कुछ जरूरत हो घर आ जाना या कहलवा भेजना, मैं खुद चलाऊंगा।
2: बहन जी, उसकी इस बात का अर्थ मैं अच्छी तरह समझती थी। मैंने कहा, बाबरू ना बचेगी, ये किसी भी समय आकर मेरा पानी उतार सकता है। अपने पास पड़ोस वालों से सलाह की, सबने कहा कि मेरा कहना तो ठीक है, परंतु सबको जानबूझकर भी वे थानेदार के विरुद्ध एक शब्द ना कहेंगे और मेरी कुछ सहायता ना करेंगे, क्योंकि थानेदार किसी को संदेह पर ही पकड़कर जेल भेज सकता है, उसे अधिकार है। फिर बिना मतलब कोई जेल क्यों जाए? और सबकी राय हुई मैं गांव छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊं। शाम को थानेदार का आदमी मुझे बुलाने आया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर वो बहुत चढ़ गया। उसने मुझे धमकी दिलवाई कि यदि मैं उसकी बात न मानूंगी तो मुझे पछताना पड़ेगा। मैं सब बात के लिए तैयार थी, पर आबरू नहीं बेचना चाहती थी। उसी रात में बच्चे को लेकर गांव छोड़कर चली आई और बहन जी सवेरे यहां के स्टेशन पर उतरते ही पकड़ ली गई। कुछ पर्चे न जाने कहां से मेरी पोटली में रख दिए थे। उनका कहना था कि मैं उन पर्चों को बांटती फिरती थी। मेरा रम्मू रोने लगा। मैंने कहा, इसे अकेला कहां छोड़ूंगी, इसे भी मेरे साथ ले चलो। पर वो मेरी कब सुनते थे। रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती मुझसे अलग करके लारी पर बिठा के लाए और बंद कर दिए। तब से 2 महीने हो गए, बच्चे की कोई खबर नहीं है। जब पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, तब जी और व्याकुल होता है। कहां सोया होगा, क्या खाया पिया होगा उसने। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है और गांव वाले तो थानेदार के डर के मारे उसे अपनी छाया भी ना छूने देंगे। उसके बाद बहन जी एक दिन दफ्तर में मजिस्ट्रेट ने बुलवाया। वहां वही थानेदार भी था। मुझसे कहा कि तुम ये कह दो आगे से कोई भी काम ऐसा ना करोगी और थानेदार साहब के कहने में रहोगी तो तुम्हें छोड़ देते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं छोड़ना है बहन जी, वैसे तो मैं कोई गलत काम नहीं करती, पर यह तो माफी मांगना हो जाता ना, और फिर छूट कर भी तो उसी पिशाच थानेदार के चंगुल में फंस जाती, इसलिए ये कह के कि मुझे नहीं छूटना है चली आई। पर बच्चे की ममता है, रात दिन अंदर एक आग सी लगी रहती है, उसका कहीं से कुछ पता मिल जाता, पर पता कहां से मिलेगा, ये तो जेल है, वो कहां गया होगा। और सुभागी का भरा हुआ हृदय जैसे फूटने के लिए आतुर हो उठा, वो फिर रो पड़ी।

मेरे पास सुभागी को सांत्वना देने के लिए शब्द न थे। उसका दुख कितना तीव्र है, उसकी कहानी कितनी करुण है, उसे क्या कह के समझाऊं। बच्चों के लिए हृदय कितना व्याकुल रहता है ये मैं जानती हूं। फिर भला सुभागी को, जिसका बच्चा स्टेशन पर जबरदस्ती उससे अलग कर दिया जाता है, मैं क्या कह के समझाती। ये सोच ही रही थी कि मेरी बच्ची ने जागकर मुझे पुकारा और बिना कुछ कहे ही उठकर मैं अंदर बच्ची के पास चली गई। उसी प्रातःकाल 11 बजे मैं टांके पर नहाने गई। नहाकर कपड़े धो रही थी कि तभी सुभागी भी आई। वही मुरझाया सा चेहरा और बुझी बुझी सी आंखें। मेरा हृदय सुभागी के दुख से दबा सा जा रहा था। मैं उसकी तरफ देख भी ना सकी। कितने में ही जमादारी ने लाकर मुझे एक पत्र दिया। पत्र मेरे बच्चों का था और कपड़ा धोना भूलकर मैं पत्र पढ़ने लगी। पत्र समाप्त करते करते मेरे एक बच्चे ने लिखा था, अम्मा हम लोग छोटे छोटे हैं तो हमने एक छोटा सा नौकर भी रखा है और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस लड़के के माता पिता भी इसी आंदोलन में पकड़े जाकर जेल जीवन बिता रहे हैं। इसका नाम रम्मू है, अच्छा सा लड़का है माँ, और हम लोग उससे नौकरों सरीखा बर्ताव भी नहीं करते, उसे पढ़ाते लिखाते भी हैं। पिता की गिरफ्तारी के बाद माँ के साथ शहर नौकरी करने आया था। स्टेशन पर ही उसकी माँ पकड़ ली गई। तब से कई जगह नौकरी के बाद अब हमारे घर आया है और उसे यहाँ अच्छा लगता है। कहता है कि अपने माता पिता के छूटने तक वो हम लोगों के पास ही रहेगा। क्या कोई इस तरह के लड़के की माँ तुम्हारे जेल में है माँ? पास ही नहाती हुई सुभागी से मैंने पूछा, तुम्हारे लड़के का नाम क्या है सुभागी? नाम तो उसका रामलाल है, पर रम्मू रम्मू कहके पुकारते हैं सब लोग, सुभागी ने बतलाया। हर्षातिरेक से मेरी आंखें सजल हो गईं। मैंने कहा, सुभागी अपने बच्चे का समाचार सुन लो। और बच्चों की चिट्ठी का वो अंश जिसमें उन्होंने अपने छोटे से नौकर के विषय में लिखा था पढ़कर सुना दिया। सुभागी को जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो, उसने मेरे पैर छू लिए।

0: श्रोताओं, यह था हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आज आपने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी सुभागी। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अपने किस्सा गो संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज आप सुनेंगे नाटक एका। आलेख डॉक्टर भगवान दास माहौर का है, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की।

0: बेटा बेटा बहुत तकलीफ हो रही होगी ना?
1: नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। तेरे सर की कसम अम्मी, तू झूठ मानेगी। जितना अच्छा मुझे आज लग रहा है ना अम्मी, वैसा तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया अम्मी।
0: कितना खून निकल गया मेरे लाल का, और कहता है दर्द नहीं होता, अम्मी से झूठ बोलेगा। हाँ।

0: हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो। अम्मी, मशीन गन, फौजी लारियां, बम फम सब बेकार। ऐसे भागे अम्मी, ऐसे भागे जैसे कि आए ही नहीं थे। सभी झंडों को एक साथ देखकर हराम खोर दंग रह गए। दौड़ते तो थे घोड़ों पर, पिस्तौलें और रिवॉल्वर बांधे, मगर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी अम्मी।
1: अच्छा? हाँ,
0: और इधर वो जोश था अम्मी, आदमी औरत बच्चे बुढ़े सभी झंडे थामे हुए थे। जिधर देखो उधर झंडे, सभी के हाथों में झंडे। अम्मी, मेरे हाथ में हरा झंडा था।
1: अच्छा, पर बेटा तुझे चोट कैसे लग गई?
0: चोट? उफ अम्मी, ये भी कोई चोट है अम्मी? जुलूस के बाद हम सब लौटे तो मेरे साथ फेडरेशन के साथी थे। हरा झंडा अब भी मेरे हाथ में शान से उड़ रहा था अम्मी। सामने से एक सर्जेंट जुलूस के वक्त जो भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाए आंख बचाते उधर देख रहे थे, अब हमको सिर्फ चार देखकर बहादुर बनने चले थे। हैं? उनकी 144 धारा 4 लाख के जुलूस से नहीं टूटी थी और हम चार से टूट गई थी।
1: अच्छा?
0: हाँ,
1: फिर?
0: लगे अकड़फू करने, बोले तितर वितर हो जाओ, झंडा उतार लो। बड़ा गुस्सा आया अम्मी, बड़ा गुस्सा आया मुझे। खिसे आए हुए तो थे ही, उनके हाथ में बंदूकें भी थी, और फिर क्या था, छिड़ गई और चलने लगी।
1: अल्लाह अल्लाह, फिर क्या हुआ बेटा?
0: फिर क्या था अम्मी, पैतरेबाजी होने लगी, वे हमारी ओर लपके पकड़ने और झंडा छिनाने। हमने भी गलियों में चक्कर काटे और जो पत्थर मिले चलाए। एक सार्जेंट संगीन चढ़ाए झपटा मेरे ऊपर, वो तो सीने में ही घुसेड़ देता अम्मी।
1: अल्लाह बेटा।
0: इतने में पास ही की गली से एक और मेरे जितना ही नौजवान एक छोटा सा तिरंगा लिए हुए निकल पड़ा और उसने जो ये माजरा देखा तो फौरन टूट पड़ा उस सार्जेंट पर।
1: अच्छा?
0: हाँ, और दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। अम्मी, उस बेचारे के हाथ में संगीन घुस गई।
1: अल्लाह।
0: अम्मी, उसने मेरा सीना बचाकर संगीन की चोट खुद खाई। अम्मी, संगीन उसकी बांह में घुस गई। बस अम्मी, बस मुझे भी खून चढ़ाया अम्मी। झपट उस शैतान के पुतले पर, वो बंदूक से उस नौजवान का सर तोड़ने ही वाला था कि मैं जा गिरा उस पर। उसकी बंदूक का कुंदा मेरे हाथ पर लगा, बस, और फिर हम दोनों ने उसे वहीं जहन्नम पहुंचा।
1: ना बेटा, ना, ऐसा नहीं कहते, कोई सुन लेगा।
0: अरे अम्मी, वही तो था वो नौजवान जो मुझे घर तक पहुंचा गया। हाँ, हालांकि चोट उसे भी कम नहीं आई थी, उसकी वहां से भी खून जारी था।
1: हाँ बेटा, बड़ा भला लड़का था वो भी, मुझे ठीक तेरी तरह ही प्यारा लग रहा था। हाँ। अल्लाह उसका भला करे, उसने मेरे लाल को बचाया, मेरे जिगर के टुकड़े को।
0: हाँ मैं, हाँ
1: नूरुल, वो भी तेरी ही तरह चारपाई पर पड़ा होगा ना।
0: हाँ।
1: उसकी अम्मी भी मेरी तरह उसके पास बैठी रो रही होगी। तुम दोनों की खैर खुदा से मनाती हूँ।
0: हाँ मैं।
1: अल्लाह दोनों को सलामत रखे।
0: हाँ, हाँ।
1: बेटा, तू उसका घर जानता है क्या? तुझे उसका नाम मालूम है?
0: अम्मी, उसका घर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे क्या, हम दोनों का घर हिंदुस्तान है अम्मी, हम भाई भाई हैं।
1: बेशक। हाँ। बेशक बेटा, इंशाल्लाह।
0: रास्ते में मैंने उसका नाम पूछा था अम्मी। मुझे याद भी है क्या नाम था उसका। हाँ, निहारेंदु, निहारेंदु,
1: निहारेंदु।
0: हाँ, मुझे तो लगता है अम्मी मानो सभी नौजवानों का नाम जो कंधे से कंधा मिलाकर वतन की आजादी के लिए दुश्मन से लड़ते हैं, उन सभी का नाम मुझे निहारेंदु ही लगता है अम्मी। निहारेंदु।
1: बिल्कुल ठीक बेटा, नूरुल।
0: हाँ।
1: निहारेंदु। अल्लाह अल्लाह तुम दोनों को, तुम सभी नूरुल निहारेंदुओं को सलामत रखे।
0: हाँ अम्मी। हाँ, अब सो जाओ।
1: हाँ
0: सो जाओ अम्मी।
1: तू भी सो जा बेटा, दर्द दर्द तो नहीं हो रहा ना?
0: माँ दर्द काहे का, तू देखती नहीं जितना अच्छा मुझे आज लग रहा है उतना अच्छा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, कभी नहीं।
1: हाँ, अच्छा बेटा मैं तेरे सर पर हाथ फिरा देती हूँ, तू सो जा, आराम से सो जा।

0: क्या हुआ? मिल गया? कहाँ मिला मेरा नूरुल? ये क्या बोलते क्यों नहीं? कहाँ है नूरुल? खुदा खैर करे, तुम तो ऐसी सूरत बनाए हो कि क्या पूछ रही हूँ मैं? सुन रहे हो?
1: क्या पूछती हो?
0: अरे मैं पूछ रही हूँ कि मेरा नूरुल मिल गया? नूरुल को देखा है?
1: हाँ हाँ देखाया हूँ नूरुल को, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों नूरुलों को देखाया हूँ मैं।
0: क्या मतलब?
1: किसी का सर नाली में, थड़ अलग सड़क पर, किसी का एक हाथ इस नाली में था, दूसरा अलग उस नाली में, सीने में गहरे घाव, बदन से बदबू, चारों तरफ मार काट, आग की लपटें, लूट खसोट, बहुत कुछ देखाया हूं मैं नूरुल की मां, बहुत कुछ देखाया हूं मैं। हैवानियत खुल कर खेल रही है, हर तरफ नूरुल हक कश्तो खूं में मुब्तिला है। हक ही जाने जिनका वो खून कर रहे हैं या जिनसे उनका खून हो रहा है, वो क्या नूरुल हक नहीं है? वो क्या किसी दूसरे किसी काफिर हक के नूर है जो हमारे खुदाए पाक के नूर को बुझाने में लगे हैं? और हमारी ये नूरुल हक उस दूसरे काफिर खुदा के नूर को गर्क करने के लिए खून के दरिया बहा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा एक ही है तो फिर हम सब उसके ही बंदे हैं, जाने चाहे ना जाने, माने चाहे ना माने, अरे हैं तो उसी के ही बंदे, फिर कश्त तो खून के क्या मायने हैं? बोलो क्या मायने हैं? कहते हैं कि इस्लाम खतरे में था तो नहीं, मगर अब जरूर खतरे में है, और अहले इस्लाम ही नहीं अहले हुनूद भी खतरे में है, और अगर कोई खतरे से उबर रहा है तो वो है अहले फिरंगी। उस रोज लड़का जब हाथ तोड़वा के आया था तब कितना खुश था, क्यों जानती हो? क्योंकि यही अंग्रेज जिन्होंने हमारा सब कुछ छीना, हमें हर तरफ से बर्बाद किया। अरे उन अंग्रेजों के मुंह पर उस दिन खौफ था, और वो आंखें बचाते भागते नजर आ रहे थे, और आज वो आंखें दिखाते हुए सर पर चढ़े चले आते हैं, और अपनी बंदूकों से आज तुम्हारे उन्हीं नूरुल और क्या नाम था उस हिंदू लड़के का, हाँ निहारेंदु, हाँ वे सभी नूरुल और निहारेंदुओं को अपनी बंदूकों से भून रहे थे, उसी बंदूक से जिसे एक निहारुल और निहारेंदु ने छिना कर फेंक दिया था उस दिन, और उसी एक बंदूक ने आज सैकड़ों नूरुल और सैकड़ों निहारेंदुओं को भून डाला।
0: नहीं, ऐसा मत कहिए। कहाँ है मेरा नूरुल?
1: कहाँ है तुम्हारा नूरुल? किस नूरुल की पूछ रही हो तुम?
0: कैसी बातें कर रहे हो? अपना नूरुल, मेरा नूरुल, मेरा जिगर का टुकड़ा।
1: अच्छा, तुम्हारा नूरुल?
0: सत्यानाश उन काफिरों का, मुझे जहन्नुम में जाए, कैसी कयामत बर्पा करती है। कहाँ है मेरा नूरुल? चुप क्यों हो? बोलो कहाँ है मेरा नूरुल?
1: अच्छा, अब तुम्हें भी नूरुल निहारेंदुओं की फिक्र नहीं है? निहारेंदु सब जहन्नुम में जाएं, और नूरुल क्योंकि तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारी गोद में खेले। वाह क्या बात है यार?
0: क्या हो गया है तुम्हें? मेरी जान जा रही है और तुम हंस रहे हो?
1: हाँ मैं हंस रहा
0: हूँ। कहाँ है मेरा नूरुल? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, कहाँ है मेरा नूरुल? मुझे मेरा नूरुल चाहिए बस।
1: तुम्हारा नूरुल पुलिस अस्पताल में आराम से लेटा है, बड़े मजे में है वो, जब सैकड़ों नूरुलों से जिनका सर तन से जुदा हो गया है, उन सैकड़ों निहारेंदुओं जो मकानों में जिंदा जला दिए गए हैं, तुम्हारा नूरुल पूरी सलामती से है बेगम। बस सिर्फ एक बात है कि उसके पास अब वो हाथ नहीं है जिससे उसने कभी निहारेंदियों की खोपड़ी चकनाचूर होने से बचाई थी। तंगे में एक फिरंगी की गोली उसके उसी हाथ में लगी, अस्पताल में उसका वो हाथ काट दिया गया है। या खुदा, क्या कयामत वाकई में आ गई है।

0: हटो हटो हटो
1: हटो।
2: भैया भैया एक मिनट सुनना भैया, ये मेरे बच्चे का नाम है, ये जरा बताइए ना कहाँ मिलेगा।
3: एन एन एन
0: अरे हटो हटो रास्ता दो
3: भैया। अच्छा हाथ कट गया है, देखिए मैं बताऊं। हाँ नंबर 23, आप उस बाएं दरवाजे से बस सीधे सामने के बेड पर वो।
2: अच्छा यहाँ से
3: जी
2: सीधे जाओ
3: जी।
2: अच्छा शुक्रिया भैया शुक्रिया। 22 ये है 23। कौन बेटा? बेटा नुरूल है?
4: नुरूल की माँ?
2: कौन है? निहार? निहारिंदु? निहारिंदु
4: मालूम होता है माँ धोखा हो गया है, नुरूल भी घायल होकर अस्पताल में आया है और आप उसी से मिलने आई हैं।
2: वो
4: माँ एक बार और हम दोनों घायल हुए थे, उस रोज भी मैंने तुम्हें माँ कहा था और तुमने आशीर्वाद दिया था। आज शायद तुम आशीर्वाद ना दोगी, परंतु तुम्हारा दर्शन ही मुझे आशीर्वाद दे रहा है। तुम उसी नुरूल की माँ हो जिसने उस रोज मेरी जान बचाई थी। कितने खुश थे घायल होकर भी हम उस दिन, और आज चले जा रहे हैं घृणा से। हाँ घृणा से एक दूसरे के प्रति और स्वयं अपने भी प्रति। अच्छा माँ तुमने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? कैसा चक्कर है ये, भाई भाई लड़ते हैं और माँ आशीर्वाद नहीं देती।
2: निहारिंदु तुम्हारा भी हाथ कट गया है?
4: हाँ मेरा तो हाथ कट ही गया है। मालूम हुआ उस नुरूल वीर निडर साहसी नुरूल का भी हाथ कट गया है। हाँ माँ हम दोनों के ही हाथ कट गए हैं, हम दोनों के ही। अच्छा रुको रुको बॉय देखो ये नुरूल की माँ है, निहारिंदु की नहीं। देखो देखो देखो नुरूल हक भी कहीं यहीं कहीं दूसरे वार्ड में होगा, इन्हें उसके पास ले जाओ। जाओ माँ अपने पुत्र पर स्नेह बरसाओ, प्रणाम, जाओ।
2: अपना ध्यान रखना बेटा।
4: माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया ना शाप ही दिया, माँ आशीर्वाद या श्राप कुछ भी ना दिए बगैर नहीं रहती। जब माँ कुछ ना दे पाए तो समझ लो जरूर कुछ गड़बड़ी कहीं पर है। मैं कुछ सोच तो रहा हूं, कुछ समझ में भी आ रहा है मेरी। तो बॉय इनको ले जाओ ले जाओ।
2: तुम्हारा भी हाथ कट गया है, वही हाथ जिसमें संगीन लगी थी?
4: हाँ माँ हाँ, हाँ।
2: चलो चलो भैया।
4: प्रणाम करता हूँ। हाथ कट गए, हम दोनों के हाथ कट गए। वे ही हाथ जो उस दिन अपने अपने झंडे एक साथ मिलाए हुए थामे थे। बेशक बेशक हम लोगों के हाथ कट गए हैं, अपराध अपराध हमारा हो चाहे उनका, हम हाथ हम दोनों के कट गए हैं। और फिर चार हाथ किसके हो गए हैं, हमें तो स्पष्ट है, मगर उन्हें भी तो स्पष्ट हो, उन्हें भी तो स्पष्ट हो, उन्हें भी तो स्पष्ट हो।

0: नूरुल बेटा, बेटा बहुत बहुत तकलीफ है।
1: घबराओ मत अम्मी, मैं अब तुम्हारी गोद में हूं। आज से 2 महीने पहले भी तो मैं घायल होकर तुम्हारी गोद में था। उस वक्त मेरा चेहरा जर्द नहीं था, क्यों है ना अम्मी?
0: हाँ,
1: उस वक्त मुझे पसीने नहीं छूट रहे थे, है ना अम्मी?
0: हाँ,
1: उस वक्त तो मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। बस यही समझ लो अम्मी, क्या समझ लो, किसी की कुछ समझ में नहीं आता अम्मी। पहले तुम निहारेंदु को देखाई, उसका भी हाथ कट गया है, वही हाथ जिससे उसने तुम्हारे नुरुल की जान बचाई थी। हमारे ये हाथ किसने काट लिए हैं? खुद हमने? क्या जुनू है
0: बेटा। पर तुम्हारे अब्बा कहते थे।
1: वही तो मैं कह रहा हूं अम्मी, वही कह रहा हूं। अब्बा ने कहा, मैंने सुना। पहले तो समझा कि ये पुराने ख्याल के आदमी हैं, आजकल की सियासत को समझते ही नहीं। मगर अकबर को मरे 350 साल होने आए, ये उस वक्त का हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद लिए डोलते हैं। मगर मैं सोचता हूं कि नतीजा वही हो रहा है जो वे कहते हैं कि हाथ कटे हम दोनों के, और हम दोनों के हाथों ने जिस संगीन, जिस बंदूक को बेकार कर दिया था, वही आज हम दोनों पर चल रही है। बड़ा दर्द है अम्मी।
0: अच्छा बेटा, लेट जा यहाँ, मैं पानी पिला दूँ?
1: नहीं अम्मी, मुझे अपनी गोद में ही रहने दो, मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी, तुम्हारी गोद में लेटकर मुझे उस जुलूस वाले दिन की याद आ जाती है और दिल तड़प कर रह जाता है। मगर इस तड़प में कितनी उम्मीद है अम्मी, ये तड़प कितनी मीठी तड़प है अम्मी। क्या निहारेंदु भी ऐसे ही तड़प रहा होगा अम्मी?
0: हाँ, वो भी तो ऐसा ही तड़पता मालूम होता है, ऐसा ही।
1: तो अम्मी, ये तड़प हमें फिर मिला देगी। मगर अम्मी, हम अलग हुए ही क्यों? ये सवाल तो फिर भी रह गया ना, कुछ समझ में नहीं आता अम्मी।
0: या खुदा, रहम कर, रहम कर, बहुत बहुत दर्द हो रहा है बेटा।
1: कहाँ अम्मी, हाथ में? नहीं, उससे कहीं ज्यादा दिल में है। अम्मी, जब तुम आई तो मैं ख्वाब देख रहा था, मैंने देखा मैं घोड़े पर सवार, हाथ में नंगी तलवार, काफिरों के लश्कर पर टूट पड़ा। खटपट मेरी तलवार से काफिरों के हाथ कट कट कर गिर रहे हैं, सैकड़ों हजारों हाथ कट कर गिर गए। मैं बहुत खुश था, हाँ अम्मी, मैं बहुत खुश था। मैंने गौर से देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जितने भी काफिर थे सब के सब निहारेंदु, और सबका वही हाथ कट गया। मैंने देखा एक गोरा सार्जेंट जैसे लपकता हुआ मेरी तरफ आया, और उसने संगीन चलाई, और संगीन ठीक मेरे हाथ में बैठिया। मैं कराहने लगा। मैंने देखा कि वे कटे हुए हाथ उछल उछल कर वहीं गिर गए। उस दिन निहारेंदु के हाथ की तरह संगीन का बार अपने पर लेने वाला कोई नहीं आया अम्मी, और वो सार्जेंट मुझे अंगूठा दिखाकर चिढ़ाने लगा। मैं दर्द और गुस्से से कांपने लगा और कराने लगा। मेरी आंख खुल गई। हाँ, अम्मी, मेरी आंख खुल गई। मगर उनकी भी तो आंखें खुले अम्मी।
0: बेटा सबकी ही आंखें खुल जाएंगी। मेरी समझ में नहीं आता ये सब कुछ तो हो किस लिए। सभी कहते हैं ये बुरा है मगर देखती हूं तो सभी इसमें मुब्तला है। क्यों?
1: कुछ नहीं अम्मी, ये भी हो लिया।
2: चलिए अब वक्त खत्म हुआ, चलिए वार्ड से बाहर आइए।
1: अच्छा अम्मी, निहारेंदु कुछ तो बोला होगा तुमसे?
0: बोला तो, बताया, वो भी यही सब कहता है बेटा। कह रहा था माँ आशीर्वाद नहीं दिया, पर नुरुल मुझे ना जाने कैसा कैसा लग रहा था बेटा, ना जाने कैसा लग रहा था।
1: अम्मी उसे भी दुआएं देती जाना, उसे भी दुआएं देती जाना।
2: चलिए चलिए चलिए चलिए,
0: अपना ध्यान रखना, आराम करना बेटा।

0: महारंदू, मैंने खूब सोच लिया है और चाहे जो भी हो, ये आपसी खून खराबा तो बिल्कुल बेईमानी ही नहीं, बल्कि गलत या सही जिस किसी भी चीज के लिए हो रही है, ये उसी के लिए मुजिर है। मतलब ये कि मजहब, तहजीब और तमद्दुन क्या खाक रहेगा अगर हम वैश्याना ढंग से हैवानियत पर ही उतर आए।
1: सही है,
0: मजहब इंसान के लिए है और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये कुछ तो खून और कुछ नहीं, सीधा इंसानियत का खून है। जब हम इंसान ही ना रहेंगे तो मुसलमान क्या खाक रहेंगे है?
1: ये तो ठीक है। फिर रही आजादी, हिंदुस्तान की आजादी, या आप जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसी की आजादी, इससे तो हम आजादी की हर सूरत से दूर हो गए।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर जब तक ये पाकिस्तान का मसला हल नहीं होता, तब तक ये खतरा ही है।
1: हाँ नूर भाई, माफ करना, तुम जिस तरह का पाकिस्तान चाहते हो, मुझे उसमें तो कोई बुराई नहीं दिखती।
0: भाई सच कहता हूं, मैं भी यही समझता हूं कि पाकिस्तान अखंड हिंदुस्तान में ही हो सकता है। पाकिस्तान में सियासी या जमाती जमहूरियत होगी, यही सब कहते हैं ना है? और तमाम हिंदुस्तान में भी यही होगी। जहां तक सियासी व जमाती जमहूरियत का ताल्लुक है, हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता में रुकावट क्या होगी? अगर वही जमहूरियत हिंदुस्तान में ना हुई जो हम पाकिस्तान में चाहते हैं, तो पाकिस्तान में जमहूरियत हो ही नहीं सकती।
1: ठीक है, हमारे अखंड हिंदुस्तान और तुम्हारे पाकिस्तान में इस तरह कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, मगर झगड़ा है और हो रहा है।
0: मतलब साफ है कि कुछ लोगों के पाकिस्तान और कुछ लोगों के अखंड हिंदुस्तान में झगड़ा है और वे झगड़े की जड़ है। हमारे तुम्हारे बीच यानी आवाम के बीच झगड़े की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि वे ताकतें क्या हैं जिनके अखंड हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में झगड़ा है, और हम तुम दोनों को ही मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। और नहीं तो भैया, ना पाकिस्तान होगा और ना अखंड हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान गुलामिस्तान ही रहेगा, वहां हिंदू और मुसलमान दोनों का, बल्कि यूं कहिए कि इंसानियत का कब्रिस्तान और बन जाएगा जो हम आंखों से देख रहे हैं।
2: बाबू, आप लोग आज अस्पताल से ज्वाइन कर दिए गए,
0: यानी
2: अब आप घर जाएंगे।
1: तुमने पहले क्या कहा था, अस्पताल से क्या कर दिए गए?
2: ज्वाइन।
0: ज्वाइन,
1: व्हाट अ हैप्पी वर्ड, कितना अच्छा शब्द है।
0: ज्वाइन कर दिए गए, जोड़ दिए गए, वाकई वॉय क्या है।

0: अरे ये क्या है? अरे आज फिर से सभी झंडे एक साथ जुलूस में हैं।
1: हाँ चलो चलो चलो नूरुल, सामान बाद में मंगा लेंगे। हाँ, हम लोग इनके साथ ही चलें।
0: हाँ जरूर, चलो चलो यार। सुनो नेहारेंदु, अपने कटे हुए हाथों को देखकर किसी को तैश ना आए, इसीलिए मिलकर साथ साथ चले।
1: हाँ।
0: हैं? और अपनी ये लटकती हुई आस्तीन लाओ लाओ इधर लाओ।
1: हाँ,
0: ये ऐसे। हाँ ये आस्तीन ऐसे बांध लेते हैं। हाँ।
1: अब हम न केवल भाई भाई बल्कि सियामी जुड़वा बहनों की तरह हिंदुस्तानी जुड़वा भाई मालूम होते हैं।
0: हाँ, हाँ, हाँ। देख देख, हाँ? देख देख मार रही है।
1: हाँ।
0: देख
2: अरे निहार नूरुल, तुम दोनों ये हाथ, अल्लाह अल्लाह, तुम दोनों तो जुड़वा बच्चे मालूम होते हो। चलो चलो चलो, अब्बा जुलूस लेकर आ गए। चलो अपना अपना झंडा ले लो बच्चों। नूरुल ये ले अपना हरा झंडा, और निहार तेरे लिए तिरंगा। जा जा जुलूस में शामिल हो जा। आज फिर दुश्मन भाई भाई का एका देखकर थर्राएगा।

अभी आप सुन रहे थे नाटक एका। आलेख था डॉक्टर भगवान दास माहौर का। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बालेंद्र सिंह कुशवाहा, अजय पाल, इरफान सौरभ, स्वास्तिका चक्रवर्ती और सरोज शर्मा। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, भारत भारती कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, लोकगीतों में एक पूरी पीढ़ी, एक सदी दर्ज होती है। उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनके सुख दुख, उनकी खुशी उल्लास, उनके पर्व, सभी कुछ उनमें होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोक संगीत एक सांगीतिक दस्तावेज है किसी संस्कृति का। एक मन से उठा राग समूह का राग बन जाता है, एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचता हुआ ये सदियों की यात्रा तय करता है। तो आइए कल से चलकर आज तक पहुंची इस स्वर यात्रा का आस्वादन करें। मालवा अंचल के कुछ लोकगीत आपको सुनवाते हैं आज भारत भारती कार्यक्रम में। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी। कार्यक्रम का शुभारंभ इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, किसी घर में बच्चे के जन्म से बड़ा भला कौन सा उत्सव हो सकता है। बच्चे का जन्म यानी घर के आंगन में एक फूल का खिल जाना, जीवन की बगिया का महक जाना, शहरी जीवन की बात हो या ग्रामीण अंचल के जीवन की, बच्चे के जन्म की खुशी दोनों ही जगह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं मालवा अंचल में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला ये लोकगीत स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

बच्चे के जन्म के साथ खुशियों का वातावरण छा जाता है पूरे घर में। उसकी छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कान, जरा सा बोल देना, जैसे खुशियों का झरना बह उठता है घर में। सभी लोग खिलखिला उठते हैं। घर के हर सदस्य का ध्यान उस बच्चे पर ही होता है, वो सो रहा हो या जाग रहा हो। बच्चे की हर बात मन भावन होती है। हल्की सी मुस्कान होठों पर लिए सोती हुई बिटिया, पालने में माँ उसे झुलाती है, लोरी सुनाती है। कैसा अद्भुत दृश्य है, एक माँ जब अपनी बेटी को झूले में झुलाती हुई लोरी गाती है तो किस तरह अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त करती है, इसी का वर्णन इस लोकगीत में। आइए सुनते हैं।

मालवांचल में श्राद्ध पक्ष में संजा पर्व मनाया जाता है। छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं का ये पर्व है। गोबर से कुछ चित्र बनाए जाते हैं, चांद और सूरज की आकृति बनाई जाती है, गीत गाए जाते हैं और जीवन के सभी संस्कारों से इन छोटी छोटी कन्याओं को शिक्षित किया जाता है। तो लीजिए प्रस्तुत है इसी पर्व पर गाया जाने वाला लोकगीत स्वाति उखले और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, हमारा लोक संगीत संस्कार गीतों से समृद्ध है। हर संस्कार पर कोई न कोई लोक गीत अवश्य गाया जाता है। शादी में हल्दी लगाने की परंपरा है। ब्याह के कितने ही दिन पहले से लड़की को हल्दी लगाना शुरू कर दिया जाता है। उसकी सारी सखियां इकट्ठी हो जाती हैं, बारी बारी से हल्दी लगाती हैं, छेड़छाड़ करती हुई, मस्ती करती हुई, खूब मजाक करती हैं और एक अलग ही उल्लास और उमंग का वातावरण तैयार हो जाता है। गाते नाचते हुए हल्दी लगाई जाती है। आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत अब हम आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी।

बारात जब द्वार पर आती है तो कितना उल्लास होता है दोनों ही पक्ष में। जी हाँ, सजे हुए बाराती, घोड़ी पर चढ़ा दूल्हा। भाई, ये मेहमान कोई आम मेहमान थोड़े ही है, तो स्वागत भी विशेष होता है। जी हाँ, कंचन थाल सजाया जाता है, मोतियों से चौक पूरे जाते हैं, एक भव्य स्वागत बारातियों का। आइए, ऐसा ही लोकगीत अब आपको सुनवाते हैं स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

और श्रोताओं अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मालवांचल के कुछ ऋतु गीत। जी हाँ, मौसम के अलग अलग रंग अलग अलग स्वर में हमारे मन से संवाद करते हैं और इस संवाद की सांगीतिक अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर होती है, मनोहारी होती है। तपती धूप है, गर्मी का मौसम है, पत्नी खेत में काम कर रहे अपने पति को खाना देने जाती है। रास्ते में बीच में एक कोयल अपनी मीठी बोली से उसे लुभाती है, उसका ध्यान खींचती है। वो किस तरह से उस कोयल से अपने मन की बात करती है, आइए सुने। मारो जी का रोता देवा, जावो हो कोयलिया, मीठी मीठी घणी प्यारी, लागे थारी बोलिया।

कड़कती धूप के बाद ठंडी हवा और बारिश की जरूरत मन को भी होती है और धरती को भी। वर्षा शुभता है, मंगल है, समृद्धि है, धन है, जीवन है। इसलिए सहज ही इंद्रदेव से प्रार्थना आरंभ हो जाती है।

श्रोताओं, हम बात करें साहित्य की, नृत्य की, चित्रकारी की या गीत संगीत की। राधा कृष्ण की उपस्थिति हर जगह है, तो भला लोक जीवन में, हमारे लोक संगीत में राधा कृष्ण की उपस्थिति कैसे न हो। धरती से वर्षा विदा ले चुकी है और शरद ऋतु उतर आई है। जमुना के तीर पर राधा और कृष्ण की अटखेलियां देखते ही बनती हैं। इसी मनोहारी दृश्य का वर्णन इस लोक भजन में। स्वर स्वाति उखले और साथियों के हैं।

नमस्कार श्रोताओं, अब शरद ऋतु के बाद वसंत का आगमन हो चुका है। जी हाँ, ऋतुराज का आगमन। पलाश दहकने लगे हैं, गुलाब खिलने लगे हैं, बुलबुल गाने लगी है, महुए पक गए हैं, आम्र मंजरियों की भीनी भीनी सी महक हवाओं में घुलने लगी है, खेतों में सरसों फूल उठी है, रंग बासंती धरती पर तो है ही, तन और मन पर भी चढ़ने लगा है।

श्रोताओं, ये थी वसंत की छटा। जी हाँ, इस लोकगीत के साथ ही रंग वासंती आपके चारों ओर बिखर गया है। वसंत यानी प्रेम, वसंत यानी आरंभ, वसंत यानी उल्लास, उमंग, खुशी। तो ये उल्लास, ये उमंग, ये खुशी आप सभी के जीवन में बनी रहे, यही शुभकामना है हमारी। चलते चलते आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब भारत भारती कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 105 से वाचन। ऋषि हैं त्रित, आप्त्य अथवा कुत्स आंगिरस। देवता हैं विश्वे देवा और छंद है त्रिष्टुप।
3: चंद्रमा अप्सवंतरा सुपर्णो धावते दिवि न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी। अंतरिक्ष में चंद्रमा और द्युलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। हे विज्ञ पुरुषों, तुम्हारा स्तर सुनहरी धार वाली विद्युत को जानने योग्य नहीं है। हे द्युलोक एवं भूलोक, आप हमारे भावों को समझें, हमें उनका बोध करने की सामर्थ्य प्रदान करें। अर्थमिद्वा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिम तुंजाते वृष्णयम पयः परिदाय रसम दुहे वित्तम मे अस्य रोदसी। उद्देश्य पूर्ण कार्य करने वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। पत्नी उपयुक्त पति को पा लेती है। दोनों मिलकर उद्देश्य पूर्वक संतान प्राप्त कर लेते हैं। हे द्युलोक एवं पृथ्वी देवी, आप हमारी भावना समझें, हमारे लिए उत्कृष्ट उत्पादन बढ़ाएं। मोशु देवा अदह स्वरव पादि दिवस परि मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम कदाचन वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवगण, हमारी तेजस्विता कभी भी स्वर्गलोक से निम्नगामी न हो, अर्थात हमारा लक्ष्य सदा ऊंचा हो। आनंद प्रदायक सोम से रहित स्थान पर कभी भी हमारा निवास न रहे। हे द्युलोक और भूलोक, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। यज्ञम पृच्छाम्यवम स तद्दूतो विवोचति क्व ऋतम पूर्व्यम गतम कस्तद्विर्विभर्ति नूतनो वित्तम मे अस्य रोदसी। हम समुपस्थित यज्ञाग्नि से प्रश्न करते हैं। वे देवदूत अग्निदेव उत्तर दे कि प्राचीन सरल भाव रूपी शाश्वत नियमों का कहां लोप हो गया। नवीन पुरुष कौन उन प्राचीन नियमों का निर्वाह करते हैं। हे पृथ्वी और द्युलोक, हमारी इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को जाने और शांत करें। अमी ये देवाः स्थन त्रिश्वा रोचने दिवः कद्व ऋतम कदन ऋतम क्व प्रत्नाव आहुतिर वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, तीनों पृथ्वी अंतरिक्ष एवं द्युलोक में से आपका वास द्युलोक में है, आपका ऋत वास्तविक रूप क्या है, अनृत मायायुक्त रूप कहाँ है। आपने प्रारंभ में सृजन यज्ञ में जो आहुति डाली वह कहाँ है। द्युलोक एवं पृथ्वी, हमारे भावों को समझें और पूर्ति करें। कद्वरितस्य धरणसि कद्वरुणस्य चक्षणम् कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूड्यो वित्तम् मे अस्य रोदसि। आपके श्रेष्ठ सत्य का निर्वाह करने वाले नियम कहाँ हैं? वरुण की व्यवस्था दृष्टि कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ अर्यमा के मार्ग कौन कौन से हैं जिससे हम दुष्ट जनों से राहत पा सकें? हे द्युलोक और पृथ्वी, हमारी इस जिज्ञासा के अभिप्राय को समझें। अहम सो अस्मि यह पुरा सुते वदामि कानिचित् तं मा व्यंत्याध्यो वृको न तृष्णजम् मृगम् वित्तम् मे अस्य रोदसी। पिछले यज्ञ में सोम निष्पादन काल में स्तोत्रों का पाठ हमने किया था, लेकिन अब मानसिक व्यथाएं भेड़िये द्वारा प्यासे हिरण को खाए जाने के समान ही हमें व्यथित किए हुए हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। सम्मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव परशवः मूषो न शिष्णा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तम् मे अस्य रोदसी। दो सौतों पत्नियों की तरह हमारे पार्श्व बाजू में रहने वाली कामनाएं हमें सता रही हैं। हे शतक्रतो, जिस प्रकार चूहे माड़ी लगे धागों को खा जाते हैं, वैसे ही आपकी स्तुति करने वालों को भी मन की पीड़ाएं सता रही हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता त्रितस्तद्वे दाप्यत्यः स जामित्वाय रेभति वित्तम् मे अस्य रोदसी। ये सात रंगों वाली सूर्य की किरणें जहां तक है वहां तक हमारा नाभि क्षेत्र पैतृक प्रभाव फैला है, जिसका ज्ञान जल के पुत्र त्रित को है। अतएव प्रीति युक्त मैत्री भाव हेतु हम प्रार्थना करते हैं। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारी इन प्रार्थनाओं के अभिप्राय को समझें। अमी ये पंचो क्षणों मध्ये तस्थुर महो दिवः देवत्रा नु प्रवाच्यम सद्री चीना नि वावृतुर वित्तम मे अस्य रोदसी। कामनाओं की वर्षा करने वाले ये पांच शक्तिशाली देव अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा और विद्युत विस्तृत द्युलोक में स्थित हैं। देवों में प्रशंसनीय ये देवगण आवाहन करते ही पूजा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसके बाद तृप्त होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं, अर्थात मन के साथ ये इंद्रियां भी उपासना में तल्लीन हो जाती हैं। हे द्युलोक और पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को जाने। सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः ते सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यद् वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी। यह जो उत्तम पंखों वाला पक्षी सूर्य दिव्य लोक के मध्य भाग में स्थित है, व्यापक जल रूपी रात्रि में तैरने वाले मनुष्य को प्रकाश का मार्ग प्रशस्त कर भेड़ियों अर्थात काम क्रोध लोभ आदि से बचाए। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भवसागर में तैर रहा है, अज्ञान रूपी क्रूर भेड़िया उसे खा जाना चाहता है, ज्ञान राशियां क्रूर अज्ञान का निवारण करके मनुष्य को भय मुक्त करती हैं। नव्यम तदुक्थ्यम हितम देवासह सुप्रवाचनम ऋतमर्षन्ति सिंधवः सत्यम तातान सूर्यो वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, ये नवीन स्तोत्र प्रशंसनीय गाने योग्य और कल्याण कारक हैं। नदियां ऋतु दिव्य अनुशासन के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती हैं और सूर्य देव सत्य के उद्घोषक हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। अग्ने तव त्यदुक्थ्यम देवेश्वस्त्याप्यम स नः सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षी विदुष्टरो वित्तम मे अस्य रोदसी। हे अग्निदेव, देवताओं के साथ आपका बंधुत्व भाव प्रशंसनीय है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान संपन्न आप मनुष्यों के समान हमारे यज्ञ में पधारकर देवताओं को हमारे यज्ञ में आवाहित करें। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। सत्तो होता मनुष्वदा देवाम अच्छा विदुष्टरह अग्निर्हव्या सुशूदति देवो देवेशु मेधिरो वित्तम मे अस्य रोदसी। मनुष्यों के समान यज्ञ में विराजमान ज्ञानवान होता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान संपन्न वे अग्निदेव देवों के लिए हविष्यान्न पहुंचाते हैं। हे द्युलोक व पृथ्वी देवी, हमारे इस जिज्ञासा भाव को समझें। ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातु विदम तमी महे व्यूर्णोति हृदा मतिम नव्यो जायतामृतम वित्तम मे अस्य रोदसी। मंत्र रूपी स्तोत्रों की रचना वरुण देव करते हैं। हम स्तुति मंत्रों के मार्गदर्शक प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वे हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट कर देते हैं, जिससे नवीन सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। असौ यह पंथा आदित्यो दिवि प्रवाच्यम कृतः न स देवा अतिक्रमे तम मर्तासो न पश्यथ वित्तम मे क्रोध लोभ आदि से बचाए। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भवसागर में तैर रहा है, अज्ञान रूपी क्रूर भेड़िया उसे खा जाना चाहता है, ज्ञान राशियां क्रूर अज्ञान का निवारण करके मनुष्य को भय मुक्त करती हैं। नव्यम तदुक्थ्यम हितम देवासह सुप्रवाचनम ऋतमर्षन्ति सिंधवः सत्यम तातान सूर्यो वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, ये नवीन स्तोत्र प्रशंसनीय, गाने योग्य और कल्याणकारक हैं। नदियाँ ऋतु दिव्य अनुशासन के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती हैं और सूर्य देव सत्य के उद्घोषक हैं। हे दयावा पृथ्वी देवी, हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। अग्ने तव त्यदुक्थ्यम देवेश्वस्त्याप्यम सनह सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षी विदुष्टरो वित्तम मे अस्य रोदसी। हे अग्निदेव, देवताओं के साथ आपका बंधुत्व भाव प्रशंसनीय है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान संपन्न आप मनुष्यों के समान हमारे यज्ञ में पधारकर देवताओं को हमारे यज्ञ में आवाहित करें। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। सत्तो होता मनुष्वदा देवाम अच्छा विदुष्टरह अग्निर्हव्या सुशूदति देवो देवेशु मेधिरो वित्तम मे अस्य रोदसी। मनुष्यों के समान यज्ञ में विराजमान ज्ञानवान होता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान संपन्न वे अग्निदेव देवों के लिए हविष्यान्न पहुंचाते हैं। हे द्युलोक व पृथ्वी देवी, हमारे इस जिज्ञासा भाव को समझें। ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातु विदम तमी महे व्यूर्णोति हृदा मतिम नव्यो जायतामृतम वित्तम मे अस्य रोदसी। मंत्र रूपी स्तोत्रों की रचना वरुण देव करते हैं। हम स्तुति मंत्रों के मार्गदर्शक प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वे हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट कर देते हैं, जिससे नवीन सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। असौ यह पंथा आदित्यो दिवि प्रवाच्यम कृतः न स देवा अतिक्रमे तम मर्तासो न पश्यथ वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, यह जो सूर्य देव का प्रकाश रूपी मार्ग दिव्य लोक में स्तुतियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके लिए उपयुक्त नहीं। हे मनुष्यों, वह मार्ग सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर है। हे पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें, उस दिव्य मार्ग का बोध कराएं। त्रितः कूपे वहितो देवान हवत ऊतये तत्शुश्राव बृहस्पतिः कृणवन नहूरणा दूरु वित्तम मे अस्य रोदसी। पाप रूपी कुएं में गिरे हुए त्रित ने अपनी सुरक्षा के लिए देव सत्तो होता मनुष्वदा देवाम अच्छा विदुष्टरह अग्निर्हव्या सुशूदति देवो देवेशु मेधिरो वित्तम मे अस्य रोदसी। मनुष्यों के समान यज्ञ में विराजमान ज्ञानवान होता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान संपन्न वे अग्निदेव देवों के लिए हविष्यान्न पहुंचाते हैं। हे द्युलोक व पृथ्वी देवी, हमारे इस जिज्ञासा भाव को समझें। ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातु विदम तमी महे, व्यूर्णोति हृदा मतिम नव्यो जायतामृतम वित्तम मे अस्य रोदसी। मंत्र रूपी स्तोत्रों की रचना वरुण देव करते हैं। हम स्तुति मंत्रों के मार्गदर्शक प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वे हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट कर देते हैं, जिससे नवीन सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। असौ यह पंथा आदित्यो दिवि प्रवाच्यम कृतः न स देवा अतिक्रमे तम मर्तासो न पश्यथ वित्तम मे अस्य रोदसी। हे देवो, यह जो सूर्य देव का प्रकाश रूपी मार्ग दिव्य लोक में स्तुतियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके लिए उपयुक्त नहीं। हे मनुष्यों, वह मार्ग सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर है। हे पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें, उस दिव्य मार्ग का बोध कराएं। त्रितः कूपे वहितो देवान हवत ऊतये तत्शुश्राव बृहस्पतिः कृणवन नहूरणादूरु वित्तम मे अस्य रोदसी। पाप रूपी कुएं में गिरे हुए त्रित ने अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं का आवाहन किया। ज्ञान रूपी बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को सुनकर त्रित को पाप रूपी कुएं से निकालकर कष्टों से मुक्ति पाने का व्यापक मार्ग खोल दिया। हे द्युलोक और पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। अरुणो मा सकृद्वृकः पथायन्तं ददर्श हि उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्या मयि वित्तं मे अस्य रोदसी। पीठ के रोगी बढ़ई की तरह टेढ़ा चंद्रमा अपने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है। वह नीचे की ओर जाकर अस्त होकर पुनः उदित होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस स्थिति पर ध्यान दें। एनांगूषेण वयमिंद्र वंतो भी श्याम व्रजने सर्ववीराः तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इंद्रदेव तथा सभी वीर पुरुषों से युक्त होकर हम इस स्तोत्र से संग्राम में शत्रुओं को पराजित करें। मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और द्युलोक सभी देव हमारे इस स्तोत्र का अनुमोदन करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 105 से वाचन।
2: प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
4: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी की थी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूं मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए इस पावन यात्रा पर हम और आप साथ साथ चलें। श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है। और ये विश्वास भी कायम है कि कहीं तो कोई है जो दुनिया की बागडोर थामे हुए है, इसे गतिमान करता रहता है। ईश्वर क्या है, कहां मिलते हैं इसके पद चिन्ह, ये एक सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। श्रद्धा, विश्वास और तर्क की कसौटी पर मानव ने ईश्वरीय सत्ता की हर दम छानबीन की और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान।

श्रोताओ, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा। आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजा कर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

श्रोताओं, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों, रंगों और आकार में पूजते हैं। कोई मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई अग्नि के रूप में और कोई निराकार। कुछ लोग प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानते हैं। दरअसल ईश्वर हमारे भाव जगत का विषय है। जैसी हमारी भावना, वैसा ही हमारा ईश्वर।

ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है और कण कण में व्याप्त है। उसकी शक्ति से ही आकाश में विस्तार है, उसकी शक्ति से ही वायु का श्वास है, उसकी शक्ति से ही सूर्य चमकता है और उसकी शक्ति से ही सभी जीवित हैं। वही जगत का सत है, वही आत्म की आत्मा है।

श्रोताओं, हमारा ईश्वर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा का ही रूप है। उसे हम भीतर ढूंढें या बाहर जगत में, अंततः हम पाते यही हैं कि वो हर कण में शामिल है, जर्रे जर्रे में उसी का रूप है, उसी के नाम की झनकार है। तो इस संसार के कण कण में उसके दर्शन का संकल्प लिए संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व पर जो कूटनीति की तीक्ष्णता, विचारों की निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति की अटल ज्योति का पर्याय थे। वो लंदन की गलियों में भारत की आजादी की मशाल लिए खड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की आवाज बनकर वो गूंजे। उनकी बातों में अद्भुत तेज, तर्क और आत्मविश्वास था जो हर चुनौती को चुनौती दे सकता था। भारत की गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले वो महानायक थे वी.के. कृष्ण मेनन। वो एक राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा सन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। वी.के. कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई सन 1896 को केरल के मालाबार तट पर स्थित पनियंकरा कालीकट में हुआ था, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम वेंगालिल कृष्णन कृष्ण मेनन था। उनके पिता का नाम कोमाथु कृष्ण कुरुप था, जो कदाथनाडु के राजा के पुत्र थे। इस तरह वो एक राज परिवार से संबद्ध थे। उनकी माताजी भी त्रावणकोर के पूर्व दीवान रमन मेनन की पौत्री थीं। वी.के. कृष्ण मेनन के पिता ने वकालत का पेशा अपनाया था। वो एक अत्यंत संपन्न तथा प्रभावशाली वकील थे। इस तरह ये एक राजसी वंश परंपरा से संबद्ध एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार था। वी.के. कृष्ण मेनन की आरंभिक शिक्षा थालासेरी में हुई तथा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। बचपन से वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और उनका विद्रोही स्वभाव किशोरावस्था से ही मुखर होने लगा था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। वो डॉक्टर एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सानिध्य में आए। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया। एनी बेसेंट ने उनकी वाक्पटुता और तीक्ष्ण बुद्धि को पहचाना और उन्हें ब्रदर ऑफ सर्विस समूह से जोड़ लिया। यहीं ब्रिटिश राज के प्रति उनके मन में एक आक्रोश ने जन्म लिया। कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी पोशाक के स्थान पर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अस्वीकार्यता और भारत माता के प्रति गहरे प्रेम का स्वर बुलंद किया।

रेनी बेसेंट वीके कृष्ण मेनन की प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थीं। यही कारण है कि उन्होंने सन 1924 में वीके कृष्ण मेनन को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजने का प्रबंध किया। वीके कृष्ण मेनन सन 1924 में इंग्लैंड पहुंचे और लगभग 27 वर्षों तक वो वहीं रहे। लंदन में उनके प्रवास ने उन्हें एक छात्र से एक वैश्विक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था। वहां वो हेराल्ड लास्की के प्रिय शिष्य बन गए। लास्की ने उन्हें अपना अब तक का सबसे मेधावी छात्र कहा था। लास्की के विचारों ने वीके कृष्ण मेनन के दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में उनके भीतर स्थायी रूप से रहा। यहां उन्होंने एमएससी और एमए के साथ ही कानून की शिक्षा भी पूर्ण की तथा एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की। वहां रहते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंडिया लीग की स्थापना की। उन्होंने मूल रूप से डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग को ही पुनर्गठित किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में रहते हुए भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए अभियान चलाना था। ये संगठन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीयों को एक मंच पर लाता था। इस तरह ये लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की मांग का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया। इंडिया लीग के माध्यम से वीके कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश जनता को भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, जैसे लाठीचार्ज, बिना मुकदमा चलाए कारावास और संपत्ति की जब्ती के बारे में जागरूक किया। इस तरह इंडिया लीग ने ब्रिटिश लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियनों और बुद्धिजीवियों के बीच भारत की पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। सन 1938 में उन्होंने लंदन में एक विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें अफ्रीका और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने प्रकाशन की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एलन लेन के साथ मिलकर पेंगुइन बुक्स और फिर बाद में पेलिकन बुक्स की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकाशन गृह के माध्यम से उन्होंने आम जनता के लिए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक सामग्री को सस्ते दामों में सुलभ कराया। सन 1934 में लेबर पार्टी के टिकट पर वो सेंट पैनक्रास से बरो काउंसलर नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने पुस्तकालयों के विस्तार और गरीबों के लिए कानूनी सहायता की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। उनके योगदान के लिए सेंट पैनक्रॉस ने उन्हें फ्रीडम ऑफ द बरो से सम्मानित किया। स्थानीय परिषद द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वीके कृष्ण मेनन से पहले ये सम्मान केवल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। सन 1935 में वीके कृष्ण मेनन की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी।

वीके कृष्ण मेनन एक स्वतंत्र सोच और अपनी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जब वो पदस्थ थे, तब वो उच्चायुक्त निवास में न रहकर उच्चायोग के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। सन 1952 में उच्चायुक्त का पद छोड़ने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभाला। यहां उन्होंने अपनी कूटनीतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता से विश्व को चकित कर दिया। इस समय तक दुनिया उन्हें फॉर्मूला मेनन कहने लगी थी। विश्व समुदाय का मानना था कि किसी भी देश में अगर कोई समस्या है तो मेनन कोई न कोई सार्थक समाधान निकाल सकने में अवश्य सक्षम होंगे। सन 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। ये एक ऐतिहासिक भाषण था। पाकिस्तान के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने लगभग 8 घंटे तक भाषण दिया, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। इस तरह उन्होंने कश्मीर मुद्दे की एक सही तस्वीर दुनिया के समक्ष रखी। इसके बाद उन्हें भारत में कश्मीर का नायक कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने केवल भारतीय हितों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कोरियाई युद्ध हो, जिनेवा सम्मेलन हो, स्वेज संकट हो या हंगरी संकट, सभी जगह उन्होंने समाधान के सार्थक रास्ते सुझाए। सन 1957 में उत्तरी मुंबई से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वीके कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री नियुक्त हुए। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। यही कारण है कि उन्होंने भारत में रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए। उन्होंने DRDO को पुनर्गठित और मजबूत किया ताकि स्वदेशी तकनीक विकसित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण भी किया। सेना के लिए वाहनों और टैंक के स्वदेशी उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैन्य जीवन के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की तथा NCC को पेशेवर रूप दिया। सन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। ये सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। ये वीके कृष्ण मेनन की बड़ी सामरिक और राजनीतिक जीत थी। उन्होंने सेना में पदोन्नति की वरिष्ठता आधारित प्रणाली को बदलकर योग्यता आधारित प्रणाली करने की भी वकालत की थी, जिसका अधिक स्वागत नहीं हुआ था। सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय का सारा दोष वीके कृष्ण मेनन पर मढ़ा गया और उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की पैरवी की। सन 1969 में उन्होंने राजनीति में वापसी की, संसद पहुंचे और सन 1971 में फिर से जीत दर्ज की। संसद में अंतिम वर्षों के दौरान वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, विशेष रूप से 1966 की वियतनाम शांति योजना और 1971 के बांग्लादेश संकट के समय। 6 अक्टूबर सन 1974 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत ने एक ऐसे मौलिक विचारक को खो दिया जिन्होंने भारत को एक दृष्टि दी कि वो स्वयं अपनी नजर से विश्व को देख सके। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, कुछ खास शख्सियतें जिनसे मुलाकात को जी चाहे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बातें सुनने को जी चाहे, आपकी ऐसी ही चाहतों को पूरा करता है हमारा अगला कार्यक्रम। जी हाँ, आमने सामने। इंतजार कीजिए बस जरा सा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। ये गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
4: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
4: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि एलपीजी हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से एलपीजी जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो एलपीजी का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और एलपीजी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
3: तो क्या एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
4: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि एलपीजी आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें जो फ्रैक्शन है, दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के, उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है, तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती, तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कॉमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब वॉल्यूम्स होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो एलपीजी जो है इसकी अपने कोई गंध या कोई मतलब कलरलेस है, ये कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो अगर ये लीक होगा तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसके अंदर एक मतलब इसे तरल किया जाता है और इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन भी बोलते हैं। ये इसी की गंध होती है जो आपको जब एलपीजी लीक होती है तो आपको समझ में आता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप इसको अटेंड करिए। तो
3: हाँ,
4: गंध जो है वो ये हमें बताती है। तो ये इस तरीके से एलपीजी जो है इसका संरक्षण हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेट्रोलियम से बना है। तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन, प्राकृतिक रिसोर्स है और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं। तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो। हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया पिछले 50 साल से ही, समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशंस का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा? खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है, किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते। तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
3: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
4: बहुत ही आसान से तरीके हैं
3: जी।
4: और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गांव में तो वो इस्तेमाल करती थी कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो। कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको। तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय, कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका। तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का। उतना भी अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें, 100 सिलेंडर देखें तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर ले तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा। मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया।
3: बिल्कुल,
4: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे। 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार चार बर्नर भी होते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर, या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक बाकी सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है। अगर आप अटेंड करें, रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है। मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है वो बर्तन के ऊपर चढ़ रही है, तले के अलावा ऊपर भी चढ़ रही है, तो वो बर्बादी है,
3: छोटे बर्तन
4: तो वो बर्बादी है, तो उसको या तो धीमा कर दीजिए आप, और थोड़े चौड़े तले के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ही सिर्फ उसकी लौ लगेगी,
3: तली को जो है कवर,
4: तली को कवर करेगा,
3: लौ जो है कवर करेगा
4: जी हाँ। तो ये बर्तनों का, बर्तन पे ही अगर हम बात करें तो आजकल कॉपर प्लेटेड बर्तन आते हैं जो नीचे तली पे रहता है, तो आप पता है कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है, हाँ हीट का मतलब, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको। आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद तीन तीन चार चार प्रेशर कुकर हैं, वो क्यों हैं? एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है कुछ है तो मांझना ना पड़े और तीसरे में कर लिया हमने, वो आपकी बात सही है लेकिन ये तरीका गलत है। क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना, आपने देखा होगा डिब्बे, आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल एक में चावल ऐसे करके सब्जी बघार के तीसरे में मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था, तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी। तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें, वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन जाता है कई बार, तो आप अच्छे वाले जो प्रेशर कुकर है उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर हम ISI की बात कर रहे हैं तो आपके जो गैस के चूल्हे हैं वो भी जो है आजकल जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है और वो स्टार रेटिंग जो देते हैं, तो उसमें जैसे फ्रिज पे आपने देखा है 5 स्टार है 4 स्टार ऐसे आप लेते हैं, उसी तरह से गैस के चूल्हे भी आते हैं, उनको हम ग्रीन स्टोव्स भी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्टार अगर आप लेते हैं तो आप एक लोकल वो बिना स्टार वाला लोगे तो उससे तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा ही गैस बचत हो, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है उसका, उसका बर्नर का डिज़ाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो लेके आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया, जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक कुछ बचा ही नहीं। लौ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
3: खराब हो गया,
4: दाल गिर जाती है कई बार, दूध गिर जाता है तो उसमें चिपक जाता है, तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें। और सफाई में ये भी ध्यान रखें, बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गरम गरम बर्नर में पानी तो नहीं डाल रहे, आप समझ सकते हैं ठंडा गरम तो वो टूटने का भी डर रहता है, ब्रेक हो जाता है, तो आप उसकी जगह क्या ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए, खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप कपड़े धोने वाला सा पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए तो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पर गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पाउडर अंदर घुस जाएगा
3: बर्नर के जो सुराख होते
4: हैं, सुराख में अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये उनसे मत कराइए आप।
3: अच्छा।
4: आप जो एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे लेकिन वो साफ
3: घर पे आके करके जाते
4: हैं। हाँ, तो वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी जरूरत है ना, आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो। तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
3: बिल्कुल सही।
4: भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है। तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम करेंगे कि हाँ भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं।
3: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले।
4: जी जी, प्रायोरिटी हमारा भोजन है। आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं ना।
3: सेहत उसी से।
4: मैं तो आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
3: अरे वाह,
4: है ना, आप देखिए क्या असर होता है। क्योंकि वो विचार जाता है, वो लिखा इज ओके, लेकिन आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप।
3: बिल्कुल सही।
4: सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
3: बार बार चाय गर्म करते।
4: बिल्कुल
3: बार बार,
4: हाँ, बिल्कुल हम
3: बहुत
4: तो
3: सारी चीजें हम बार बार करते हैं।
4: अगर हम एक नियम बना दे घर में कि चाय सब साथ में पियेंगे, है ना, या तो एक ही बार बनेगी चाय,
3: हाँ।
4: जी जी, खाना साथ में खाएंगे। अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो, रात का खाना तो कर लो साथ में। तो उससे क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता है ना, तो वो जो एक लिंक्स है वो फिर से बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे। आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है, भोजन वो जगह है, वो चीज है। तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं, तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर, हमारा एलपीजी बचेगा। और दूसरी चीज, भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे।
3: बिल्कुल,
4: है ना। तो हम जो है हम वहां पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला, अरे ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जो एलपीजी जैसा तो आपको कोई भी ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ती है आपको एलपीजी से, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो।
3: रेगुलेटर जो होता है और पाइप, ये कितने समय पर चेंज करना चाहिए ताकि गैस का रिसाव भी इनमें से ही होने लगता है और हमें पता नहीं चलता है कि बाज़ वक़्त।
4: इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ संरक्षण को लेके, पहले कि जो भी आप दाल चावल वगैरह बना रहे हैं उसको थोड़ा भिगो दें पहले, भिगोने के बाद आप इस्तेमाल करें। नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
3: जल्दी,
4: है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। और जहां तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें। तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की जरूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पे जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें, ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है। और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे, वो तो वो काफी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहां पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे।
3: तो ये रबर के रहते थे,
4: रबर के रहते थे, अभी वो वायर के साथ है,
3: तो
4: बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है ये, है ना। तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी। नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है, लेकिन वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा। और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं। लेकिन बस उसे काट काट के मत यूज करें
5: कि कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया। तो
4: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल। और लेकिन लेना एजेंसी से ही है,
5: बिल्कुल
4: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है
5: बिल्कुल,
4: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है।
5: बिल्कुल आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि पीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क।
4: जी दानिश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो पाइपलाइंस पाइप दे रहे हैं वो घरों में, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो। तो पीएनजी का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है तो ये एलपीजी नहीं है, एलपीजी का मुकाबले सुरक्षित है ये। एलपीजी की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि एलपीजी जमीन पे चिपकता है क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अंटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगा हो अब, है ना, तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी जिस भी मोहल्ले में पीएनजी की सप्लाई के लिए अभी आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे पीएनजी की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है एलपीजी की कम हो जाए,
5: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या
4: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
5: ये तो सुविधाजनक हो,
4: बिल्कुल बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
5: भारी
4: है
5: भारी आप... सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
4: जी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
5: वो अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म,
4: हाँ हाँ बिल्कुल,
5: ये सारी दिक्कतों से
4: वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस, तो ये काफी कन्वीनियंट है, उससे भी अच्छी है कहना चाहिए, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें आप।
5: आशा जी, आजकल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो लोग अपने कार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल करवाते हैं और कार चलाते हैं उससे, तो ये क्या इस्तेमाल करना सही है?
4: देखिए एलपीजी का इस्तेमाल करना सही तब है जब आप उसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस तरह का वो दे दिया है, आपके पास टैंक्स हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट एलपीजी फिल करवा सकते हैं आप, अभी तो सीएनजी आ गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको लें तो ज़्यादा अच्छा है और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे जहाँ भी अवेलेबिलिटी है इसकी वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर कई लोगों ने घर में चार मतलब कुछ ज्यादा लोग हैं उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स उसमें आप करते हैं चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा जोखिम भरी चीज है और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें, तो कंप्रेस नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आप समझ सकते हैं, तो आपको वो ज्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज ये है कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है।
5: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
4: पीजी अगर हो जाती है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी क्योंकि आप वहां ज्यादा समय है, तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही है तभी हो रहा है तो हो सकता है कि ये कारण हो, तो हम मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं। और दूसरी चीज जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए, उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए, कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है, तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसका हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, महिलाएं जो हैं वो कागज जो रहता है, पेपर जो रहता है, उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना रखें। दूसरी चीज ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हिट वगैरह से,
5: हाँ, उसके
4: तो
5: अंदर भी
4: वो भी पेट्रोलियम ही है,
5: फ्लेमेबल, हाँ।
4: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और खाना बनाती है, तो ये बहुत रिस्की है।
5: वीडियोस देख रहे हैं,
4: यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं हाँ। तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाय चांस आपने ध्यान नहीं दिया कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही
5: ध्यान
4: नहीं
5: है,
4: हाँ। तो आप जो है इस तरह के जो रिस्क है वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
5: बिल्कुल,
4: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
5: बिल्कुल,
4: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
5: बिल्कुल,
4: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो। क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी और हर दीवार पे विद इन सेकंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी। तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर

0: मैं हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश एलपीजी संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
1: जी देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज़्यादा हम। तो आज ये वो मौका है हमारे पास में एलपीजी के रूप में कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा। तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम एलपीजी की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी, इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
0: दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: आमने सामने।

0: आमने सामने कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात का, कुछ खास व्यक्तित्वों से आपकी बात का बहाना, ये कार्यक्रम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस प्रसारण सभा में अभी आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए, तो सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर बाद हम लेकर उपस्थित होते हैं आज की अगली प्रस्तुति। जी हाँ, कार्यक्रम वागर्थ है।

0: हाँ, मैं मुतमईन हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि चलो, आदमी को भाग्य में जितना होता है उतना मिलता है, और मेरे को भगवान की दया से, वक्त से, मुझे ज़्यादा ही कुछ मिला है, और इसके लिए मैं
1: बिल्कुल,
0: शुक्रगुजार हूँ
1: बहुत खूब,
0: और पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैं जहाँ भी हूँ।
1: क्या बात है। तभी आपकी ये जो कलम है, आपको कहाँ से कहाँ पहचान दिलाई है उसने। आपने जैसा कि बताया कुछ अभी देर पहले कि आप ब्रिटेन अभी गई थी, तो वहां पर भी लोग आपकी शायरी के कायल हो गए।
0: जी,
1: तो हम भी चाहेंगे कि चलते चलते हमारे कार्यक्रम में आपकी एक नज्म या आपकी कोई एक और कविता अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
0: जरूर जरूर मैं सुनाना चाहूंगी। महिलाओं के हवाले से ही कुछ बातें कहना चाहूंगी,
1: जी
0: ताकि हमारी जो नारी है वो और सशक्त तो है ही,
1: जी
0: लेकिन और सशक्त बने
1: बिल्कुल,
0: और निराशा का भाव उसमें से कहीं चला जाए। लेकिन उससे पहले मैं दो तीन मुक्तक जरूर पढ़ना चाहूंगी कि
1: स्वागत है।
0: स्त्री के स्वाभिमान को कई बार अभिमान की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन चार मिसरे मैं पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, आप जानती हैं अना स्वाभिमान को
1: जी
0: कहते हैं, कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं।
1: आह,
0: और
1: क्या
0: कोई तो बात है मुझ में कि मेरे बारे में मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं,
1: बहुत खूब,
0: मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं। और बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कुछ हौसलों की पंक्तियाँ भी उनके सामने मैं पढ़ूँ और कहना चाहती हूँ कि धूप हो, ज़िंदगी में मुश्किलें सबके होती है, तब
1: जी
0: कहती हूँ कि धूप हो, बरसात हो और हाथ में छाता नहीं। धूप
1: धूप हो,
0: है, बरसात है और हाथ में छाता नहीं, दिल मेरा इस हाल में भी अब तो घबराता नहीं। और मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, राह हो आसान तो चलने का मजा आता नहीं,
1: क्या बात है।
0: राह हो आसान तो चलने का मजा आता नहीं। और मैं एक, आप इजाजत दे तो एक गीत महिलाओं के हवाले से
1: स्वागत
0: पढ़
1: स्वागत
0: दूं, उसके दो तीन छंद मैं पढ़ देती हूँ गीत के। नारी को आप जानते हैं वात्सल्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वो वज्र का रूप भी धारण कर लेती
1: जी,
0: है। आप जानती हैं कोई स्त्री जब मीरा बनकर, मीरा की तरह प्रेम के गीत लिख सकती है, तो समय आने पर झांसी की रानी बनकर
1: बिल्कुल
0: तलवार भी उठा लेती है। तो कुछ इसी तरह का भाव इस गीत में है, मैं रखती हूँ आपके सामने। कि वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी।

लूंगी। और गीत का बंद देखिएगा कि पतझरों की पीर की पाती सही, वेदना के वंश की थाती सही। एक वक्त था जब कवि को लिखना पड़ा था कि अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। लेकिन अब आज के दौर में जब कविता किरण लिखती है तो क्या लिखती है देखिएगा कि पतझर

ढल जाऊंगी। और गीत का आखिरी बन प्रस्तुत करती हूँ। महिला जब चारों तरफ से संतरासों से घिर जाती है, मानसिक सामाजिक पारिवारिक दबावों से घिर जाती है, तो क्या संकल्प लेती है देखिएगा। कि तज के अब नारित्व के संतरास को मैं रचूंगी एक नए इतिहास को, एक मंगल भोर का आह्वान कर प्राण में भर लूंगी हर्षोल्लास को। और पंक्ति देखिएगा, जैसा कि आप जानती हैं किरण मेरा तखल्लुस से मेरा उपनाम है और मैंने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया है देखिएगा।

0: बहुत खूब कविता जी, बहुत
1: धन्यवाद
0: खूब।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: कविता जी, आपकी अभी तक कई सारी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, वो पुस्तकें किन किन नामों से हैं और इस वक्त क्या कुछ और तैयारी चल रही है आपकी अगली पुस्तक के लिए?
1: जी हाँ बिल्कुल, मेरी दरअसल 10 किताबें अभी तक शाया हो चुकी हैं।
0: जी
1: 5 हिंदी में हैं और 5 राजस्थानी में हैं।
0: जी
1: जैसा आप जानती हैं मैं राजस्थान से हूँ, मेरी मातृभाषा राजस्थानी है,
0: जी
1: तो 5 किताबें मेरी राजस्थानी में भी आई हैं और 5 हिंदी में हैं। नाम आपने पूछे तो मैं बता देती हूँ। मेरा पहला जो संग्रह आया था वो गज़ल संग्रह था, दर्द का सफ़र।
0: जी
1: वो 1991 में आ चुका था, तब बहुत ही कम उम्र में थी, लेकिन लिखा इतना कुछ ज़्यादा है कि
0: जी
1: बस माँ ने ही लिखवाया, सरस्वती ने, जो भी है। लेखन मेरा बहुत हमेशा मुखर रहा और प्रखर रहा और निरंतर रहा। तो पहला संग्रह था दर्द का सफ़र, उसके बाद एक कविताओं को आया था तुम कहते हो तो,
0: जी
1: और फिर कुछ क्षणिकाएं लिखी थी जिनका टाइटल था चुपके चुपके, जो मन के जो भाव होते हैं वो
0: जी
1: चुपके चुपके ही कहे जाते हैं, तो चुपके चुपके शीर्षक से था। और उसके बाद एक और गज़ल संग्रह आया था तुम ही कुछ कहो ना, जिसे एकेडमी अवार्ड भी मिला। और अकादमी से ही मेरी हिंदी हिंदी साहित्य अकादमी से ही मेरी एक और किताब आई, 5वीं, मेरा गीत संग्रह, जिसका नाम है ये तो केवल प्यार है, तो बहुत पसंद किया गया लोगों ने। और इसके अलावा 5 किताबें मेरी राजस्थानी में
0: राजस्थानी में
1: हैं। और आप शायद आश्चर्य करें, हालांकि आश्चर्य की बात नहीं, आजकल गज़लें हर भाषा में कही जा रही हैं, तो मेरी जो 3 किताबें हैं वो राजस्थानी गज़ल की हैं।
0: क्या बात है।
1: तो पहला जो संग्रह था वो बखतरी बातां उसका टाइटल था, और उसके बाद आया बोलीरा बाण, और फिर एक कविता संग्रह आया मुखर मून करके,
0: जी
1: और फिर एक मैंने आध्यात्मिक दोहे लिखे हैं इन दिनों, अभी रिसेंटली पिछले साल ही मेरी किताब प्रकाशित हुई है, वो है सूली ऊपर सीज, जिसमें
0: जी
1: आध्यात्मिक दोहे हैं।
0: जी
1: और इसके बाद एक गीत संग्रह पहली पहली प्रीत राजस्थानी गीतों का आ चुका है, और अभी 2-3 संग्रह और तैयार हैं। मैंने जैसा बताया लिखा
0: जी
1: मैंने बहुत है, कहानियाँ भी बहुत लिखी हैं, तो कहानियों का संग्रह मेरा तैयार है, गज़लों का तैयार है, और कतात का, मुक्तकों का भी, तो 3-4 संग्रह अभी मेरे प्रकाशन के लिए तैयार हैं।
0: तो कविता जी, आज आपने हमें मुक्तक सुनाए, कविताएं सुनाई, गजल सुनाई, वो राजस्थान से आप ताल्लुक रखती हैं, तो हम उसी में ही कुछ सुनना चाहेंगे और इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे।
1: मैं राजस्थानी में जैसा मैंने बताया गज़लें कही है, तो एक गज़ल के 2 शेर मैं आपको सुना देती हूँ,
0: सॉरी
1: और बड़े आसान से हैं, समझ में भी आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता इतने कठिन हैं।

0: तो कविता जी, यह अभी हमने राजस्थानी में भी सुन लिया, बहुत खूब। हमारा तो कुछ और प्रिय कविताएं, कुछ शायरी जो आपने लिखी है वो आप सुनाना चाहें तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को हमें सुना दीजिए प्लीज।
1: ज़रूर, मैं कुछ मुक्तक आपके सामने रखना चाहूँगी जो लोगों के भी बड़े काम आएंगे, श्रोताओं के भी बड़े काम आएंगे।
0: स्वागत है।
1: लेकिन एक मुझे गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, महिलाओं के हवाले से, औरत के हवाले से मैंने बहुत कुछ लिखा कहा
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो आज की औरत को हम आए दिन देखते हैं कि कुछ न कुछ घटनाएं उनके साथ घटी रही हैं। औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बहुत ही संकीर्ण हो चली है।
0: जी
1: तो मैं ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए गज़ल के कुछ शेर में पढ़ देना चाहती हूँ कि मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझे मुझ में।
0: क्या
1: हमें पुरुषों की सोच को बदलना होगा। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। और क्या क्या है कि हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। और क्या क्या है औरत में कि हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। और कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में, कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में। जब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में। कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में। जब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में। और मैं फकत जिस्म नहीं हूं कि फना हो जाऊं। शेर देखें। मैं फकत जिस्म नहीं हूं कि फना हो जाऊं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में।
0: बहुत
1: मैं फकत जिस्म नहीं हूं कि फना हो जाऊं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। और मुझको करता है खबरदार खता से पहले, मुझको करता है खबरदार खता से पहले। मुझको इतनी है तसल्ली के खुदा है मुझ में,
0: वाह।
1: मुझको इतनी है तसल्ली के खुदा है मुझ में। और एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है, एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है। और एक वो शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। एक वो दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है, एक वो शख्स कि जो मुझसे ही खफा है मुझ में। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर, दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर। बात कोई तो जमाने से जुदा है मुझ में।
0: क्या बात है।
1: मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। और चंद कतात पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हम कितना ही अच्छा करने की कोशिश करें, हर आदमी अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे भीतर रह
0: जी
1: जाती है।
0: जी
1: तब मैं खुदा की इबादत के दो शेर पढ़ रही हूँ। तब मैं उनसे कहती हूँ, देखिएगा, कि हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तू खूबी में यूं तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक खारे समंदर सी, मेरे मौला तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना।
0: बहुत
1: तू
0: खूब।
1: अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। और कहती हूँ कि हम चाहे मोहब्बत करें, चाहे इबादत करें, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ हमें करना चाहिए। चार मिसरे पढ़ती हूँ। कि न मुझ में मैं रहूं बाकी, न तुझ में तू रहे बाकी। न मुझ में मैं रहूं बाकी, न तुझ में तू रहे बाकी। न मुझ में मैं रहूं बाकी, न तुझ में तू रहे बाकी। न हम में हम रहे बाकी। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, और छुपा हो लाख पर्दों में समंदर नूर का, लेकिन उसे होना पड़े जाहिर। इबादत हो तो ऐसी हो। और बहुत सारे युवा श्रोता भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उनके लिए चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। देखिएगा, कि दिल में उम्मीदें जगाओ तो सही, दिल में उम्मीदें जगाओ तो सही, ख्वाब पलकों पर सजाओ तो सही। और इतना भी ऊंचा नहीं है आसमां, तुम परों को आजमाओ तो सही,
0: क्या बात है।
1: तुम परों को आजमाओ तो सही।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कविता किरण जी, आप समय निकाल कर रेडियो आज़ाद हिंद के स्टूडियो में आई, हमसे मुखातिब हुई, हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, इसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं।
1: मैं भी रेडियो आज़ाद हिंद के श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाहती हूं, और साथ ही आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, आपने मुझे यहां के श्रोताओं से रूबरू होने का मौका दिया। और बस अपनी दो पंक्तियां अंत में पढ़ना चाहूंगी कि किरण जहान से हटकर हमारी हस्ती हो। हर आदमी ये चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि किरण जहान से हटकर हमारी हस्ती हो, किसी हुजूम का हिस्सा हमें नहीं होना, किसी हुजूम का हिस्सा हमें नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो इसी के साथ श्रोताओं, हम कार्यक्रम वागर्थ से विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अपने प्रसारण के माध्यम से हम आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज क्या है जानकारी का विषय, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से अंतराल के बाद हम हाजिर होते हैं लेकर अपना विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, परमदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार। नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के आप पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके, 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं, तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं, वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, या भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडी द्वीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यहाँ नहीं। अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5000 साल पुराने हैं या 4000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने, और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है, जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे, और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर के घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई और जहां धरती ऊपर उठ गई वहां आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूंगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है। कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं, भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है, संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तो मुझे पता चला कि एक कल्चुरी राजवंश था। इस कल्चुरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चुरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चुरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अलहन देवी। वो लगभग लगभग कल्चुरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये राज्य बच जाए। और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि ये विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के, उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय, ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कोल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कोल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा, जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएं थी, सबने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और इन प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ, तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया, जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है, हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। नर्मदा आपसे कहती है, इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है, वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा।
2: मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रही। तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा, और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एकार्णव शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहु निरंतर बहु नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहु निरंतर बहु नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहु निरंतर बहु नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे हाथ, वही दिन रात चलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत है, काल प्रलय घनघोर गहन, दिग दिगंत तक घोर गए लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिषा त्रिषित है शेष देन दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो एकाणो तो एकाणो के निवृत्त मेर में निष्ठ चेतना चल स्थिर में गंज लीन रस्तेज लीन है परसनाथ थिर चेर स्थिर में जल जल जल जल जल जल जल जल जल जल अनंत उलझ पर जल जल जल जल अनंत जल जल अनंत काल पर घर घोर गए ने दिग दिगंत तक घोर गए लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिषा त्रिषित है शेष देन दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो रहो न तब भी रहो न तब भी रहो न तब भी रहो नर्मदा प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा शुभम

आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य। विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह से विभिन्न विषयों पर जानकारी लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। बस आप वादा कीजिए कि आप बने रहेंगे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहेंगे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन में, जहां 8 मई से 10 मई तक हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मारतंड के प्रकाशन के 200 वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया महाकुंभ प्रणाम उदंत मारतंड का आयोजन किया गया है।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन में।
1: अब हमारे बीच में एक जो उपस्थिति है, संत उपस्थिति, आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी की, उनको पुकारने से पहले मुनि तरुण सागर जी का वो कथन मुझे याद आता है, संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत के इंद्रधनुष होते हैं, विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद होते हैं, सौंदर्य के सितार पर सद्भाव का संगीत होते हैं, प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना होते हैं। ऐसी संत विभूति आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी।
2: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रणाम उदंत मार्तंड का भव्य आयोजन, सम्मानित मंच, आप सबके प्रति बहुत शुभकामनाएं, बहुत स्वागत भाव मैं व्यक्त करता हूं। बहुत सारे औपचारिक कथन से स्वयं को बचाते हुए, क्योंकि वो आपने सुन लिया है, आप पूर्वोत्तर उसका संज्ञान ले लें। 2 शताब्दियों पहले एक मनीषी ने एक चिंता प्रकट की और उस चिंता का नाम था उदंत मार्तंड। वो चिंता ये थी कि हमारा संवाद, हमारी समझ और हमारा भाषिक स्वाद बोध पराया है, उस परायेपन से हम अपने को समृद्ध नहीं मान सकते। एक ऐसी भाषा जो हिंदुस्तानियों की भाषा हो, अब उसमें मैं न पूरब कह रहा हूं न दक्षिण कह रहा हूं, जीवन इस तरह हम एक आयाम में, दो आयाम में, तीन आयाम में परिभाषित नहीं कर सकते। जीवन वस्तुतः चक्र गति से चलता है और आप जानते हैं चक्र गोल होता है, उसमें कोई तल होगा तो ये कहीं जाकर रुक जाएगा, और किसी वर्तुल वस्तु के, किसी गेंद के कितने आयाम हैं जो ज्योमेट्री के विशेषज्ञ हैं वो तय करते रहे। इसलिए आप कभी भी उसको आयाम से परिभाषित नहीं कर सकते कि यह पूरब की है, यह दक्षिण की है, यह पश्चिम की है। जीवन इन सबको मिलाकर बनता है। एक बात उनके मन में आई और मैं कुलपति महोदय को उसके लिए साधुवाद करूंगा कि इन्होंने उस बात में जो चिंता निहित थी, उस चिंता को पहचान कर 2 शताब्दियों के बाद फिर से उसे रेखांकित किया और पत्रकारिता की उस चिंता का एक महोत्सव यहां रच दिया। आपको वो दिखाई पड़ेगा जगह जगह लिखा हुआ, और यहां उसको इन्होंने विशेष रूप से हाईलाइट किया है, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु। श्रीमान युगल किशोर शुक्ला जी ने एक अपनी भाषा और उस भाषा से बनते हुए संवाद में हिंदुस्तानियों का हित पहचाना था। 200 साल बाद आज जब पत्रकारिता का राष्ट्रीय संस्थान ये आयोजन कर रहा है और देश के बड़े मनीषी पत्रकार यहाँ बैठे हैं और पत्रकारिता सीखने के लिए एक पूरी नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, तब हमें फिर से एक बार सोचना चाहिए, क्या पत्रकारिता अभी भी राष्ट्र के हित को भाषा में पहचानती है? क्या अब भी हमारे पास हिंदुस्तानियों का हित, ऐसी ही कोई चिंता हमें चला रही है? अब जबकि हम देखते हैं कि जीवन में लगभग सब कुछ पेशा हो गया है, हंसना और रोना भी, तो पत्रकारिता इन चिंताओं के बाहर है क्या? यदि हमारे लिए आज युगल किशोर शुक्ला स्मरणीय हैं, यदि हमारे लिए उदंत मार्तंड का कोई अवसर है जिसकी हम वंदना करें, तो उसके मास्ट हेड के नीचे बहुत बारीक अक्षरों में हिंदुस्तानियों के हित के हेत ये कहने वाली पंक्ति के पहले एक बहुत जरूरी पंक्ति, एक श्लोक लिखा गया है, पता नहीं आपका ध्यान उस पर गया है कि नहीं। उसकी जो कॉपी है उसमें वो मुश्किल से पढ़ने में आता है, और ये उदंत मार्तंड के मुख्य शीर्षक के नीचे लिखा हुआ श्लोक है, एक पंक्ति में आर पार लिखा हुआ। दिवाकांत कांतिम बिना ध्वांतमंतम न चाप्नोति तद्वत् जगत्यज्ञलोकः, समाचार सेवामृते यत्त्वमाप्तुम न शक्नोति तस्मात् करोमीति यत्नम्। जैसे यदि सूर्य उदय नहीं हो तो नींद पूरी हो जाने पर भी सोया हुआ लोक प्रबुद्ध नहीं होता, और लोक को जगाने में केवल निद्रा का पूरा हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, सूर्योदय मान है उसका कि जब सूर्योदय होता है तो लोग जाग जाते हैं, क्योंकि वो अंधेरा मिटा देता है, और जब अंधेरा मिट जाता है तब कोई सोया हुआ नहीं रह सकता, यही जीवन की सच्चाई है। तो वो कहते हैं वैसे ही जो हमारे समाज का ज्ञत्व है, ज्ञत्व है मतलब उसके जानकार होने का, उसके अवगत होने का, उसके अवबुद्ध होने का, उसके प्रबुद्ध होने का जो भाव है, वो तब तक नहीं पुष्ट होता है जब तक उस पर सही जगह का, सभी जगहों का समाचार नहीं पहुंचे। समाचार शब्द का ही संस्कृत में नाम है उदंत। उदंत का मतलब उगता हुआ नहीं होता है, तो आप एआई वाले चक्कर में मत जाइएगा। उदंत का मतलब गांवों में आंचलिक भाषाओं में जिसका दांत नहीं उगा हो ऐसे पशु को कहते हैं, उदंत बैल बछड़े होते हैं। उदंत का ठीक ठीक अर्थ होता है वार्ता, समाचार। महाकवि कालिदास कहते हैं कांतो दंतः सुहृदुपगतः संगमात किंचिदूनः, मेघदूतम में। प्रियतम का संदेश कोई हितैषी व्यक्ति सुनाए तो ये मिलन से थोड़ा ही कम समझना चाहिए, ये उसके मिल जाने जैसा सुख है। उदंत का ठीक ठीक अर्थ होता है समाचार। और चूंकि समाचार पत्र पहले से कई थे तो शुक्ल जी ने कहा कि वे सब समाचार नक्षत्र हो सकते हैं, तारामंडल हो सकते हैं, ये मार्तंड है, क्योंकि अभी तक जितने भी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वे अंचलों को प्रकाशित करते हैं, किसी अंचल की भाषा को प्रकाशित करते हैं, देश के किसी खंड की भाषा को प्रकाशित करते हैं। और हमारी चिंता ये है कि अखंड भारतवर्ष प्रकाशित हो, इसलिए उन्होंने बंग भाषियों नहीं कहा, हिंदी भाषियों नहीं कहा, दक्षिण नहीं कहा, उत्तर नहीं कहा, पूर्व पश्चिम नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों के हित के हित।
0: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। हमारी इस प्रसारण सभा में अभी बहुत कुछ खास है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए। जी हाँ, रेडियो आजाद हिंद।

0: याद करो कुर्बानी, याद करो
1: कुर्बानी। अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे वीर क्रांतिकारी, ऐसे लोग जिन्होंने देश को जिया, देश को सोचा, जो किया देश के लिए किया, ऐसे लोगों की यादों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। याद करो कुर्बानी, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मास्टर अमीर चंद की।
3: याद करो कुर्बानी,
1: दिल्ली की पुलिस ने बहुत सारे आदमियों को एक स्थान पर बंद कर दिया और वो उनमें से एक एक को बुलाकर कुछ पूछताछ करने लगी। जो लोग बंद किए गए थे उन्हें ये पता नहीं था कि वे किस अपराध में पकड़े गए हैं। उनसे तो केवल उनका नाम ही पूछा गया था, नाम बताने पर उन्हें पकड़ लिया गया था। ये कितनी विचित्र बात है कि उन सबका एक ही नाम था। जी हाँ, वे सब दीनानाथ नाम के व्यक्ति थे। दिल्ली के सभी दीनानाथ उस समय पुलिस की गिरफ्त में पहुंचकर दीन और अनाथ हो गए थे। पुलिस को दीनानाथ नाम के एक अपराधी की तलाश थी, इस कारण पुलिस ने दिल्ली के सभी दीनानाथ पकड़ लिए थे। पुलिस ने अपने दीनानाथ भंडार में से एक को निकाला और पूछना प्रारंभ किया, क्या नाम है तुम्हारा? दीनानाथ। और पिता का नाम? जी बैजनाथ। कहाँ के रहने वाले हो?
4: मैं दिल्ली का।
1: तुम धंधा क्या करते हो?
4: मैं तो बस दर्जीगिरी करता हूँ।
1: तुम सरकार के खिलाफ पर्चे क्यों छापते हो?
4: साहब, मैं बगैर पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पर्चे लिखना या छापना क्या जानूँ?
1: देखो, सीधे सीधे सब कुछ बता दो, वरना हम तुम्हें बुरी तरह से मारेंगे और भूखा प्यासा एक कोठरी में बंद कर देंगे।
4: आपको अख्तियार है, जो चाहे सो करें, मैं वो बात कैसे बता दूं जो मुझे पता ही नहीं।
1: ठीक है, जा सकते हो तुम। दर्जी दीनानाथ को सिपाही ने ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। उसे छोड़ा नहीं गया जब तक असली अपराधी दीनानाथ का पता नहीं चल जाता। कोई कैसे छोड़ा जा सकता था? दीनानाथ भंडार से इसी प्रकार एक एक दीनानाथ को बुलाया जाता, उससे पूछताछ की जाती और डरा धमका कर दूसरे स्थान पर बंद कर दिया जाता। पुलिस की योजना थी कि पहले पूछताछ भर की जाए और बाद में दीनानाथ पूजा प्रारंभ की जाए। पूजा से बड़े बड़े बिगड़ैल भी राह पर आ जाते हैं, ये उस वक्त पुलिस का अनुभव था। श्रोताओं, आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति रचना के बाद।

0: श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस को तलाश थी दीनानाथ नामक व्यक्ति की, और उसने दिल्ली के सभी दीनानाथ नामक व्यक्तियों को पकड़ लिया था। अगली बार जो दीनानाथ पुलिस के सामने लाया गया, उसके व्यवहार से ही ये लग रहा था कि वो अपराधी हो सकता है। वो पुलिस वालों से आंखें मिलाने से कतरा रहा था, और उसकी आवाज में भी वो स्वाभाविक निर्भीकता नहीं थी जो निरपराध व्यक्ति की आवाज में होती है। उससे भी पूछा गया, सरकार के खिलाफ जो पर्चे छप रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हो तुम?
1: जी, मैं लिबर्टी या किसी भी पर्चे के बारे में कुछ नहीं जानता साहब।
0: पुलिस ने अभी तक किसी भी व्यक्ति के सामने लिबर्टी पर्चे का उल्लेख नहीं किया था। अपने आप ही वो नाम दीनानाथ नामधारी उस व्यक्ति के मुंह से निकल गया। असली अपराधी इस प्रकार पुलिस के हाथ लग गया। अंदर ले जाकर जब उसकी पूजा का उपक्रम किया गया तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उसने स्वयं को बचाने के लिए पुलिस का मुखबिर होना स्वीकार कर लिया और अपने उन साथियों के नाम भी बता दिए जो सरकार के खिलाफ पर्चे छपवा कर गोपनीय रूप से बांटा करते थे। जिन व्यक्तियों के नाम दीनानाथ ने बताए उनमें से एक प्रमुख नाम था अमीर चंद। श्रोताओं, जब लिबर्टी पर्चे के बारे में जानकारी मिल गई तो दीनानाथ नामधारी अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। असली अपराधी दीनानाथ द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर अमीर चंद और उसके दत्तक पुत्र सुल्तान चंद को दिल्ली ने 19 फरवरी 1914 को उसके मकान पर ही गिरफ्तार कर लिया। दीनानाथ और सुल्तान चंद दोनों ही सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने क्रांतिकारी संगठन की सारी बातें पुलिस को बता दी। पेशे से अमीर चंद अध्यापक थे और इसीलिए वे मास्टर अमीर चंद के नाम से प्रसिद्ध थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के समाजसेवी व्यक्ति थे। स्वामी रामतीर्थ से उनका परिचय हो चुका था और बहुत समय तक उन्होंने रामतीर्थ विचारधारा का प्रचार भी किया था। वे सभी के प्रति दयालु थे और विशेष रूप से विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। एक अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल भी दिल्ली के ही रहने वाले थे और मास्टर अमीर चंद उनके संपर्क में आ चुके थे। लाला हरदयाल के कारण ही वे क्रांति के क्षेत्र में पहुंचे थे। जब लाला हरदयाल विदेश चले गए तो पंजाब में क्रांति संचालन का कार्य वे मास्टर अमीर चंद को ही सौंप गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस भी पंजाब में क्रांति संगठन और विप्लव आयोजन का कार्य कर रहे थे। उनसे भी मास्टर अमीर चंद का परिचय हो गया। इस परिचय का परिणाम ये निकला कि भारत के वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना बना ली गई। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली लाई जा रही थी। एक स्पेशल ट्रेन द्वारा वॉयसराय महोदय कलकत्ता से दिल्ली पहुंचे। उनके स्वागत की तैयारियां शासकीय स्तर पर भी हो रही थीं और क्रांतिकारियों की ओर से भी। एक क्रांतिकारी वसंत कुमार विश्वास को बम विस्फोट का प्रशिक्षण रास बिहारी बोस पहले ही दे चुके थे। उस समय वसंत कुमार विश्वास लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर का कार्य कर रहे थे। क्रांतिकारियों की ओर से वॉयसराय महोदय के स्वागत के लिए वे भी दिल्ली पहुंचे। रास बिहारी बोस भी वहां पहुंच गए। वसंत कुमार विश्वास को मास्टर अमीर चंद के घर ठहराया गया। घटना के दिन अर्थात 23 दिसंबर सन 1912 को मास्टर अमीर चंद स्वयं वसंत कुमार विश्वास को चांदनी चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के भवन तक ले गए और वहां उनके बैठने की व्यवस्था कर दी। वसंत कुमार विश्वास एक लड़की के लिबास में महिलाओं के बीच बैठ गए और ज्यों ही वायसराय महोदय की सवारी वहां पहुंची उन्होंने बम छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप वायसराय काफी घायल हो गए और उनका अंगरक्षक मारा गया। बहुत खोज करने पर भी घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। मास्टर अमीर चंद खामोश बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। लिबर्टी नाम के पर्चे छपवा कर वे सारे भारतवर्ष में उन्हें वितरित कराने लगे। इन पर्चों के द्वारा वे देश में अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा का प्रसार करना चाहते थे। कभी ये पर्चे पंजाब में छपवाए जाते तो कभी बंगाल में।
1: पर्चों में जो लिखा होता था वो कुछ इस तरह होता था, गीता, वेद और कुरान के मतानुसार यही उचित ठहरता है कि जाति, रंग और संप्रदाय का भेद न करके मातृभूमि के सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया जाए। दिल्ली में वायसराय पर किए गए प्रयत्न से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर की यही इच्छा है कि ये सब किया जाए। अंग्रेज हुकूमत को मात पर मात लग रही थी और वो किसी कांड का कोई सुराग नहीं पा रही थी। दिल्ली बम कांड और लाहौर बम कांड के अपराधियों की वो छाया भी नहीं छू सकी थी। अब उसने सारा ध्यान राजद्रोही पर्चों का प्रचार प्रसार करने वालों की ओर लगा दिया। किसी प्रकार उसे ये पता लग गया कि इन पर्चों से दिल्ली का कोई दीनानाथ नाम का व्यक्ति संबंधित है। दिल्ली के सभी दीनानाथ उसने पकड़ लिए और आखिरकार पकड़े जाने पर असली दीनानाथ ने भंडाफोड़ कर दिया। पर्चों के अपराधियों की खोज करने पर दिल्ली और लाहौर में बम फेंकने वाले पकड़ लिए गए। आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस राष्ट्र वंदना के बाद।

दिल्ली बम कांड मुकदमा प्रारंभ हुआ और 16 मार्च सन 1914 को मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सरकारी गवाह बने अमीर चंद के भतीजे और दत्तक पुत्र सुल्तान चंद ने जब अपने धर्म पिता मास्टर अमीर चंद के विरुद्ध बयान दिए तो इस विश्वासघात को सहन न करके मास्टर जी अदालत में ही रो पड़े। वे सोचने लगे कि जिस व्यक्ति का मैंने पालन पोषण किया, जिसको मैंने अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया और जिसको

0: आंतरिक हर्ष ने उनके चेहरे को दैदीप्यमान कर दिया। अंबाला जेल में मास्टर अमीर चंद को 11 मई 1915 के दिन फांसी पर झुलाया गया। फांसी का फंदा उन्होंने उसी प्रकार की प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया जैसे कभी उन्होंने वरमाला ग्रहण की थी। अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करके मास्टर अमीर चंद इस दुनिया से उठ गए और अपनी मस्ती की एक प्रेरक याद अपने देशवासियों के लिए छोड़ गए। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इस कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की मास्टर अमीर चंद की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी। आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।

0: याद करो कुर्बानी, याद करो
1: कुर्बानी। हमारे अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, देश पर सर्वस्व कुर्बान करने वाले लोगों की यादों पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहाँ उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूँ। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से दो सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नर्तकी पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधिया में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब ना केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे, बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द ट्रैक।

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसे में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण, ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालीदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी सांस पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

0: पार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि धर्म महासभा के बाद स्वामी जी का तूफानी दौरा चल रहा था। कई शहरों में व्याख्यान देकर और लोगों पर अपना प्रभाव जमा कर वे अमेरिका के उत्तर की ओर डिट्रॉयट नगर में आए। इरी झील के तट पर शिकागो के उत्तर में स्थित डिट्रॉयट नगर अब अमेरिका तथा विश्व का एक बड़ा औद्योगिक महानगर बन चुका है। आजकल वह मोटर गाड़ी बनाने का प्रसिद्ध केंद्र है। स्वामी जी जब वहाँ गए थे तब मोटर नहीं बनते थे, पर अन्य अनेक उद्योग वहाँ स्थापित थे।
1: जैसा दूसरे नगरों का हाल था वैसे ही वहाँ भी प्राचीन और

0: तों के विरुद्ध उत्साह पूर्वक आक्रमण चलाना हमारा कर्तव्य है।
1: स्वागत किया। डिट्रॉइट के समाज में सुसम्मानित, सुशिक्षित, कुलीन तथा मिशिगन राज्य के भूतपूर्व गवर्नर की पत्नी श्रीमती जॉन जे वागले उन्हें अपने घर ले गई। धर्म महासभा के दौरान स्वामी जी इनसे परिचित हुए थे। दूसरे ही दिन श्रीमती वागले ने स्वामी जी के सम्मान में एक भव्य प्रीति भोज का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। उनमें शहर के मेयर, वकील, व्यापारी, प्राध्यापक, विभिन्न संप्रदायों के पादरी आदि समाज के शीर्ष स्थानीय लोग थे। परंतु उस भव्य सभा में एक बेसुरी आवाज सुनाई पड़ी। दूसरे दिन अखबार में छपा,
2: अत्यंत लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के सम्मुख स्वामी जी ने एक शब्द भी उच्चारण करने के पूर्व ही जिस घर में स्वामी जी निमंत्रित होकर आए थे उसी में बैठकर एक निर्लज्ज महिला स्वामी जी के सम्मुख ही उन पर आक्रमण करते हुए निष्ठिरता पूर्वक उनकी निंदा करने लगी।
3: स्वामी जी ने साहस पूर्वक सभी प्रश्नों का जवाब देकर के इस आक्रमण का सामना किया और उन्हें आभास हो गया कि अब उन्हें इसी प्रकार के आक्रमणों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग पादरियों के डर से उनसे मिलते तक नहीं थे, पर वागले परिवार के रुतबे के कारण विरोधी बहुत ज्यादा हंगामा नहीं मचा सके। श्रीमती वागले ने उन्हें अपनी छत्र छाया में संभाल कर रखा था। स्वामी जी ने उनके बारे में कहा था,
4: श्रीमती वागले अनेक गुणों से संपन्न थी। वे विविध विद्वत सभाओं की सदस्य थी, अनेक धर्म शिक्षालयों की संचालिका थी, बहुत से सेवा संस्थान उनके दान से चलते थे और जब उनके पति गवर्नर थे तब वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के लिए विख्यात हो गई थी। शिकागो विश्व मेले की महिला व्यवस्थिकाओं में से वे एक थी और इसी से उनके साथ मेरा परिचय हुआ था। उन्होंने बहुत भ्रमण किया था और फलस्वरूप उनकी मनोवृत्ति अत्यंत उदार हो गई थी। 1894 ईस्वी में संभवतः उनकी आयु 61 वर्ष की हो गई थी।
1: स्वामी जी के आगमन के पूर्व ही डिट्रॉइट फ्री प्रेस नामक समाचार पत्र में प्रकाशित घोषणा में लिखा था,
2: विश्व मेले में सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदू प्रतिनिधियों में एक थे स्वामी विवेकानंद। पहले वे एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण थे, परंतु सन्यासी संघ में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने अपना ये पद त्याग दिया, क्योंकि सन्यासियों के लिए ये पहला नियम है कि अहंकार से मुक्त होने के लिए उन्हें अपने ब्राह्मणोचित विशेष अधिकार आदि छोड़ने होंगे। महासभा में बिना किसी नोट की सहायता से विशुद्ध अंग्रेजी भाषा में बोलकर उन्होंने अपने श्रेष्ठतम वक्ताओं में से अन्यतम प्रमाणित किया। उनका उच्चारण इतना मधुर होता था कि अनेक श्रोताओं के मतानुसार यदि उनका अर्थ नहीं भी समझ में आए तो भी संगीत के रूप में उनका रस स्वादन किया जा सकता है। महासभा के पश्चात उन्होंने अनेक नगरों तथा महानगरों में विराट जनसभाओं को संबोधित किया है और उनकी आकर्षक शक्ति तथा किसी भी विषय को प्राणवत एवं आलोकित कर देने की पद्धति की सभी श्रोता एक मत से प्रशंसा करते हैं। महान समस्याओं पर उनके विचार उन्हीं के समान पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध से आने के कारण स्वाभाविक रूप से ही अमेरिका वासियों की प्रेरणा तथा नवलोक प्रदान करते हैं। जब श्याम वर्ण के काले बालों वाले भव्य पुरुष अपने गाढ़े पीले रंग की पोशाक में खड़े होते हैं और अमरीकी वासियों की भाषा में ही विशुद्ध स्पष्ट तथा धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी बात रखते हैं तो श्रोतागण आनंद पूर्ण विस्मय में खो जाते हैं।
3: स्वामी जी के आगमन के दूसरे ही दिन उसी पत्रकार ने स्वामी जी के पास आकर के पूछा,
2: आपके यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप हमारे धर्म और हमारे धर्म में क्या फर्क या समानता देखते हैं, जरा समझाइए।
3: स्वामी जी ने हंसकर कहा कि उनका उद्देश्य है
4: एक ऐसी मानव जाति को गढ़ना जिसमें पार्थिव शक्ति के साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का भी सम्मिश्रण होगा, जिनके जीवन में सिंह से पराक्रम के साथ मेष सुलभ निरीहता का सम्मिलन होगा और जो प्राच्य तथा पाश्चात्य के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। संभव है कि मेरा मार्ग मेरे पाश्चात्य पड़ोसी के लिए अनुकूल न हो। हमारे प्रयास के बिना ही हिंदू धर्म के अनेक तत्व दूर दूर तक फैल रहे हैं और इनकी अभिव्यक्ति क्रिश्चियन साइंस, थियोसॉफी तथा एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया में दिख पड़ती है। ईसाई धर्म सीधा हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। कैथोलिक मत भी अपने सभी कर्मकांड जैसे पाप स्वीकार का कक्ष, संतों में श्रद्धा आदि हमसे ही प्राप्त करता है।
3: धर्मांतरण का प्रसंग उठने पर स्वामी जी ने अशोक के शिलालेखों में से पढ़कर के सुनाया कि सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करनी चाहिए।
1: स्वामी जी डिट्रॉइट में 13 फरवरी से 23 फरवरी और दूसरी बार 9 से 30 मार्च तक रहे। उन दिनों उनके कुल 8 व्याख्यान हुए थे। इनके अतिरिक्त वे लगभग प्रतिदिन घरों में आयोजित गोष्ठियों में भी भाषण देते थे। डिट्रॉइट में उनके साथ एक भक्त महिला भगनी क्रिस्टीन से परिचय हुआ, जिन्होंने बाद में स्वामी जी से दीक्षा ली थी। वे उन दिनों प्रतिदिन स्वामी जी के व्याख्यान सुना करती थीं। उन्होंने लिखा था,
5: उनके रहस्यमय व्यक्तित्व से जो दैवीय शक्ति प्रवाहित होती इतनी प्रबल थी कि उनके संपर्क में आने वाले संतुष्ट हो जाते थे। वो मानो बिल्कुल अभिभूत कर डालती थी।
3: डिट्रॉइट के एक विद्यालय में जर्मन भाषा की शिक्षिका मिस मार्ग राइट्स को कहती हैं कि स्वामी जी का एक ही व्याख्यान सुनने के बाद जीवन में पहली बार मिस कुक के मन में वक्ता को धन्यवाद देने की इच्छा हुई। स्वामी जी थोड़ी देर उनका हाथ पकड़े रहे। उस समय की अनुभूति के बारे में मिस कुक ने कहा,
6: उनकी महानता तथा पवित्रता के बारे में मेरे मन में ऐसी छाप पड़ी कि 3 दिनों तक मैं अपने वो हाथ धोने की कल्पना तक नहीं कर पाई थी। स्वामी जी की इस अदम्य शक्ति के प्रभाव से अगर महानगर के उनके शत्रु तथा मित्रों में भयानक तूफान उत्पन्न होता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इन व्याख्यानों को सुनकर अनुभव करना और फिर भी पहले के समान रह जाना क्या संभव था। श्रोताओं की समस्त धारणाएं बदल जाती थी। आध्यात्मिकता का बीज पौधा बनकर जीवन भर तब तक विकसित होता रहता जब तक कि फलदायी नहीं हो जाता।
1: डिट्रॉइट में स्वामी जी का पहला व्याख्यान हुआ 14 फरवरी को यूनिटेरियन चर्च में। श्रीमती फंकी ने लिखा है,
7: अब भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। एक राजा के समान उनकी भव्य प्राणवंत ओजस्वनी और शक्तिशाली आकृति किस प्रकार सभा मंच जाकर आरूढ़ हुई और जो ही उनका प्रथम शब्द उच्चरित हुआ वो संगीतमय स्वर जो कभी वीणा के समान मृदु तो कभी गंभीर झनकारमय और सुदूर प्रसारी था, त्यों ही सब कुछ निस्तब्ध हो गया। चारों ओर ऐसी शांति व्याप गई जिसका स्पष्ट अनुभव किया जा सकता था। सब सांस रोककर सुन रहे थे।
3: उसी व्याख्यान के दौरान वहाँ के बिशप निंडे ने कई विरूप मंतव्य किए थे जिसे स्वामी जी ने कहा,
4: नीति के मामले में भारतवासी अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अति उच्च हैं। ऐसे देश में मिशनरियों का जाकर कुछ नए विचार फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदू का धर्म मनुष्य को भद्र विनयी और भगवान के रचे अन्य सभी जीवों के प्रति सहानुभूतिशील तथा प्रीतिपूर्ण बनाता है। मिशनरियों को चाहिए कि वे उस देश में जाकर वहाँ के पवित्र जल का पान करें और देखें कि वहाँ सहस्त्रों महात्माओं का जीवन एक विराट समाज पर कितना मनोरम प्रभाव डालता है।
3: बिशप निंडे एक अत्यंत प्रतिभाशाली धर्म प्रचारक थे। वे कहा करते थे कि पूर्वी देशों में जो भी सुधार हुआ है वह ईसाइयों की वजह से हुआ है, उनकी अपनी चेतना से नहीं। स्वामी जी ने कहा,
4: बिशप ने यदि प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो वे जानते होंगे कि यह बात मिथ्या है। बुद्ध, कन्फ्यूशियस तथा अन्य नैतिक सुधारकों के मूलभूत आचार व मत ईसा के आगमन के काफी पूर्व से ही वहां सुविदित थे। युगों पूर्व वहां विश्व बंधुत्व तथा मानव का दिव्यत्व प्रचारित हुआ था। यदि बिशप निंडे एक सच्चे मिशनरी के रूप में प्राच्य देशों में जाना चाहते हैं, तो शांति और प्रेम के आनंदमय संदेश का ठीक ठाक प्रचार करने के लिए मानव का दिव्यत्व विषयक मुख्य पाठ उन्हें पहले सीख लेना होगा।
1: उन दिनों विदेशी समाज में और भी एक बड़ा भ्रम फैला हुआ था कि हिंदू योगीगण विविध प्रकार के अलौकिक और चमत्कारिक घटनाएं दिखा सकते हैं। हिंदू धर्म को उन दिनों एक वास्तविक जीवन दर्शन नहीं बल्कि चमत्कारों का एक भंडार माना जाता था और उनकी दृष्टि में सच्चा तो एकमात्र ईसाई धर्म ही था। स्वामी जी को बड़ी ही स्पष्ट भाषा में इस मनोभाव का खंडन करना पड़ा और बारंबार अनुरोध किए जाने पर भी उन्होंने अपने मत के प्रचार हेतु चमत्कार का सहारा नहीं लिया।
3: इस तरह वाद प्रतिवाद की सहायता से डिट्रॉयट का वातावरण काफी कुछ स्वच्छ और स्वामी जी के अनुकूल हुआ। इसके बाद 17 फरवरी को जब उन्होंने यूनिटेरियन चर्च में मनुष्य का दिव्यत्व विषय पर भाषण दिया तो अनेक समाचार पत्रों को उनके मतवाद को दबा रखने की अथवा उनके विरोध में कुछ लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इस व्याख्यान का विवरण देते हुए 18 तारीख को फ्री प्रेस में लिखा गया,
8: मौसम खराब होने के बावजूद हमारे पूर्वी बंधु यही संबोधन उन्हें पसंद है कि आगमन के आधा घंटा पूर्व ही दरवाजे तक लोगों से भर गया था। उत्सुक श्रोताओं में सभी पेशों तथा सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित थे। उनमें थे वकील, जज, धर्म प्रचारक, व्यवसायी और महिलाओं का तो कहना ही क्या, क्योंकि ये लोग बारंबार अपने व्याख्यानों में उपस्थित रहकर तथा अत्यंत मनोयोगपूर्ण उन्हें सुनकर ये जता रही थी कि अवशेष अतिथियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने को वे अति उत्सुक है। उनका घरेलू गोष्ठियों में ही उतना ही आकर्षण है जितना कि व्याख्यान के मंच पर। पिछली रात का भाषण पहले के भाषणों के समान उतना वर्णात्मक नहीं था। लगभग 2 घंटे तक विवेकानंद मानवीय तथा दैवी तत्वों का एक दार्शनिक ताना बाना बुनते हैं और वो इतना तर्कसंगत था कि उन्होंने विज्ञान को भी सामान्य ज्ञान जैसा सहज बोध और रंगीन कर डाला था, जितना कि उनके देशवासियों के हाथ का बना हुआ रंग बिरंगा वस्त्र होता है। वे प्राच्य की लुभावनी सुगंध से भी ओतप्रोत था। वो सावला व्यक्ति कविताओं का उदाहरणों का वैसा ही प्रयोग करते हैं जैसे कि एक चित्रकार रंगों का, और रंग वही भरे जाते हैं जहां वे उपयुक्त हो। इसका परिणाम विचित्र परंतु अति आकर्षण होता है। तीव्र गति से निस्तृत होने वाले तार्किक निष्कर्ष मनोरंजन से और उस कुशल वक्ता को अपने परिश्रम का फल बीच बीच में उत्साहपूर्वक करतल ध्वनि के रूप में प्राप्त हुआ।
3: शनिवार का अंतिम व्याख्यान मानव का दिव्यत्व के बारे में अगले रविवार को कुछ बोलने का मौका न पाकर के विपक्षी पादरी पहले के 2 व्याख्यानों का ब्यौरा देकर के काफी हंगामा खड़ा कर दिया था। इसके प्रतिवाद स्वरूप किसी ने जस्टिसिया के छद्म नाम से 13 फरवरी को फ्री प्रेस में समझाने का प्रयास करते हुए लिखा,
9: तथाकथित जिन सांप्रदायिकता, संकीर्णता, अंधविश्वास तथा कट्टरता के द्वारा हमारा धर्म अनवत होता है और जिस असत्यता, निष्ठुरता, परधर्म, असहिष्णुता तथा चरम स्वार्थपरता ने हमारे सामाजिक तथा व्यवसायिक जीवन को छा लिया है, केवल उन्हीं की उन्होंने निंदा की है। इस नगर के प्रायः हर डाक में उन्हें अनेक अपमानजनक पात्र मिला है। हमारे कानूनों तथा रीति नीतियों से अपरिचित होने के कारण उनके व्याख्यानों के आयोजन आदि के मामले में उन्हें ठगा गया है और जितना भी हो सका उनका व्यवसायिक लाभ उठाया गया है। हमारे अनेक कट्टर चर्चों की वेदी से उनके विरुद्ध अत्यंत असभ्य भाषा में प्रचार किया गया है और ये सब करने वाले वे पादी लोग थे जिनके पास उनके बारे में जानने का समाचार पत्रों के अधूरे तथा भ्रामक विवरणों के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। ऐसे लोग उनके मुख की बातें सुने बिना उनकी आलोचना करने का साहस भी भला कैसे कर पाते हैं? यदि स्वयं आलोचना से बचना चाहते हो तो दूसरों की निंदा मत करो। मेरा मत है कि हमें और भी कारण चाहिए कम नहीं, ताकि हम जान सके कि दूसरे लोग हमें किस दृष्टि से देखता है।
1: समाचार पत्रों के माध्यम से ये वाद विवाद पूरे फरवरी के महीने में चला था, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि एक ओर जैसे उन्होंने नीली नाक वाले कठोर खोल वाले तथा नरम खोल वाले कट्टर ईसाइयों को नाराज कर दिया था, दूसरी ओर उनके अनेक मित्र भी आकर उनसे जुड़ गए थे। बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे, चाय या भोज में आमंत्रित करते थे। डिट्रॉइट जर्नल में छपा था,
2: वे स्वीकार करते हैं कि भारत की जनता अत्यंत निर्धन, अति अशिक्षित और ऐसे अनेक संप्रदायों में विभक्त है जिसकी उपासना प्रणाली में निम्न स्तरीय मूर्ति पूजा से लेकर चरम उदार तथा व्यापक दिव्य धारणाओं पर आधारित विश्व बंधुत्व तथा एकेश्वरवाद की धारणा विद्यमान है। उनका उद्देश्य धर्मांतरित करना या अपना मतानुगामी बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसे महाविद्यालय के लिए अर्थ संग्रह करना है जिसमें शिक्षित होकर शिक्षक गण आम जनता के बीच जाकर उनसे प्रचलित अनेक दोषों का सुधार कर सके। वो कहते हैं कि भारत में पुरोहितों का चरम प्रावधान है और पुरोहित ही सत्य के विकृत कर अज्ञानता को बनाए रखते हैं। उन्हें मूर्ति पूजा में भी अच्छाई दिख पड़ती है। वे सरल भाव में स्वीकार करते हैं कि पादरियों के अधिकार से हम पाश्चात्य लोगों की प्रगति भी अवरुद्ध है। स्वामी जी का इस देश में दो उल्लेखनीय वस्तुओं पर ध्यान गया है। प्रथमतः सामाजिक मर्यादा तथा बौद्धिक उत्कर्ष के क्षेत्र में हमारी नारियों का प्रभाव और द्वितीय निर्धनों के लिए हमारी दान व्यवस्था तथा आचरण। केवल इतना ही नहीं, हमारी परिश्रम बचाने वाली मशीनों की ओर भी उनका ध्यान गया है, परंतु हमारी भौतिक प्रगति पर वे बिल्कुल भी मुग्ध नहीं है क्योंकि ये मानव जीवन को बेहतर नहीं बना सकता है।
1: डिट्रॉइट में 3 व्याख्यान देकर ही स्वामी जी का वहाँ से विदा लेने का विचार था, परंतु मित्रों के अनुरोध पर 20 फरवरी को उन्हें ईश्वर प्रेम विषय पर व्याख्यान देना पड़ा। इस सभा में श्रोताओं की संख्या सर्वाधिक थी। यहाँ उन्होंने कहा था,
4: प्रेम केवल देता है, वो कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता। एक शासक अथवा पिता के रूप में ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है, परंतु उसमें भय का भाव भी रहता है। भारत में ईश्वर का स्नेहमयी माँ के रूप में चिंतन किया जाता है।
3: 21 फरवरी वे यात्रा के लिए प्रस्तुत रहने के बाद भी न जा सके। अंततः 23 फरवरी को वे शिकागो के लिए रवाना हुए।
1: स्वामी जी के डिट्रॉइट छोड़कर चले जाने पर भी डिट्रॉइट स्वामी जी को छोड़ नहीं पाया। उन्होंने अपने अल्प प्रवास के दिनों में ही वहाँ के कट्टरवादी समाज में तूफान ला दिया था। उनमें से किसी ने सीधे तो किसी ने घुमा फिरा कर आक्रमण किया था और कोई कोई तो गाली गलौज पर उतर आए थे। मिशनरियों के लिए स्वामी जी उस समय परम त्याज्य एक भयंकर प्राणी के समान हो गए थे। ये सब देखकर स्वामी जी ने लिखा था,
4: आजकल यहाँ के कट्टरपंथी आत्मरक्षा के उपाय खोज रहे हैं और वे मुझे यम जैसा समझते हैं और कहते हैं, बाप रे क्या भयंकर प्राणी है, हजारों हजार नर नारी से मानते हैं, ये कट्टरता को निर्मूल ही करके छोड़ेगा।
3: स्वामी जी के डिट्रॉइट से जाते ही 28 फरवरी से 4 मार्च तक उस नगर में छात्र स्वयंसेवक मिशनरी आंदोलन शुरू हुआ। शायद यह शिकागो धर्म महासभा के प्रतिवाद के रूप में बुलाया गया था, परंतु यह स्वामी विवेकानंद विरोधी था। यह बात क्रिश्चियन एडवोकेट में लिखित संपादकीय से स्पष्ट हो जाती है।
2: ये सम्मेलन विवेकानंद और उनके व्याख्यानों का ही प्रतिवाद था। विवेकानंद ने बड़े ही रोचक तर्क का जाल फैलाया था और जो वीर अधम के विरुद्ध खड़े होकर अब तक युद्ध करने वाले रहे हैं, उनमें सुदृढ़ विश्वास तथा सजीव अनुभवों के सम्मुख ये प्रतिवाद कोहरे के समान उड़ गए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, सभा समापन का समय हो चला है। आपसे हम विदा लें उसके पहले कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाना चाहते हैं। आप जानते ही हैं, हमारी सुबह की सभा 7 बजे शुरू होती है। पहली प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि और फिर आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम होगा। इसमें कल हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे आप तक पहुंचेगा। इसमें कल चर्चा होगी रानी दुर्गावती के युद्ध के इतिहास पर। योग संवाद कार्यक्रम में 9 बजे सुनिएगा योग वासिष्ठ के अंतर्गत श्री राम की वैराग्य दशा पर बातचीत। सुबह 9:30 बजे भारत विभूति कार्यक्रम में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर केंद्रित कार्यक्रम आप तक हम पहुंचाएंगे। 10 बजे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा। आजाद हिंद कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 बजे। कल का ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप पर केंद्रित होगा। 11 बजे सुर सागर कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं रीता तिवारी का बुंदेली गायन और 11:30 बजे आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 41वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सही समय पर जुड़िएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनिएगा देश का चैनल देश के लिए। अब आज की इस प्रसारण सभा से अनुमति चाहती हूँ मैं, सुनीता सिंह। शुभरात्रि, जय हिंद। सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से।